0: अगली बार फर्स्ट टाइम, ठीक है?
1: मैं हर पराजय की विजय, मैं हर निराशा का निवारण, मेरी करुणा है शाश्वत, मेरी कृपा है सनातन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

0: सकल उत्पादन सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
0: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि ये निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, NEET या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी

0: उम्मीदवार पर लागू होता है। एनटीए ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। एनटीए ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। एनटीए ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है, न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
3: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगो रोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
4: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग टी की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पतिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पतिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
1: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदले की राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है, कैंसर के टीके से एआई तक दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्ध जनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोक सत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi chairs third high-level meeting with secretaries to Government of India, urges to break silos and adopt long-term vision for country's future. Union Home Minister Amit Shah criticizes Congress Working Committee's decision to sing only 2 stanzas of Vande Mataram instead of full rendition. India to host 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today, BRICS Tourism Ministers to meet in Jaipur. National Testing Agency says Answer Key Challenge system is designed to be fair to all students, rejects concerns of being expensive. US imposes fresh sanctions on Hezbollah, citing its ties to Iranian government. And in hockey, Indian women's team to take on Netherlands in the first match of second pool phase at FIH World Cup in Amstelveen today. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. During the meeting, the Prime Minister urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. More from our correspondent.
7: Calling for greater interoperability and effective use of data, Mr. Modi noted that data is a national asset and a resource for the future. The Prime Minister added that silos are not merely an organizational problem, but also a problem of mindset. He further urged officials to work with a spirit of belongingness, highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers. Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities, and young people to bring fresh perspectives in policy making. He also emphasized the need to further strengthen the country's defense industry and

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
4: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर CCTV कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
3: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
4: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
3: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है बिंदास मॉर्निंग शो में। राम राम, सत श्री अकाल, तुसी की हाल चाल है जी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का मौसम भी बस यही कह रहा है कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम। क्योंकि सुबह जब मैं उठी 4:30 बजे के समथिंग, तो उस टाइम हल्की हल्की बारिश हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा उठी फिर 7 बजे, तो धूप, मतलब समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मौसम भी हमारे साथ लुक्का छुपी खेलता है। और ये कभी कहते हैं ना, मौसम भी बेईमान है, यानी कि कब ये अपना रुख बदल दे हमें भी नहीं पता चलेगा श्रोताओं। लेकिन एक बहुत ही प्यारी विचार है मेरे पास, सो आप सभी तक साझा करना तो बनता है ना। देखिए, वादों की जरूरत नहीं होती, वादों की जरूरत नहीं होती उन रिश्तों में जहां निभाने वाले पर भरोसा होता है। जब निभाने वाले पर भरोसा होता है ना, आंख बंद करके आपको लगता है कि भाई कुछ भी हो जाए, ये टस से मस नहीं होने वाला है। ये तो बस हमारे फेस के सामने भी मेरे जैसा ही और पीठ पीछे भी बिल्कुल हमारी बुराई नहीं करता है, तो उस इंसान पर बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। और वही आपके जिंदगी में उससे अच्छा लॉयल इंसान कोई भी नहीं है। फिलहाल आरजे रीना आप सभी के साथ बिंदास मॉर्निंग शो में कनेक्ट हो गई है। श्रोताओं, 2 घंटे के लिए आप सभी के साथ रहेंगे। ढेर सारी मस्ती, ढेर सारी बातें, देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लोकल यानी कि अपने मुरादाबाद में क्या चल रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बस आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिएगा। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और वैसे भी आप मुरादाबाद से है ना, लेकिन सुबह सुबह मैंने देखा है कि जैसे ऑफिस से जाते हैं लेकिन मूंग दाल की खुशबू आती रहती है। आय हाय, बड़ी सोंधी सोंधी सी अच्छी अच्छी सी खुशबू आती है। तो ऑफिस जाते जाते भी ना गाड़ी रुक जाती है वहीं पर कि बस एक बार मूंग दाल तो चख ले, उसके बाद चलेंगे अपने सफर पर। तो आप मुझे देखिए, महसूस करके आपने बताना है बिल्कुल सच्चे दिल से, क्योंकि ऑफिस जाते हुए कौन कौन ऐसे हैं जो सुबह सुबह की मूंग दाल खाए बिना नहीं जाते हैं। आज समय की बात करूं तो 8:27 हो चुके हैं श्रोताओं, और आज की तारीख 21 अगस्त दिन शुक्रवार का, शुक्र है कि शुक्रवार है, यानी कि आज आपका दिन भी मंगलमय जाए। आप जो भी काम करें आपका हर काम शुभ हो, अच्छा हो, बस भगवान से यही कामना है कि भगवान जो करेंगे अच्छे ही करते हैं। लेकिन कभी कभी इतनी परीक्षा ले लेते हैं ना कि बस वहीं इंसान हिम्मत हार जाता है, ये नहीं होना चाहिए। फिलहाल श्रोताओं आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर है 9837896896 पर, कि आप सुबह सुबह मुरादाबाद की दाल बिना चखे जाते हैं ऑफिस या नहीं। सुबह की शुरुआत आपने बतानी कि आप सुबह की शुरुआत आप अपने कैसे करते हैं, सोचिए और मैसेज करिए। और अगला गाना भी बहुत ही शानदार वाला लेकर आई हूं मैं आप सभी के साथ। चलिए उसके बाद कनेक्ट होते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का भी तो टाइम हो जाता है ना भैया, ये भी तो हमारे लिए प्ले करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारे बॉस बोलेंगे सुबह सुबह भैया गेट है ना बाहर वाला जो दरवाजा है वो खुला हुआ है, जा सकते हो। तो चलिए पहले काम की बात है फिर गाना सुनेंगे।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

हां जी, गुड वाली मॉर्निंग है श्रोताओं, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 8:34 हो चुके हैं। बिंदास मॉर्निंग शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है। और कहते हैं ना, जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो आपकी हार का इंतजार करते हैं कि कब ये हारे और कब मैं अपने थोड़े कटु वचन बोलूं, कब जश्न मनाऊं। तो मुझे लगता है कि आपको ना हारना नहीं है, जीत कर दिखाना है, ताकि उनको उनकी सोच पर ही पछतावा हो जाए। जैसे हर उगता हुआ सूरज हमें सुबह की किरणें दिखाता है, सुबह की ये वेदर दिखाता है, वैसे ही क्योंकि दुनिया देखिए, वो धूप गर्मी हो जाती है तभी भी सूरज को हम कोसते हैं कि क्या सूरज भगवान, आज तो तुमने इतनी तेज धूप निकाली है ना कि बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। जिस दिन बारिश हो जाए, 4-5 दिन धूप ना निकले, तो फिर कहते हैं अले सूर्य भगवान तुम इकल क्यों नहीं रहे हो, उग क्यों नहीं रहे हो। तो इंसानों का काम है कहना, आपका काम है करना। जो सोचे कि तुम्हारी हार हो जाए उसे जीत कर दिखा दो, बस यही एक उगता हुआ सूरज हमें एक सीख देता है। और श्रोताओं, इसके बाद हम बात करेंगे आज के हिस्ट्री, यानी कि आज 21 तारीख है, 21 अगस्त है, शुक्रवार का दिन है। समय की बात करूं तो 8:35 हो चुके हैं। तो हम आज के हिस्ट्री के पन्ने क्या कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ मैसेज है उनको भी शामिल कर लेते हैं। और मैंने आज से आप सभी से आज क्वेश्चन पूछ ही लिया सुबह सुबह कि आप सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं। जो ऑफिस जाते हैं मूंग दाल के स्वाद लिए बिना नहीं जाते हैं, या फिर बस ऑफिस निकल जाते हैं, तो आपकी सुबह की शुरुआत कैसे होती है, आज का हमारा क्वेश्चन ये है आप सभी से। मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट हो गए हैं। आपको और एफएम परिवार को सुनने वालों को, सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्ण और राधे।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
0: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास।

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है जी बिंदास मॉर्निंग शो में। और समय की बात करूँ तो 8:48 हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 21 अगस्त। आई होप कि आप सभी ऑफिस के लिए निकल गए होंगे, तो हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूलें। और सुबह का ब्रेकफास्ट यानी कि जंक फूड वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि आप जो भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हेल्दी होना चाहिए ताकि आपको पूरे दिन एनर्जी मिलती रहे। और बिल्कुल कूल माइंड के साथ ऑफिस से निकलना है। अगर आप पॉजिटिव माइंड के साथ ऑफिस से निकलते हैं तो आपका पूरा दिन पॉजिटिव जाता है और हर काम आप आसानी से अच्छे तरीके से कर लेते हो। बस चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होना चाहिए ताकि दूसरा वाला भी देखे कोई आपको चेहरे को तो बोले अरे वाह क्या बात है, मुस्कुराता हुआ चेहरा। यानी कि दूसरे इंसान के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है आपके चेहरे को देखकर। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल जरूर रखिए। चलिए आज की हिस्ट्री क्या कहती है जरा आज के पन्ने देख लेते हैं भैया। आज ही के दिन यानी कि 1988 में भारत में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं के बीच यह वर्ष राष्ट्रीय राजनीतिक में बदलाव के लिए महत्वपूर्ण रहा। 1959 में हाईवे अमेरिका का 50वां राज्य

1991 में यानी कि तालविया ने सोवियत संघ में स्वतंत्रता की पूर्ण स्थापना की घोषणा की।

और 1911 में यानी कि पेरिस के लोवर संग्रहालय में प्रसिद्ध मोना लिसा यानी कि पेंटिंग चोरी हुई थी। मतलब सोचिए श्रोताओं, यानी कि उस टाइम की जो पेंटिंग होती थी ना, पहले अभी भी बहुत है, हर किसी की पेंटिंग कला को बहुत सराहना दिया जाता है, लेकिन उस समय क्या होता था कि बहुत कम होते थे, लेकिन उनकी मान्यता बहुत होती थी। उनको यानी कि अच्छे से पेंटिंग कराने के भी उस टाइम बहुत ज़्यादा पेमेंट मिलता था, और जो कोई अच्छा पेमेंट यानी कि पेंटिंग कर देता था तो कभी कभी ऐसा होता था कि उस पेंटिंग की कॉपी करने के लिए ना चोरी कर लेते थे। अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए जनरेशन आगे बढ़ रही है, और मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके अंदर भाई कहाँ से वो दिमाग आ रहे हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल वाले आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। मतलब आप उनकी बातें सुनकर ना हैरान हो जाओगे, इतने प्यारे इतने क्यूट से होते हैं। कुछ मैसेज उनको भी शामिल करेंगे श्रोता। चौधरी मुमताज आलम जी कनेक्ट हो गए हैं।

जनकपुरी सहारनपुर से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं जोन रोजेस पलवलील जी, और इनका कहना है सारा दिन हैप्पी फ्राइडे, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस, बी सेफ, थैंक यू सो मच। और आगे लिखते हैं, कमजोरिया मत खोज मुझ में, मेरे दोस्त एक तू ही शामिल है मेरी कमजोरियों में। क्या बात है। चलिए श्रोताओं, एक और गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होती है आप सभी के बीच।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है बिंदास मॉर्निंग शो में श्रोताओं, और समय की बात करूं भैया तो समय हो चुका है 9 बज गए हैं, यानी कि दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है। और अब हम बात करेंगे आज की तारीख 21 अगस्त, यानी कि क्या स्पेशल डेज है आज के दिन में, यानी कि जो भी स्पेशल डे है ना बहुत ही खास है, जिसका हमें आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले कुछ मैसेज भी है वो भी शामिल करेंगे और गाना सुनेंगे, उसके बाद कनेक्ट होंगे और फिर बताऊंगी आज का स्पेशल डे क्या है। गुड मॉर्निंग रीना मैम, कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं जी, बिंदास मॉर्निंग शो में कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन सर अपना नाम भी बताया करिए प्लीज। क्योंकि आपका नाम हमारे लिए जाना बहुत जरूरी होता है, और इनके नंबर है 4 डिजिट यानी कि 2154 है, तो कृपया आप अपना नाम मैसेज के साथ साथ आप अपना नाम भी जरूर बताएं। और एक 90s के गाने, बहुत ही शानदार वाला ये गाना, उसको सुनते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ यानी कि आज का स्पेशल डे क्या है।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है बिंदास मॉर्निंग शो में श्रोताओं। और समय की बात करूं तो 9:06 हो चुके हैं और आज का स्पेशल डे बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आज मनाया जाता है वर्ल्ड सीनियर सिटीजंस डे। इस दिन को मनाने की शुरुआत यानी कि अमेरिका से हुई थी जब साल 1988 में तकनीकी अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रिंग ने यानी कि 21 अगस्त को ये दिन घोषित किया था। बाद में बुजुर्गों के सम्मान और उनके योगदान को याद करके संदेश के साथ दुनिया भर में पहचान यानी कि जो हमारे बुजुर्ग हैं सीनियर सिटीजन उनका डे है आज। तो आज जरा अपने घर के दादा दादी नाना नानी और सभी बुजुर्ग को सिर्फ बुजुर्ग मत समझिए क्योंकि इनके पास अनुभव की वो किताब है जो गूगल पर भी नहीं मिलते हैं। ये आप क्वेश्चन यानी कि आंसर ढूंढते रह जाएंगे, ये चुटकियों में आपको कब बता देंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। आप हैरान हो जाएंगे कि जिस आंसर को मैं गूगल पे निकाल रहा था वो निकल नहीं पाया, लेकिन ये बता देते हैं भाई उनके पास तजुर्बे बहुत हैं। अगर आप कोई भी छोटा मोटा सवाल पूछने बैठ जाओ कि इतने इतने हिसाब करने बैठ जाओ वो सेकंडों में आपको उसका आंसर बता देंगे और आप कैलकुलेटर पर ढूंढते रह जाओगे, अच्छा ये प्लस माइनस करते रह जाओगे, लेकिन वो आपको कब आंसर बता देंगे आप भी हैरान रहोगे। इनकी डांट में भी प्यार है, बातों में भी अनुभव है और आशीर्वाद में पूरी दुनिया की ताकत है। इसीलिए आज एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उनके पास जाइए, उनका हाल चाल पूछिए, कहिए आप हमारे लिए बहुत खास हैं। क्योंकि जब वो घर में होते हैं ना तो घर एक अलग ही रौनक स्वर्ग लगता है हमारा घर, क्योंकि घर के बुजुर्ग तो घर सिर्फ घर में नहीं रहते, घर को स्वर्ग बना कर रहते। एक पुरानी कहानी बन जाती है उनके आगे, जब भी आप उनके आगे बैठो और बोर होते हो ना तो ये कि बोलो कि अच्छा आप अपनी कहानी बताओ, अपनी जर्नी की कहानी बताओ, सुनकर आपको इतना अच्छा लगेगा ना बहुत ज्यादा। सो जिनके ही घर में बुजुर्ग है दादा दादी नाना नानी उनसे प्यार से बात करिए, उनके लिए भी समय निकालिए, फोन को कुछ देर के लिए साइड रखिए और उनसे ढेर सारी बातें करिए क्योंकि आज है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं यानी कि सीनियर सिटीजन डे की। तो कौन कौन है जो भाई अभी भी अपनी दादा दादी से प्यार से बात करता है? और सच बताऊं पहले के टाइम में ना हमारे पास कितने भी पैसे रहते थे और अभी भी चाहे 10 रुपए हो चाहे 20 रुपए हो, लेकिन उनसे पैसे मांगने का ना अलग ही मजा आता है। चाहे वो उनकी जो पेंशन आती थी ना तो जब भी आप उनसे बोलो कि 10 रुपए दे दो तो वो देते जरूर थे आपको, चाहे 5 रुपए दे चाहे 10 रुपए दे, देते थे आपको। और उसका आप लाखों करोड़ों रुपए कमा लो आज, लेकिन जो वो 10 रुपए उनसे मांगने में जो मजा आता था ना आज वो पता नहीं कहाँ लुप्त हो गया। तो अपने दादा दादी के साथ बैठिए, बात करिए, एंजॉय करिए, उनसे कुछ तजुर्बे लीजिए, उनसे बात करिए, अनुभव करिए। उनके बातें बड़े शानदार होते हैं जो गूगल पे भी नहीं मिलते आपको। चलिए फिलहाल मिलेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद, उससे पहले एक

0: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: हाय, लेकिन आज का मौसम है ना भैया, वो थोड़ा सा बेईमान रहने वाला है। यानी कि अभी फिलहाल टेम्परेचर की बात करूं मुरादाबाद की, तो 21 यानी कि 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस टाइम। गुड वाली मॉर्निंग है जी। बिंदास मॉर्निंग शो में आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है, और समय की बात करूं श्रोताओं तो 9:22 हो चुके हैं।
1: सारी सदियां तेरी।
0: और अब चलिए जरा किचन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि किचन की जो सामाने है ना भाई, महंगी होती है जा रही है। रोजमर्रा की जो चीजें हैं, सुबह की ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक, अब हर चीज महंगी हो गई है। चीनी की बात कर लो, है ना, जो सुबह सुबह भैया जिनकी शुरुआत यानी कि चाय के बिना नहीं होती है, अब चाय पीने से पहले थोड़ा सा पॉकेट पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। लेकिन चाय तो पियेंगे, वो भी शक्कर वाली, बहुत ज्यादा मीठी वाली, शरबत वाली चाय पियेंगे। बहुतों की आदत होती भैया इतने ज्यादा चीनी वाले चाय पीते हैं कि पूछो मत, मतलब दोनों लिप्स चिपक जाएं अगर ऐसे चाय पियो तो, इतनी मीठी चाय पीते हैं। फिलहाल चलिए महंगाई की तरफ देखते हैं। चीनी तो हो ही गई है, यानी कि 60 रुपए किलो मिलेंगे। अब जो पहले 44 रुपए किलो मिलता था ना, अब वो 60 रुपए किलो कर दिया गया है। और वहीं सरसों के तेल की बात करूं तो पहले आप दुकान पर जाते थे तो वो 108 रुपए किलो, यानी कि 108 रुपए का मिल जाता था, वहीं अब वो आपको 190 रुपए का मिलेगा, यानी कि 10 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। बासमती चावल जो 60 रुपए का मिल जाता था, अब वो 70, यानी कि जितनी भी जो है रोजमर्रा की चीजें 10-15-25 रुपए अब बढ़ा दिए गए हैं। तब भी आप देखिए, सामान लेने जब भी आप दुकान पर जाए, शॉप पर जाते हैं, तो एक बार मोल भाव जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं, आप तो पहले हिसाब जो रेट था उसके हिसाब से आप पैसे देंगे उनको, लेकिन जब वो आपको अपना हिसाब बताएंगे तो शायद आपके कान थोड़े खड़े हो जाएंगे ना। तो इसीलिए जब भी आप सामान खरीदने जाए तो एक बार मोल भाव जरूर करिए। सब्जी से लेकर राशन तक, ग्रोसरी तक, हर चीज महंगी हो गई है, हर चीज। भैया चाय जो इतना प्यारा होता था, आप उसको भी नहीं छोड़ा है। यानी कि जब भी आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी त्योहार आते हैं, जब भी फेस्टिवल आता है ना, तो चीजें महंगी हो जाती है, पता नहीं क्यों हो जाती है। लेकिन अब कितनी महंगी हो जाए, इंसान खाएगा तो जरूर, एक दिन नहीं खाएगा, दो दिन नहीं खाएगा, भाई तीसरे दिन तो जरूर खाना खाएगा ना। अब महंगाई बढ़ती है तो बढ़े, खाना तो जरूर खाना है, लेकिन साथ ही साथ इन चीजों का भी ध्यान रखिए। जब आप बाहर जाते, जो पैकेट वाले आप ले रहे हैं सामान, उस पर जरूर रेट डेट जरूर देख लीजिए भैया, क्योंकि डेट देखना बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता कि उस पैकेट के अंदर कब की पैकेजिंग है और उसके अंदर क्या, मतलब एक बार आपने नजर जरूर देख डालना है कि आखिर जो पैकेट वाले सामान ले रही हूं मैं, क्या वो अच्छा है या अच्छा नहीं है। साथ ही साथ पापड़ वगैरह बाहर से खरीदते हैं, वो चीज मुझे लगता है कि अवॉइड करिए, क्योंकि उसमें कलर जितने केमिकल होते हैं आपको भी नहीं पता है कि अंदर बॉडी के अंदर क्या हार्म करेगा। फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, क्या हमारे श्रोता भेजते हैं आज की सुबह। हर हर महादेव। रीना जी क्या हाल है आपके? मारे तो बढ़िया है, मारे भी बढ़िया है सर। बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से कनेक्ट होते हैं। गुड मॉर्निंग रीना मैम। और ये नितिन कुमार खुशहालपुर मुरादाबाद से कनेक्ट हो गए हैं, और इनकी फरमाइश है भोले बाबा का गाना सुना दीजिए। अरे सर, सुबह सुबह तो हम भोले बाबा के गाने ही सुना रहे थे आपको।
2: कोई हो ही नहीं सकता मेरे सजदों को साथी, तेरा दर काफी।
0: मोहसिन अंसारी जी कनेक्ट हो गए हैं और कहते हैं, रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जो कद्र और सब्र से निभाए जाते हैं। अगले मैसेज की बात करूं श्रोताओं तो मैसेज आता है हमारे, भूपेश शर्मा जी कनेक्ट होते हैं नगर पंचायत पागबड़ा से, और ये कहते हैं, झुकने का अर्थ यही कदापित नहीं होता कि अपने सम्मान खो दिया, कि आपने सम्मान खो दिया, हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। प्रभु गुरु एवं बुजुर्ग का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। बिल्कुल सही कहा आपने सर, झुकना इंसान, जरूरी नहीं कि आप झुक रहे हैं तो आपकी इंसल्ट हो रही है, आपकी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि झुकना तो आपको पड़ता है, कोई सामान उठा लीजिए जो नीचे रखा है उसके लिए तो आप झुकेंगे, वैसे हमारे बड़े बुजुर्गों की आशीर्वाद होती है। आज के टाइम में क्या है कि हम उनके कद्र नहीं करते हैं, इनफैक्ट हम जितने आगे बढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं मुझे लगता है कि उतने ही हम अपने संस्कारों को ना भूलते जा रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो अब हम बोल देते दूर से ही बोल देते राम राम राधे राधे, पैर नहीं छुपाते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद अब जरूर लीजिए, उनका आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद दोनों बराबर होते हैं। प्रिय मित्र आनंद जी, सर प्रिय मित्र आनंद जी तो अभी नहीं आ पा रहे शो में, तो आरजे रीना है प्रोग्राम का आनंद उठा रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं काठमांडू से,
2: दिल जानिया जिंद में
0: प्रसाद जी
2: तेरे सहारे सांस है मे,
0: बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, हम आपके प्रोग्राम में कनेक्ट है, गुड मॉर्निंग,
2: वेरी बादल जैसा,
0: जय श्री राम, गुड मॉर्निंग रीना जी, दुर्गे सैनी कल्याणपुर मुरादाबाद से कनेक्ट
2: है मेरी।
0: चलिए श्रोता फिलहाल तो हम गाना सुनेंगे, उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, एक और प्यारा शानदार वाला गाना सुनते हैं, ठीक है जी। फिलहाल आपने कहीं नहीं जाना है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है, समय की बात करूं तो 9:28 हो चुके हैं। और जब हमारे लाइफ से कोई एक ऐसा इंसान जाता है ना, तो हम उसको एक ही बात बोलते हैं, क्या

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर। बुक ना

0: अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
2: हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। बिंदास मॉर्निंग शो में और समय की बात करूं श्रोताओं, तो 9:38 हो चुके हैं, लेकिन अब का क्या हो गया ना, जब भी किसी भी कोई भी प्रॉब्लम में हो, किसी को चोट भी लग जाती है सड़क दुर्घटना में, तो आज के टाइम में क्या है, मदद करने के बजाय वीडियो बनाया जाता है, सेल्फियां ली जाती है। भैया के इंस्टा पर हम डालेंगे तो हमारी रीच बढ़ेगी, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, लेकिन देखिए सिर्फ रीच और फॉलोअर से क्या, इंसानियत अपने अंदर जगाना बहुत जरूरी है। अब पहले के टाइम में ये होता था कि जब भी आप किसी को मतलब जो इंसान परेशान है, चोट लगी है, आप उसकी मदद करते हैं तो आपसे 70 सवाल पूछा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब यानी कि साफ आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बल्कि पुलिस भी जब वहां पर आती है, जब आप उनको कन्फर्म करते हैं, उनको बताते हैं, तो वो सीधा आप उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, ना कि आपसे 70 सवाल किया जाता है। इसीलिए वीडियो छोड़िए, इंसानियत जगाइए अपने अंदर, वीडियो ना बनाकर उनको जितना जल्दी हो सके अस्पताल जरूर पहुंचाइए, और हेलमेट सीट बेल्ट जरूर लगाइए। मैं आपको हर बार हर रोज बोलती हूँ, हेलमेट सीट बेल्ट लगाना कोई मजबूरी नहीं है, इसमें हमारी जिम्मेदारी, हमारी सेफ है उसमें, अगर आप सेफ रहेंगे हेलमेट और सीट बेल्ट लगाते हैं। हाँ जी, फिलहाल देखिए रक्षाबंधन बहुत ही नजदीक है, बहुत ज्यादा करीब है, तो आपने क्या करना है जी, जो भी आप बाहर मिठाई खरीदने जा रहे हैं, घेवर लेने जा रहे हैं, तो जरा सोच समझ कर खरीदिएगा, क्योंकि हर चमकता चीज सोना नहीं होता है। आप और हम सब क्या करते हैं आजकल, यानी कि जो चीजें होती है ना, यानी कि बहुत चमकती हैं, जो मिठाइयां बहुत सुंदर दिखती हैं, हम उसी पे अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज्यादा और वही खरीदते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। मिलावटें बहुत ज्यादा आ रही है आज के टाइम में, बाहर से आप जो भी खरीद रहे हैं जरा सोच समझ कर, और साथ ही साथ आज की तारीख 21 तारीख है और कल आपके पास डेट है, यानी कि लास्ट डेट। अब आप सोच रहे कि लास्ट डेट किस चीज का है, अरे भाई EKYC आपने कराना है। अगर आपके पास सिलेंडर है, आप घर में सिलेंडर यूज करते हैं तो, और जो पाइपलाइन है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप LPG इंडियन या जो भी सिलेंडर यूज करते हैं उसका EKYC कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें दूसरा चांस मिल गया है, यानी कि 23 अगस्त तक आपके पास समय था नहीं है अभी, क्योंकि कल का दिन है और आप सोचेंगे कि हम 23 तारीख को जाए कराने के लिए, तो ये थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, कॉस्टली पड़ सकता है, इसीलिए 2 दिन है आपके पास, EKYC जरूर कराइए, अदरवाइज आप सिलेंडर बुक करेंगे तो परेशानी आएगी, सब्सिडी की तो खैर बात ही छोड़िए, जब तक आप EKYC नहीं कराएंगे तो सिलेंडर बुक होएगा नहीं, तो सब्सिडी का क्या ही है, तो इसीलिए अभी आपके पास 2 दिन समय है, जाके EKYC जरूर कराइए। और आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए, और लेकर आने वाले आप सभी के लिए कड़क म्यूजिक, जिसको आपने सुनना है और बताना है भैया कि आखिरकार क्या है इसका राइट आंसर, और साथ ही साथ आज यानी कि शुक्रवार कल शनिवार से ही, यानी कि आप बाहर देखेंगे मुरादाबाद जो सड़कें हैं, एक तरफ वाला जो सड़क है वो सिर्फ कांवड़ियों के लिए होगा, और यानी कि सैटरडे और संडे बहुत ज्यादा क्राउड मिलने वाले हैं आपको सड़कों पर, बहुत ज्यादा, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस जो कर्मी है वो तैनात रहेंगे और जगह जगह पर शिविर भंडारे चालू रहेंगे, तो भीड़ भी आपको बहुत ज्यादा कल मिल, यानी कि संडे सैटरडे में बहुत ज्यादा भीड़ मिलने वाली है। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं श्रोताओं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681। पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।

हां जी, गुड वाली मॉर्निंग है श्रोताओं, बिंदास मॉर्निंग शो में। और समय की बात करूं तो 9:00 यानी कि 47 मिनट हो चुके हैं और अब आप सभी के बीच हम लेकर आ गए हैं कड़क म्यूजिक, जिसको आपने सुनना है जो मैं म्यूजिक प्ले करूंगी और गाने का आपने नाम बताना है, ओनली गाने का नाम बताना है। चलिए जी, तो आप रेडी है यानी कि वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, तभी आप अच्छे से सुन पाएंगे और राइट आंसर सबसे पहले पहुंचा पाएंगे। तो चलिए हम प्ले करते हैं।

हाँ जी, सोचिए और मैसेज करिए कि आखिरकार जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है कौन से गाने का है। नंबर है 9823789686 पर आपने मैसेज करना है। वंस अगेन एक बार और मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ आप सभी के बीच।

जी, आप सभी के बीच चार्जरीना कनेक्ट हो गई है फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आज की तारीख यानी कि 21 अगस्त और समय की बात करूं तो 9:53 हो चुके हैं बिंदास मॉर्निंग शो में। और आज की अगर मैं वेदर की बात करूं श्रोताओं, तो आज मुरादाबाद के साथ साथ यूपी के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश बताई जा रही है, साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब और पहाड़ी इलाकों में भी बारिश की संभावना आज जताई जा रही, क्योंकि आज है 21 तारीख और आज बारिश तो होनी लाजमी है जी। बाहर का वेदर भी बहुत ही सुहाना है, यानी कि कभी धूप, कभी छाव, कभी बादल, कभी ठंडी हवाएं। लेकिन आप सभी के बीच एक कड़क म्यूजिक है जिसको आपने सुनना है और गेस करना है कि आखिरकार गाने का क्या नाम है।

चलिए जी, चलिए जल्दी जल्दी सोचिए और मैसेज करिए, क्योंकि अगली बारी आपकी ही मैसेज की है। श्रोताओ, नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है कि आखिरकार जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है आप सभी के बीच, गाने का क्या नाम है जी। बस यही सोचना है और आपने मैसेज कर देना है और बन जाना है बिंदास मॉर्निंग शो के विनर। तो चलिए एक बार और प्ले करते हैं।

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है जी बिंदास मॉर्निंग शो में। और अब आप सभी के मैसेज की बारिश होता हो तो आज का म्यूजिक बहुत ही शानदार मैंने प्ले किया था आप सभी के बीच।

0: तो चलिए देखते हैं कि इनका हमारे पास राइट आंसर आया है। गुड मॉर्निंग दी निखत फातिमा जी कनेक्ट हो गई है राइट आंसर के साथ। और इनका कहना है कि पठान मूवी है और गाना है झूमे जो पठान मेरी जान। क्या बात है जी, आप बिंदास मॉर्निंग शो के विनर बन गई हैं। साथ ही साथ एक वॉइस मैसेज भी आया हमारे पास, वो भी जरा सुन लेते हैं कि वो अपनी वॉइस मैसेज में क्या सुनाना चाहती हैं हमें।
1: हाय दीना फ्रोस फातिमा, सॉन्ग है झूमे जो पठान मेरी जान।
0: क्या बात है जी, झूमे जो पठान मेरी जान, गाना ही लाजवाब है सच बताऊं तो। आकांक्षा सैनी मुरादाबाद से कनेक्ट हो गई है। गुड मॉर्निंग पहुंचाती है, वेरी गुड मॉर्निंग।

0: नेहा कनेक्ट हो गई है मुरादाबाद से और राइट आंसर के साथ ये भी कनेक्ट होती है।
1: हमने हिफाजत की।
0: श्रोताओं मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। समय की बात करूँ तो 10 बज चुके हैं रेडियो की घड़ी में और समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती है और हम आप सभी के साथ मिलेंगे यानी कि शाम को इवनिंग मस्ती शो में 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय बाय। अगली आरजे भी यानी कि आरजे खुशी रेडियो आ चुकी है यहाँ पे आप सभी के बीच कनेक्ट होने के लिए।
1: मैं जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए दे दे जो जुबान मेरी जान।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
7: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, यानी बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी।
1: और आज की हमारी कहानी पहुंचती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस शहर में जिसने इतिहास में क्रांति की चिंगारी जलाई, खेल के मैदानों में देश का नाम रोशन किया और आज विकास की नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: जी हाँ, बात हो रही है मेरठ की।
1: मेरठ यानी 1857 की क्रांति की ऐतिहासिक धरती, देश के खेल सामान उद्योग की बड़ी पहचान और आज एक ऐसा शहर जहां परंपरा और आधुनिक विकास दोनों साथ साथ कदम बढ़ा रहे हैं।
0: बिल्कुल, और मेरठ की सबसे खूबसूरत बात क्या है जानती हो?
1: बताइए।
0: यहाँ विकास सिर्फ सड़कों, इमारतों और उद्योगों की कहानी नहीं है। विकास तब पूरा होता है जब सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे आम परिवार के जीवन में खुशियाँ लेकर आए।
1: और इसी सोच को केंद्र में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं समाज के अलग अलग वर्गों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकताओं में जन कल्याण और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ने पर जोर दिखाई देता है।
1: और इसी क्रम में सरकार की योजनाएं कोशिश कर रही हैं कि विकास का लाभ समाज के उन परिवारों तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
0: इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना।
1: सोचिए, एक परिवार के लिए बेटी का विवाह सिर्फ एक रस्म नहीं होता, वो वर्षों का सपना होता है, जिम्मेदारी होती है और कई बार आर्थिक चिंता भी।
0: ऐसे परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक सहारा बनकर सामने आती है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र जोड़ों का सामूहिक विवाह कराना और उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
1: योजना के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार पात्र जोड़े को सरकार की ओर से कुल 1,00,000 रुपए तक का प्रावधान है। इसमें 60,000 रुपए की आर्थिक सहायता, 25,000 रुपए की विवाह सामग्री और 15,000 रुपए का आयोजन संबंधी खर्च शामिल है।
0: यानी मदद सिर्फ चेक तक सीमित नहीं बल्कि बेटी के नए जीवन की शुरुआत को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश है।
1: और यही तो है जन कल्याण की असली तस्वीर, जब सरकारी योजना फाइलों से निकलकर किसी परिवार की मुस्कान बन जाए।
0: अब जरा सुनते हैं मेरठ की दो ऐसी युवतियों की आवाज़ जिनके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि उनके परिवार की खुशियों का हिस्सा बनी। हमारा एक खास कार्यक्रम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और इसमें लाभार्थियों की जो कहानियां हैं वो आपके बीच हम साझा करते हैं। मेरे साथ इस वक्त दो लाभार्थी यहां पर मौजूद हैं, एक का नाम है दीपांशी और दूसरी का नाम है छवि, और दोनों को लाभ मिला है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का, जो एक बहुत ही अच्छी योजना है। बहुत युवतियां, बहुत युवक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो सबसे पहले छवि और दीपांशी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: थैंक यू।
0: छवि, आप मुझे बताओ कि ये जो योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसके बारे में आपको कैसे पता चला?
2: हमारे गांव के पंचायत घर से हमें पता चला इसके बारे में, तो वहां से हमने जानकारी ली इस योजना के बारे में।
0: ओके, तो जब योजना के बारे में आपको पता चला तो आगे की प्रक्रिया कैसे की आपने, क्या किया फिर?
2: इसके लिए एक फॉर्म भरा जाता है जो जन सेवा केंद्र पे जाके हमने भरा है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं तो वो तैयार किए, फिर हमने जन सेवा केंद्र पे जाके फॉर्म भरवाया है।
0: तो जब आपका फॉर्म भरा गया था छवि, तो फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे आपके?
2: डॉक्यूमेंट तो आधार कार्ड और जी
3: बैंक की किताब लगी थी और पैन कार्ड की और फोटो लगे थे और राशन कार्ड की लगी थी।
0: अच्छा, कब हुई है आपकी शादी?
3: 27 जुलाई।
0: ओके, तो क्या क्या लाभ मिले हैं इस योजना से आपको?
3: सम्मान मिला है और पैसे आगे खाते में।
0: क्या क्या सामान मिला है
3: उसमें? कम्बल है और को मतलब 51 बर्तन है और उसमें तकिए हैं, गद्दे हैं और इटैची है, मतलब उसमें सारा सामान है।
0: और कितना कैश आएगा आपका?
3: 64,000
0: खाते में आएगा। छवि, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कौन सी डेट को आपकी शादी हुई?
2: 27 जुलाई को हुई थी हमारी शादी।
0: तो शादी के बाद क्या पॉजिटिव चेंज आए हैं आपकी जिंदगी में?
2: अच्छा लग रहा है, काफी चेंजेस आए हैं, तो सही चल रहा है, मतलब सब
0: लाइफ आसान हो गई है। हाँ। छवि, हमारे श्रोताओं को बताओ कि क्या क्या सुविधा आपको इस योजना के अंतर्गत मिली है?
2: तो हमें सामान मिला है, कुछ जरूरत की चीज मिली है और कैश मिला है।
0: कौन से गांव में आपकी शादी हुई है?
2: चंदसारा।
0: चंदसारा में। हस्बैंड ठीक है आपके?
2: हाँ ठीक है।
0: कोई दिक्कत कोई परेशानी
2: नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
0: तो इस तरह की जो स्कीम है यूपी गवर्नमेंट की, कितनी सहायक हो सकती है ये समाज के लिए या फिर उन वर्ग के लोगों के लिए जो थोड़े से गरीब वर्ग के लोग हैं?
2: हाँ, बहुत सहायक है ये, और लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, सभी सेवाओं का फायदा उठाना चाहिए जो चल रही है, जो गवर्नमेंट ने ये निकाली है।
0: छवि, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का फॉर्म भरने के बाद क्या प्रक्रिया हुई, आगे कैसे हुआ सब?
2: फॉर्म भरने के बाद फिर सबमिट कर दिया वो ब्लॉक में जाके, और उसके बाद फिर डेट मिली है हमको कि 27 तारीख को आपको वहाँ पे जाना है। कार्ड आया था उससे पता चला, फिर वहाँ पे गए हम लोग, फैमिली गई है हमारी और जो मेरे हस्बैंड है उनकी फैमिली गई है, वहाँ पे जाके फिर हुआ है।
0: छवि, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जितनी शानदार योजनाएं दे रहे हैं आप सभी लोगों को, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगी?
2: हाँ, वो ही मतलब अच्छा कर रहे हैं, वो योगी भी और मोदी जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो गरीब फैमिली है उनको काफी योजना निकाल रहे हैं, नई नई योजना आ रही है, तो अच्छा ऐसे चलता रहना चाहिए।
0: और भी बहुत सारी ऐसी युवतियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है बहुत वक्त से, या फिर पैसे की तंगी है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, उनको क्या संदेश आप देना चाहोगी?
2: उनको बस यही कि उनको जानना है इस चीज के बारे में, या नहीं पता होता बहुत से लोगों को कि क्या योजना आ रही है सरकार की तरफ से, तो बस उनको इस चीज का पता करना चाहिए प्रधान से या फिर किसी भी पंचायत घर में जाके इस चीज के बारे में पता करना चाहिए, ये तो हमारा अधिकार है, तो हमें नहीं डरना चाहिए, इस चीज से पूछना चाहिए सबसे।
0: छवि, आप क्या संदेश देना चाहोगी?
3: योगी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ।
1: आपने सुना, किसी भी योजना की सबसे बड़ी सफलता उसके आंकड़ों में नहीं बल्कि उन चेहरों की खुशी में दिखाई देती है जिन तक उसका लाभ पहुंचता है।
4: वैसे मेरठ की बात हो और खेलों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
1: बिल्कुल नहीं, मेरठ को देश की स्पोर्ट्स सिटी के रूप में पहचान मिली है, यहाँ क्रिकेट बैट बॉल हॉकी स्टिक बैडमिंटन और दूसरे खेल उपकरणों का बड़ा उद्योग है।
4: और यही तो है उत्तर प्रदेश की खासियत, हर शहर की अपनी पहचान, अपनी क्षमता और अपनी कहानी।
1: सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP पहल के तहत मेरठ की पहचान स्पोर्ट्स प्रोडक्ट से जुड़ी है, जिससे स्थानीय उत्पादों और उनसे जुड़े कारोबार को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
4: यानी मेरठ के मैदानों में खिलाड़ी पसीना बहाते हैं और मेरठ की कार्यशालाओं में कारीगर अपने हुनर से खेलों का सामान तैयार करते हैं।
1: वाह, क्या बात कही आपने।
4: क्योंकि विकास वही है जहां हुनर को पहचान मिले, रोजगार के अवसर बढ़े और स्थानीय पहचान को नई उड़ान मिले।
1: और यही वजह है कि जब हम विकास का प्रदेश कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट से नहीं होता।
4: इसका मतलब है किसी बेटी के विवाह की चिंता कम होना, किसी कारीगर के हुनर को बाजार मिलना, किसी युवा को आगे का अवसर मिलना और किसी परिवार के चेहरे पर भरोसे की मुस्कान आना। दोस्तों, फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको मिलाएंगे मेरठ की CDO यानी कि मुख्य विकास अधिकारी, जो कि 2023 से मेरठ शहर में कार्यरत हैं। मैम एक IAS ऑफिसर हैं और मैम ने मेरठ की तरक्की को, यहाँ पर हो रही प्रगति को बहुत ही करीब से देखा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन के कारण और CDO मैम के नेतृत्व के कारण मेरठ लगातार आगे बढ़ रहा है। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका।
5: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
4: मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि मेरठ में चल रही हैं इस वक्त, जो मुख्य योजनाएं हैं?
5: इस वक्त मेरठ में बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मेरठ आई थिंक एशिया का एक इकलौता ऐसा, SRTS भी चल रही है और मेट्रो भी चल रही है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भी मेरठ में ही आया और अभी गंगा एक्सप्रेस वे का भी हाल फिलहाल में ही इनॉग्रेशन हुआ। इसके साथ में बहुत सारे ऐसे रोड्स का जाल यहाँ मेरठ में बिछाया जा रहा है और जा चुका है, जिससे आज के टाइम पे कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो मेरठ इज आई थिंक नंबर वन व्हेन इट कम्स टू उत्तर प्रदेश ऑन द होल। साथ ही में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर स्कूल्स को मॉडल स्कूल्स बनाना, जहाँ पर हमारी सरकारी स्कूल्स में भी वही सारी फैसिलिटीज के लिए हम ट्राई कर रहे हैं जो सारी प्राइवेट स्कूल्स में दी जाती है बच्चों को, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ टीचिंग के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। इसके साथ में अगर हम किसानों की बात करें तो किसान सम्मान निधि और बहुत सी ऐसी अलग परियोजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जहां उन्हें सब्सिडी दी जाती है, उन्हें फर्टिलाइजर्स उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है। अगर हम युवा की बात करें तो PMEGP एक बहुत अच्छी योजना सामने आई है जिसके अंदर उन्हें लोन दिया जाता है सब्सिडाइज रेट पे। इसके साथ ही हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ में आयुष्मान कार्ड एक ऐसा गोल्डन कार्ड है जो 5 लाख तक का फ्री उपचार मरीजों को उपलब्ध कराता है किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी। और इस मेरा मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसे पिलर्स हैं जिनके ऊपर ही एक मजबूत और विकसित प्रदेश की नींव रखी जा सकती है। और हमारे यहाँ पर आप किसी भी सेक्टर की बात कीजिए तो सभी में ही काम लगातार किया जाएगा।
4: जी मैम, एक योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, तो इस योजना के बारे में थोड़ा सा आप सभी को जानकारी दें मैम।
5: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बेसिकली ऐसे निर्धन परिवारों की बच्चियों की शादी कराई जाती है जिसे खुद सरकार कराती है। इसके अंदर हाल फिलहाल में अभी जो धनराशि दी जाती है उसे भी बढ़ाया गया है, उसे भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसके अंदर सरकार ना सिर्फ उनको कुछ सामग्री देती है जैसे उन्हें ब्रीफ केस, गद्दा, चुनरी, कुछ साड़ियाँ, बेडशीट्स, कुकर, एक डिनर सेट, ये सब देती है। साथ ही साथ उनके खाते में भी डायरेक्ट पैसे दिए जाते हैं। और इसके साथ में ही एक सामूहिक रूप में एक बहुत अच्छा वेडिंग हॉल तैयार किया जाता है जिसमें उन सभी को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि वो वहाँ पर आए, शादी करें। और साथ ही में उनके परिवारजन, लड़कियों के परिवारजन और लड़कों के परिवारजन दोनों ही वहाँ आते हैं, विवाह संपन्न होता है। और साथ ही में वहाँ पर उन सभी के लिए एक प्रीति भोज भी रखा जाता है जिसके अंदर ये एक धर्मनिरपेक्ष चीज़ है जहाँ पर दोनों ही हिंदू भी और मुस्लिम परिवार दोनों की ही शादियाँ करवाई जाती
4: है। जी मैम, क्योंकि आपको 3 साल हो चुके हैं मेरठ में आपके कार्यकाल को, तो आपके अनुसार मैम जो मेरठ के लोग हैं खासकर जो ग्रामीण लोग हैं किस प्रकार इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वो क्या आपके पास आते हैं वो बताने के लिए कि मुझे ये योजना मिली है और इससे मुझे फायदा हुआ है?
5: बिल्कुल, जब हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सीधा सीधा गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा मिला है। जब हम पेंशन की बात करें, चाहे हम कोई भी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, इन सभी का लाभ उन लोगों के द्वारा लिया जा रहा है। शिक्षा की बात करें तो आज हर एक गांव में एक बहुत अच्छा स्कूल स्थापित किया गया है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर हर एक गांव में बसाया गया है। वहाँ सर जो गांव की सड़कें हैं वो बहुत अच्छी हो गई है। हर एक गांव में आज एक पंचायत घर बनाया गया है, एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। और मैं खासकर ये बात बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ मेरठ में जो डिजिटल लाइब्रेरीज या जो पंचायत घर में लाइब्रेरी बनाई गई है उसमें आज के दिन में टोटल 1231 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, चाहे वो पुलिस भर्ती हो या फिर SSC CGL हो या फिर UPSC हो, इन सब में उत्तीर्ण हुए हैं, वो उन्होंने सफलता पाई है। तो मेरा मानना है कि ये जो सरकार की सारी स्कीम्स है, शासन की सारी परियोजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सरकार लोगों तक पहुंचाती है। और हम सब लोगों का भी यही एक ट्राई हमारा रहता है, कोशिश रहती है कि हम सब उन सभी लोगों तक जा सके और उन सभी लोगों की मदद कर सके जो इनके इच्छुक है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर गांव में समूह की महिलाएं भी बहुत अच्छा काम कर रही है। एक हमारे यहाँ पर समूह की महिला है जो फूलों की खेती कर रही है खेरकौदा में, एक समूह की महिला है जो बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बना रही है, उसको अलग रेसन कोट करके वो जयपुर में अपना माल सप्लाई करती है। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दीदियां हैं जो आज लखपति दीदी बन
4: गई। जी जी जी,
5: यहाँ मेरठ जनपद में हमने ना सिर्फ इन सब बट आशा बहुओं का भी बहुत ध्यान रखने की कोशिश की। यहाँ पर DM सर के नेतृत्व में एक आशा पेकट के प्रोग्राम चलाया गया जिसके अंदर आज के दिन हमारी जो एक एवरेज आशा जो सैलरी पा रही है, जो एक पैसे पा रही है मंथली, वो लगभग 9000 के लगभग पहुंच गए हैं, जिसके अंदर अभी हाल फिलहाल भी DM सर के द्वारा हमारे यहाँ पर 4 ऐसी आशाओं को सम्मानित भी किया गया था वॉशिंग मशीन देकर, जो सबसे ज्यादा पैसे पा रही थी। और मैं ये बहुत खुशी के साथ कह सकती हूँ कि वो चारों ही आशा 14,000 से 15,000 रुपए प्रति महीना वो कमा रही थी। तो ये सभी चीजें दर्शाती है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कैसे हम लोग एक अच्छी दिशा में आगे प्रगति कर रहे हैं।
4: जी मैम, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा जो गांव के लोग होते हैं, मैम बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, आपके ऑफिस में भी काफी लोग आते हैं, मैम सारी योजनाओं का तो सभी को नहीं पता होगा, तो लोगों तक योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए मैम विभाग की तरफ से मैम क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, क्या क्या कार्यक्रम किए जाते हैं?
5: हर एक सेक्टर अपना अलग अलग कार्यक्रम करता है और साथ ही में हमारे द्वारा भी एक कन्वर्जेंस भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि समय समय पर यहाँ पर ग्राम चौपालों का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर पूरा पूरा प्रशासन उठ के वो गांव में जाता है और वहां सभी लोगों को सभी स्कीम्स के बारे में बताता है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, बहुत सारे पैम्फलेट्स बांटे जाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में उन्हें इन्वाइट किया जाता है। जैसे अगर मैं कृषि की ही बात करूं, तो कृषि में हमारे द्वारा ऐसी बहुत सारी चीजें की जाती है जहां पर यहां से साइंटिस्ट, जिले से साइंटिस्ट या हेडक्वार्टर से साइंटिस्ट उनके गांव में जाते हैं और उन्हें बताते हैं, और वाइस वर्सा भी, उन्हें भी बहुत बार ब्लॉक्स पे या फिर हेडक्वार्टर्स में बुलाया जाता है कि वो लोग यहाँ आके सीखे और जानकारी ले। जैसे अगर मैं डीपीओ विभाग की बात करूँ तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलाई जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत, कन्या सुमंगला योजना जैसे हो गई, जिसमें पहले लोगों को शिक्षित किया जाता है और फिर उनका लाभ उनके द्वारा लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे बैनर्स सोशल मीडिया सर डीएम सर का, कमिश्नर सर का, और सूचना विभाग के द्वारा भी समय समय पर न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में, बैनर्स में बड़े बड़े ये चीज बहुत सारे लोगों तक बताई जाती है। और साथ ही में आपका रेडियो भी हमारी बहुत बहुत हेल्प करता है ये सब चीजें आम जनता तक पहुंचाने के लिए। तो मेरा मानना है कि जिस जिस प्लेटफॉर्म पर हम जैसे जैसे सोच सकते हैं हम लोग वैसे ट्राई करते हैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। जैसे कल ही एक कॉन्क्लेव हुआ जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाया गया जो कैटल फार्म चलाते हैं या जो पशुपालन से रिलेटेड है, तो ऐसे भी बहुत सारे कॉन्क्लेव यहाँ पर कराए जाते हैं।
4: जी मैम, क्योंकि हमारा जो एक कार्यक्रम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश जागरूकता के लिए है, लोगों तक हम योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, बेसिकली मेन पर्पस है अवेयरनेस, तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी मैम?
5: हाँ, मैं सभी लोगों से यहाँ पर आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूंगी कि आप सभी लोग जागृत रहिए। यहाँ पर आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी फैलाई जा रही है जो भ्रामक है, जो सही नहीं है, तो एक बार प्लीज़ फैक्ट चेक कीजिए। कोई भी चीज़ जो आप सोशल मीडिया में पढ़ते हैं या अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे पढ़ते हैं वो सही नहीं भी हो सकती है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए, देश के हित के लिए काम कीजिए और आप खुद तरक्की कीजिए ताकि देश भी आपके साथ तरक्की करे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 2047 तक हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसके लिए हमें एक हमें अपने प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है और उसके लिए हम सभी को बहुत अच्छे से एकदम एड़ी चोटी का जोड़ लगा के काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा देश वो हर बुलंदी पर पहुंचे जहां पर वो पहुंचने का हकदार है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार विकास और जन कल्याण को साथ लेकर आगे बढ़ने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है,
4: और इन प्रयासों की खासियत यही है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों की स्थानीय जरूरतों और उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विकास की नई संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया जा रहा है।
1: मेरठ इसकी एक खूबसूरत तस्वीर पेश करता है, एक तरफ इतिहास की विरासत, दूसरी तरफ खेल और उद्योग की ताकत और साथ में सामाजिक कल्याण की योजनाओं से जुड़ती नई उम्मीदें। मेरठ ने 1857 में बदलाव की एक चिंगारी देखी थी
4: और आज वही मेरठ नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में अपनी अलग पहचान बना रहा है।
1: मेरठ जहां खेल का हुनर है,
4: जहां उद्योग की ताकत है,
1: जहां इतिहास की विरासत है
4: और जहां जन कल्याण की योजनाओं से जुड़ती हैं उम्मीदें।
1: तो ये थी मेरठ से विकास की एक ऐसी कहानी
4: जिसमें आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है लोग, उनके सपने और उन सपनों को मिलती नई दिशा,
1: क्योंकि उत्तर प्रदेश बदल रहा है
4: और जब प्रदेश आगे बढ़ता है तो शहर की कहानी विकास की कहानी बन जाती है।
1: आप सुन रहे थे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को

0: लेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। एवरीवन, वक्त हुआ है अभी स्टूडियो की घड़ी में 10:25 और शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और शुक्रवार की इस खूबसूरत सुबह में एक छोटी सी बात दिल को कहना चाहूँगी कि हमेशा ज़िंदगी ना हमारी पसंद के हिसाब से नहीं चलती, लेकिन हर परिस्थिति में हमारा रवैया, हमारा व्यवहार और हमारी जो पसंद है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ लोग हमारे हिसाब से नहीं बदलते और कुछ रास्ते हमारी उम्मीद से ज़्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन इन सबके बीच हम कैसे मुस्कुराते हैं और कैसे खुद को संभालते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, ये फैसला सिर्फ हमारा ही होता है। तो आज कोशिश कीजिए कि हालात जैसे भी हों, आपका सुकून किसी के व्यवहार का मोहताज नहीं होता, तो इसीलिए आप मुस्कुराइए। और मुस्कुराकर दिन की शुरुआत कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब हम मुस्कुराहट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो यकीन मानिए सब कुछ अच्छा ही होता है। और आज फ्राइडे है, बहुत ही खूबसूरत सा दिन है, शुक्र है कि शुक्रवार है आज। क्या कुछ स्पेशल है, 21 अगस्त है आज, 21 अगस्त की तारीख है और 21 अगस्त को क्या कुछ खास हुआ है सब आपको पता लगेगा। पूरे वर्ल्ड में हमारे मुरादाबाद में क्या चल रहा है सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए खुशी यहाँ पर है। आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपने संदेश, अपने मैसेज हमें पहुंचा सकते हैं। आज की सुबह हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। तो चलिए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना, लेकिन उससे पहले कुछ एड ब्रेक का टाइम हो गया है, तो एड ब्रेक के बाद हम कुछ म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपसे फिर से कनेक्ट होंगे। तब तक आप भी मेरे साथ जल्दी से कनेक्ट हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना, पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार्क मुरादाबाद, कॉल करें 7055077052। अब पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और दोस्तों, यहाँ पर समय हुआ है 10:41 एंड आपके बैक टू बैक इतने प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं, एवरी मॉर्निंग आते हैं एंड अच्छा लगता है हमें जब आप रेगुलर हमें मैसेज पहुँचाते हैं। और अभी हमारे श्रोताओं ने क्या पहुँचाया है वो हम बताएंगे आपको। लेकिन दोस्तों, कुछ रिश्ते ना ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी चीज़ों की नहीं, हमारी मौजूदगी की ज़रूरत होती है। जी दोस्तों, आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त को आज ही का दिन समर्पित है हमारे जीवन के उन अनमोल लोगों के नाम जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे बेहतर कल के लिए समर्पित कर दिए। हमारे वरिष्ठ नागरिकों के नाम आज मनाया जाता है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, यानी विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। ये वो लोग हैं जिनके पास उम्र का अनुभव है, रिश्तों की समझ है और लोगों को देखने का एक ऐसा नज़रिया है जो शायद किसी किताब में नहीं मिलता। हम अक्सर सोचते हैं ना कि अपने बुज़ुर्गों के लिए क्या खास करें, कोई महंगा तोहफा दें, कहीं घूमने ले जाएं, घुमाने ले जाएं या उनके लिए कुछ बड़ा करें। लेकिन सच तो ये है कि उन्हें हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। कभी उनके पास बैठकर 2 मिनट बात कर लीजिए, उनकी पुरानी यादों सुन लीजिए एंड उनसे पूछ लीजिए कि आज आपका दिन कैसा रहा। शायद आपके लिए ये सिर्फ कुछ मिनट हों लेकिन उनके लिए ये पूरे दिन, उनका ये पूरा दिन खूबसूरत बना सकता है। आपका एक छोटा सा जब आप उनसे हालचाल पूछते हैं, उनके बारे में मालूम करते हैं, तो उनको मतलब उनका जो पूरा दिन है ना वो खूबसूरत गुजरता है और वो मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं कि चलो हमारे फैमिली मेम्बर्स ने, हमारे बच्चों ने हमारा हालचाल पूछा, हमसे बातचीत की। और आज सोशल मीडिया ने हमारी पूरी दुनिया से, मतलब पूरी दुनिया से क्या किया है ना, देखिए जोड़ दिया है। सब लोग सोशल मीडिया पर आजकल बिजी हैं लेकिन कभी कभी इसी भागदौड़ में हम अपने सबसे करीबी जो लोग हमारे पास बैठे होते हैं, हम उनके पास बैठे तो होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम उनसे दूर होते हैं। पास भले ही बैठे हों लेकिन जब हम सब लोग, कभी कभी ऐसा भी होता है ना फैमिलीज में कि फैमिली सब लोग साथ मिलकर खाना खा रहे हैं लेकिन खाना खाते खाते भी सब अपने मोबाइल में बिजी हैं, पास होकर भी ऐसा लगता है कि वो अजनबी।

एक दूसरे को नहीं जानते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं। माना कि काम जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि अपनी फैमिली को टाइम ना दे पाओ। तो दोस्तों, आपकी फैमिली में भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनकी बात को सुनो, उनके पास थोड़ा बैठो, अच्छा लगता है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि वक्त जो गुजर जाता है ना, वो दोबारा नहीं आता है। तो मैं वही कहना चाहती हूँ आपसे फिर से कि अपने अपनों को टाइम दीजिए। ज़्यादा बड़े बड़े तोहफ़ों की उन्हें नीड नहीं होती है, बस वो चाहते हैं कि 5 मिनट हमारे पास बैठें, हमारी बातों को सुने। तो आपके घर में जो सीनियर सिटीजन है ना, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए, थोड़ा सा समय निकालिए। आप घंटों फ़ोन पर बिता देते हैं, रील को स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स को, तो थोड़ा सा समय अपनी फैमिली को भी दीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है अपने बड़ों से। तो आज यही डे है, एंड मैं तो कहती हूँ कि हर दिन उनके पास बैठिए। जब आप उनके पास बैठते हैं, उनसे हम उनकी ज़िंदगी के बारे में, जो उन्होंने अनुभव किया है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, राइट ना? आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप अपने बड़ों से कोई ऐसी बात आपने जो सीखी है, वो ज़िंदगी में आप आज भी फॉलो करते हैं कि मेरे बड़ों ने ऐसा कहा था? होता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप अपने ज़िंदगी में उनको फॉलो करते हैं, और जब आप उनको फॉलो करते हैं तो वो चीज़ें बहुत काम करती हैं आपकी लाइफ में आगे। तो मुझे बता सकते हैं, एंड मेरा मोबाइल नंबर है 9837896896। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। और जो मैसेज हमारे पास हैं, उनको हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं आज की सुबह। हमारे प्यारे प्यारे श्रोता, क्या पहुंचाते हैं आज की मॉर्निंग? जरा उनके दिल के हाल भी हम जान लेते हैं। वैसे तो सब अच्छे ही हैं, हम उम्मीद करते हैं, लेकिन आपके संदेशों में जो खुशी होती है ना, खुशी को वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती है। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें मैसेज पहुंचाती हैं रानी नांगल से रिहाना जी। आज की सुबह गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी रिहाना, बताइएगा कैसे हैं आप। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है कश्मीर से महराजुद्दीन जी का। एंड ये हमारा शो एवरी मॉर्निंग सुनते हैं, अपना यू नो मैसेज पहुंचाते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर, शुक्रिया आपका अपना संदेश पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का। साथ में शहीद शारिक अली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं। गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसी हैं सर? हम तो ठीक हैं, आप बताइएगा आप कैसे हैं। और ये कह रहे हैं आज की सुबह कि आप हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिएगा। बिल्कुल सर। एक मैसेज और हमें मिला है यहाँ पर मुरादाबाद से, एंड ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं हरिओम महेश्वरी जी लाइन पर मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं, एक सॉन्ग हमें सुनवा दीजिएगा। ये गाना सुनना चाहते हैं, तेरी मेरी प्रेम कहानी किताबों में भी ना मिलेगी। ओके, तो ये ट्रैक हम आपको सुनवाएंगे सर, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। बाकी दोस्तों, आप भी अपने संदेश हमें पहुंचा सकते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। और सुनवाते हैं अभी आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक, और उसके बाद लौट कर आएंगे, फिर करेंगे बातें, एंड अपने मुरादाबाद में क्या चल रहा है सब आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली है खुशी।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: Amazon. Here's my beauty.
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई सु

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी।
1: और आज हमारी कहानी पहुंची है उस शहर में जिसकी सुबह गंगा की लहरों से होती है, जिसकी गलियों में सदियों की संस्कृति बसती है और जिसकी पहचान सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में है।
0: जी हाँ, आज बात होगी काशी की, हमारे बनारस की, हमारे वाराणसी की।
1: एक ऐसा शहर जहाँ परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती दिखाई देती है। एक तरफ गंगा के घाट, मंदिरों की घंटियाँ और बनारसी संस्कृति की मिठास,
0: तो दूसरी तरफ सड़क, बिजली, आवास, रोजगार और जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से बदलती हुई तस्वीर।
1: क्योंकि विकास सिर्फ बड़े शहरों की ऊंची इमारतों का नाम नहीं,
0: विकास तब मायने रखता है जब उसकी रोशनी गांव के उस घर तक पहुंचे जहां एक माँ अपने बच्चे को बेहतर भविष्य के लिए दिन रात संघर्ष करती है।
1: और ऐसी ही एक कहानी है वाराणसी के छितौना गांव की।
0: छितौना की रहने वाली जड़ावती देवी, एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली जड़ावती देवी ने जिंदगी में मुश्किलें तो बहुत देखी, लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ।
1: सीमित साधन, घर की जिम्मेदारियां और बच्चों की पढ़ाई का सपना, जड़ावती देवी ने संघर्ष किया, मेहनत की और अपने बच्चों को पढ़ाने की पूरी कोशिश की।
0: क्योंकि माँ के लिए बच्चों की पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, वो उसके सपनों की वो सीढ़ी होती है जिस पर चढ़कर उसके बच्चे उससे बेहतर जिंदगी जी सकें।
1: और आज जब सरकार की योजनाओं का लाभ ऐसी जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचता है तो उनके संघर्ष में एक नया सहारा जुड़ता है।

0: मावती देवी को आवास की सुविधा मिली, परिवार को राशन कार्ड की सुविधा मिली और मनरेगा का जॉब कार्ड भी मिला।
1: यानी कि सिर पर छत का सहारा, परिवार के लिए खाद्यान्न सुरक्षा का सहारा और रोजगार के अवसर से जुड़ने का एक माध्यम।
0: किसी बड़े शहर में बैठकर ये सुविधाएं शायद सिर्फ योजनाओं के नाम लगे,
1: लेकिन जड़ावती देवी जैसे परिवार के लिए यही सुविधाएं जिंदगी की मुश्किल राह को थोड़ा आसान बनाने वाली उम्मीद बनती है। दोस्तों, गांव की मिट्टी की खुशबू अलग ही होती है, पर फिलहाल आज हम गांव की मिट्टी की बात नहीं करने आए हैं। आज हम बात करने आए हैं विकास की। प्रदेश भर में जो विकास की लहर चल रही है, उसकी छवि जो है बनारस में भी देखने को मिल रही है। बनारस और इससे संबंधित जो भी गांव है, यहां पर भी विकास की जो छटा है वो बहुत अच्छे से छा रही है। और दोस्तों, विकास से जुड़ी बातें करने के लिए हम आपके साथ विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश में तो जुड़ते ही हैं, और उसी कड़ी में आज हम आ चुके हैं वाराणसी के एक गांव में एक लाभार्थी से बात करने। इन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए।
2: हमारा नाम जड़ावती देवी है।
1: घर में कौन कौन है आपके?
2: हमारा बस माई है ना, एक लड़का बस, और हम हैं, तीन लोग बस हैं।
1: और क्या करती हैं आप?
2: बस खाना बनाते हैं, सरकारी काम मिला है, बस वही।
1: और बेटा क्या करता है?
2: अभी कुछ नहीं।
1: तो जड़ावती जी, जो सरकार की विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं, उन परियोजनाओं में से आपको किन किन परियोजनाओं का लाभ मिला है?
2: बस शौचालय आवास, हाँ, आयुष्मान कार्ड बस बना है।
1: तो आपको, जैसे कि आपका घर नहीं था पहले, तो अब
2: पहले मड़ई था, इस पर ये जो बना है इस पर मड़ई था, अब उधर भी एक था, बस यही था
1: पहले कच्चा घर।
2: हाँ, एकदम।
1: तो अब आवास के तहत जो आपको लाभ मिला है, उससे अभी क्या क्या चीजें बनी है आपके घर?
2: पहले बहुत दिक्कत हुआ था, बस छत ढला है, आरियारी ढला है, अभी अब जाके जब आवास मिला है तब तो ठीक थे, सब कुछ आरियारी दीवार हो गया है, छत भी बन गया है और सब बाकी है अभी करने के लिए।
1: पहले आप कच्चे घर में रहती थी। हाँ। तो अब क्या है कि अब आपके पास पक्का मकान हो गया है, टीन शेड लग गया है। हाँ। और जैसे कि आपने बकरी भी पाली है, तो हाँ, बकरी को भी रखने में उसमें आपको आसानी होती है।
2: हाँ।
1: और ये बताइए जड़ावती जी कि जैसे अब शौचालय बन गया है आपके यहाँ, तो शौचालय बनने से क्या फायदा है?
2: बहुत फायदा है, उतरे खुले में जाना पड़ता है, हमारी माँ को ज्यादा दिक्कत होती है।
1: बिल्कुल। और शौचालय बनने से क्या होता है कि शौचालय जो है किसी भी औरत के सम्मान या उनकी मर्यादा से भी संबंधित, उसको हम देखते हैं समाज में, लोग जो है खुले में शौच में जाते थे, तो उससे क्या है कि कई सारी बीमारियों का भी खतरा रहता था, बीमारियों का भी खतरा रहता था, या वृद्ध जन है आपके घर में, एजेड है आपकी जो माता जी है, तो उनको भी अब सुविधा रहती है और आपको भी सुविधा रहती है।
2: पहले हम मड़ई में रहते थे, आवास मिल गया है, अब मकान बन गया है, शौचालय है, राशन कार्ड भी है। मोदी को और योगी को हमारा धन्यवाद।
0: आपने सुना, ये सिर्फ एक लाभार्थी की आवाज नहीं है,
1: ये उस माँ की आवाज है जिसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष किया और अब सरकारी योजनाओं के जरिए अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
0: लेकिन किसी योजना का लाभ जब गांव के परिवारों तक पहुंचता है, तो उसके पीछे स्थानीय स्तर पर भी कई लोगों की भूमिका होती है।
1: तो आइए जानते हैं चितौना गाँव में विकास और सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का क्या कहना है। दोस्तों, असली विकास वो होता है जो सबको लेके चले, यानी कि समावेश करके चले। और वाराणसी में भी जो विकास की लहर है पूरे उत्तर प्रदेश की, वो दिखाई दे रही है। और इसी लहर के चलते आज हम आ पहुंचे हैं वाराणसी के छितौना गांव में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास शख्स से, जो कि इस गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं। तो चलिए अपनी बातचीत को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि यहां पर क्या क्या कार्य हुए हैं विकास से संबंधित। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं, आप अपना नाम बताइए।
3: आलोक यादव।
1: आलोक जी, इस ग्राम में जो है कई तरीके के विकास परियोजनाओं पे काम हो रहा होगा, तो अभी फिलहाल में कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं और किस प्रकार से जो है उसका लाभ लोगों को दिया जा रहा है?
3: कच्चे रोडों को बनवाया जा रहा है, जो पहले से बने हुए रोडों उन पे कंक्रीट डाला जा रहा है, खड़पे लगाए जा रहे हैं और डमरू लगाया जा रहा है, और जहाँ जहाँ पानी लग रहा है उसका निस्तारण के लिए नालियाँ लगाई जा रही हैं, और जो इनके पास घर नहीं उनके लिए मुख्यमंत्री आवास, विधवा और विकलांगों के लिए ऑलरेडी मिल चुका है 12-13 लोगों को मेरे गांव में, और कुछ लोगों का जो अभी लिस्ट में नाम गया है, जीरो प्रॉपर्टी वालों का भी गया है जिनके पास एकदम ही कुछ नहीं है।
1: यदि कोई आवास के लिए अप्लाई करना चाहता है तो किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं या क्या उसका प्रोसेस होता है?
3: उसमें जैसे कि पात्र होना चाहिए, उसके पास 6 फीट से ऊपर पक्की दीवार नहीं होनी चाहिए, प्लस झोपड़ी टाइप रहना चाहिए, ये न कि वो झोपड़ी बनाकर दिखाए, झोपड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि 2-3 बार उसकी जियो टैगिंग होती है, वहाँ से अधिकारी आते हैं जांच करते हैं तब उनको लाभार्थी को लाभ दिया जाता है।
1: कोई तरीके की ऐसे आपको समस्या भी देखने को मिलती है कि लोगों को अलॉट करने में या इस प्रोसेस में कोई तरीके की समस्या जो लोगों को आ रही हो या आपको आ रही हो अपने लेवल पर?
3: जैसे क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग दूसरे के घरों में रहते हैं और वो पक्का होता है, और तो उनसे ये मांगा जाता है कि आप जिसके मकान में रह रहे हैं या फिर आप अपने भाई के ही मकान में रह रहे हैं तो उनसे लिखित ले लें एक स्टाम्प पे कि वो मेरा घर है, मैं इनको भाड़े पे या उनके रहने के लिए दिया हूँ, तब मैं अलॉट कर पाता हूँ, इसी वजह से उनको नहीं मिल पाता है।
1: मतलब कि दस्तावेजों से संबंधित जो है कुछ दिक्कतें ऐसी आती हैं। और अभी जो है कई तरीके की परियोजनाओं का लाभ जो है यहाँ पर लोगों को मिल रहा है, हमने देखा है, जिसमें से कि मुख्य तौर से मुख्यमंत्री आवास योजना और राशन कार्ड की सुविधा और मनरेगा का जो जॉब कार्ड होता है उससे संबंधित भी चीजें हैं। तो लक्ष्य आपका एकदम साफ है कि बाकी जो आगे भी है जो डेवलपमेंट की चीजें हैं या विकास कार्य आपका निरंतर चलता रहेगा, और ग्राउंड लेवल पर चीजें करने के लिए साथियों बहुत जरूरी होता है नेतृत्व। जब ऊपर बैठे लोगों का नेतृत्व हमें अच्छा मिलता है तभी विकास कार्य की जो छवि है वो ग्राउंड लेवल पर आपको दिख पाती है अच्छे तरीके से। और आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ
3: मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद बोलना चाहते हैं, इसी तरह करते रहें हमारे गांव का विकास, उनको मेरे तरफ से धन्यवाद।
0: ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की बातों से साफ है कि गांव के स्तर पर विकास की तस्वीर सिर्फ सुविधाओं के निर्माण तक सीमित नहीं है बल्कि जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं की पहुंच से भी जुड़ी है।
1: लेकिन चितौना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
0: हमारी दूसरी कहानी है आशिमा बेगम की, 2 बच्चों की अम्मा और जीवन की कठिन परिस्थितियों के बीच अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालती हुई एक सशक्त महिला।
1: आशिमा बेगम के पति भी नहीं है, ऐसे में 2 बच्चों की परवरिश और परिवार की जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं रहा होगा।
0: लेकिन मुश्किल हालात के सामने खड़े होकर आगे बढ़ना ही तो जिंदगी का दूसरा नाम है।
1: आशिमा बेगम को भी आवास की सुविधा, राशन कार्ड और मनरेगा का जॉब कार्ड मिला।
0: यानी एक महिला, 2 बच्चे और चुनौतियों से भरी हुई जिंदगी, लेकिन अब परिवार के पास एक सुरक्षित आवास, खाद्यान्न सुविधा से जुड़ाव और रोजगार के अवसर से जुड़ने का रास्ता है।
1: दोस्तों, विकास की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुकी है और वही लहर अब हमें देखने को मिल रही है वाराणसी और उसके आसपास के गांव में भी। और ऐसे ही कुछ विकास की बातें लेकर हम आ पहुंचे हैं वाराणसी के एक गांव में, जहां पर हम एक लाभार्थी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनको किस तरीके के लाभ सरकार द्वारा दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी एफर्ट्स हैं, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं गरीबों के कल्याण के लिए या इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए अपने लाभार्थी से हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है?
4: आशिमा।
1: और क्या आपके गांव का नाम है?
4: चितौना।
1: क्या करती हैं आशिमा जी?
4: यही मजदूरी का काम बच्चों के खेते हैं, आप तो जानते हैं गरीब है।
1: तो जैसे मजदूरी में जो मनरेगा आपका
4: गेहूं धान
1: करते हैं, तो मनरेगा के तहत आप अपना मजदूरी करती हैं। और परिवार में कौन कौन है?
4: यही दोनों बच्चे हैं।
1: तो स्कूल जाते हैं?
4: हाँ, स्कूल जाते हैं, सरकारी में पढ़ते हैं दोनों।
1: कितने बड़े बच्चे?
4: एक दिन 5 में पढ़ते हैं और एक दिन 2 में पढ़ते हैं, और एक दिन 5 साल का है। और
1: तो आशिमा जी, आप मुझे बताइए कि जैसे कि आपको जो है हमें पता चला है कि आवास योजना के तहत लाभ मिला है, तो पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है, पहले कैसे रहती थी जब मकान नहीं बना था? तो
4: जैसे कि मैं पहले तो कच्चे में रहती, कच्चे के बाद तो मैं जो मजदूरी को बच्चे लोग बना के खिलाते हैं और जो अपने राशन बना के खिलाए हैं। अभी जो है
1: 18-19 साल से आप कच्चे घर में रहती थी, फिर उसके बाद जो है जब आपको आवास मिला है तो उसके बाद जो पक्के मकान में आप रहने लगी।
4: दो साल हुआ था तो 2 साल हुआ तो वो बना है
1: आपका जो घर है, 2 साल से आप उसमें रह रही हैं। आशिमा की कहानी हमें एक बात सिखाती है
0: कि जब किसी जरूरतमंद परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचता है तो उसका असर सिर्फ कागज पर दर्ज नहीं होता है,
1: उसका असर घर की चौखट पर दिखाई देता है,
0: बच्चों के भविष्य में दिखाई देता है
1: और उस माँ के चेहरे पर दिखाई देता है जो कल की चिंता के बीच आज थोड़ा सुकून महसूस कर पाती है। वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं है,
0: ये आस्था है, संस्कृति है और विरासत है,
1: और अब तो ये विकास की नई कहानी भी लिख रहा है।
0: वाराणसी में विकास की तस्वीर आज कई स्तरों पर दिखाई देती है, बेहतर बुनियादी सुविधाओं से लेकर कनेक्टिविटी, पर्यटन, रोजगार और जन कल्याण तक।
1: और इस विकास यात्रा में गांव और गरीब परिवार पीछे न छूटे, यही किसी भी जन कल्याणकारी व्यवस्था की सबसे बड़ी कसौटी है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार विकास के साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जरूरतमंद परिवारों तक सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दे रही है।
1: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के रूप में वाराणसी में भी विकास की कई परियोजनाओं और योजनाओं ने शहर की तस्वीर को नई दिशा देने का काम किया है।
0: लेकिन बनारस की असली खूबसूरती सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट में नहीं है
1: बल्कि उस छोटे से गांव में भी है जहां जड़ावती देवी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखती है,
0: जहां आशिमा बेगम अपने 2 बच्चों के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं,
1: और जहां सरकारी योजनाएं उनके संघर्ष में सहारा बनने का काम कर रही हैं।
0: यही है विकास का असली मतलब,
1: जब विकास शहर से गांव तक पहुंचे,
0: जब परियोजनाएं कागज से निकलकर जरूरतमंद परिवारों के घर तक पहुंचे,
1: जब एक माँ अपने बच्चों के भविष्य को लेकर थोड़ा और निश्चिंत हो सके,
0: और जब हर परिवार को लगे कि बदलते उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में उसकी भी हिस्सेदारी है।
1: गंगा की लहरों की तरह निरंतर आगे बढ़ती काशी,
0: अपनी विरासत को संजोते हुए विकास की नई राह पर बढ़ता वाराणसी,
1: और छितौना जैसे गांव में उम्मीद जगाती जन कल्याण की कहानियाँ,
0: यही है नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर।
1: एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहां विकास की रफ्तार के साथ जन कल्याण को भी आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: तो ये थी बनारस के छितौना गांव से आई 2 परिवारों की कहानी,
1: जड़ावती देवी और आशिमा बेगम की कहानी,
0: संघर्ष की कहानी,
1: हौसले की कहानी
0: और सरकारी योजनाओं से मिली नई उम्मीद की कहानी।
1: आप सुन रहे थे
5: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी।
6: 91.2 FM, हेलो बना
7: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और दोस्तों, मुरादाबाद में ना बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा था, और अभी अपडेट आई है मुरादाबाद की, जो लोकल अपडेट है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि मुरादाबाद के रामगंगा बिहार और हिमगिरी जैसे इलाकों में बंदरों की समस्या लगातार लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई थी। हाल ही में इन क्षेत्रों से 34 बंदरों को पकड़ा गया है, जिन्हें सुरक्षित तरीके से जंगलों में छोड़ा गया। और ये सिर्फ खबर नहीं है, इसका सामना मुझे खुद भी करना पड़ा। कल जब मैं घर से ऑफिस से घर जा रही थी, तो मेरे घर के बाहर बहुत सारे मंकी थे और वो आपस में लड़ रहे थे। जैसे ही मैं वहाँ से निकल रही थी, अचानक से मैंने देखा नहीं था कि मंकी वहाँ पर हैं, और तभी जैसे मैंने गेट को ओपन किया एंड तभी मंकी मेरी तरफ दौड़ के आया। शुक्र है कि एक भैया वहाँ मौजूद थे एंड उन भैया ने तुरंत मंकी को भगाया और मैं सुरक्षित तरीके से अपने कमरे में रूम में पहुँच पाई। मतलब मंकी इतना परेशान कर रहे हैं मुरादाबाद में। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपके इलाके में भी बंदरों की संख्या बढ़ रही है, तो अकेले उनके बीच जाने या उन्हें छेड़ने से बचें, और बच्चों को भी सावधान रखें, क्योंकि देखिए वो मंकी, उनको मतलब हमें भी नहीं पता वो कभी भी हमला कर सकते हैं। तो आप सावधान रहिए, और छोटे बच्चों को भी, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत नटखट होते हैं एंड वो मंकी को छेड़ने लगते हैं, और पता नहीं कि मंकी कब हमला कर दे। तो इन चीज़ों, बच्चों को सावधान रखिएगा थोड़ा सा, और आप भी सावधान रहिए। और दोस्तों, मुरादाबाद में 24 अगस्त को सावन के अंतिम सोमवार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पिछले सोमवार की तरह प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रमुख मंदिरों और कांवड़ मार्गों पर पुलिस बल बैरिकेडिंग और यातायात व्यवस्था को मजबूत रखा जाएगा। श्रद्धालुओं से अपील है कि मंदिरों में कतार का पालन करें, पुलिस प्रशासन के निर्देशों का सहयोग करें और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में मदद करें। और भी अपडेट्स हम आपको बताएंगे अपने लोकल के बारे में, अपने मुरादाबाद शहर के बारे में क्या चल रहा है। तो आप बस मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और यहाँ पर जो संदेश आए हैं ना, उनको भी मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे जो लिसनर हैं वो बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम आपको और इंतज़ार बिल्कुल नहीं करवाते हैं एंड हमारे पास एक वॉइस नोट आया है, तो ज़रा सुन लेते हैं क्या पहुँचाते हैं आज की सुबह।
1: अस्सलाम वालेकुम, हाय जी, कैसे हो? मैं आपकी दोस्त अफरोज फातिमा एक शायरी अर्ज करना चाहती हूँ। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। तू खुद को बना काबिल इस कदर की, तमन्ना करे लोग कुछ नहीं पाने की।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी शायरी है आपकी अफरोज, थैंक यू सो मच। आपकी शायरियाँ और आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं हमें भी। एंड इन्होंने ट्रैक की रिक्वेस्ट भेजी है हमें, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। श्योर, इस ट्रैक को हम सुनवाएंगे। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जय श्री राम खुशी मैम, आपको भी जय श्री राम। दुर्गी सैनी जी हमें मैसेज पहुँचाते हैं कल्याणपुर मुरादाबाद से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी आज की सुबह हमारे साथ जुड़ते हैं, और ये भी गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। तो एवरीवन, आप भी हमें मैसेज पहुंचाइएगा, मोबाइल नंबर अगेन मैं बताती हूँ 9837896896।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: कोई मिल गया,
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिल्म मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी। अभी आपने सुना है ब्यूटीफुल ट्रैक एंड इस खूबसूरत ट्रैक को गाया था जावेद वाश्री जी ने। और दोस्तों, आज भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को श्रद्धांजलि हम देते हैं, क्योंकि आज भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की 20वीं पुण्यतिथि है। उनकी शहनाई की मधुर धुनों से उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक नई पहचान दिलाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का संगीत सुरों के साथ साथ हमारी गंगा जमुना तहजीब और एकता की खूबसूरत मिसाल भी था। उनका मानना था कि दुनिया में तोड़ने के कई साधन हैं, लेकिन लोगों को जोड़ने के लिए संगीत एकमात्र साधन काफ़ी है। एंड उनकी शहनाई की गूंज आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जीवंत है। पुण्यतिथि पर महान शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को सादर विनम और नमन हम उनको करते हैं, विनम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आपकी जो संदेश आए हैं उनको भी मैं जल्दी से यहाँ पर शामिल कर लेती हूँ। आज की सुबह हमारे और लिसनर हमारे साथ बैक टू बैक कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है अजीत कसाना जी का, और साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं, आदित्य कसाना जी हैं लदावरी जिला मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुँचा दें आज की सुबह। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अंसार हुसैन जी का, दौलत बाग मुरादाबाद से। अब्दुल सलमान भी हैं, अली अब्बास भी हैं मुरादाबाद से, ये मैसेज हमें पहुंचा रहे हैं और कहते हैं कि कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और ये कहते हैं कि आपका प्रोग्राम हम एंजॉय कर रहे हैं। एंड ये हमें मैसेज पहुंचाते हैं आसिफ फ्रॉम इटली से। तो चलिए दोस्तों, अभी लौट कर आते हैं, कुछ और अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। बस आप बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और हाँ, मुस्कुराते भी रहिए, क्योंकि मुस्कुराते हुए आप सब बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखिए ज़िंदगी में ना परेशानियाँ आती रहती हैं एंड सुख दुख चलता रहता है, ये दो ऐसे पहलू हैं जो कभी नहीं रुकते हैं। बस ये होता है कि जब सुख होता है, जब हैप्पीनेस होती है, तो चारों तरफ हमारे साथ हमारे अपने खड़े होते हैं, लेकिन जब परिस्थितियाँ थोड़ी सी गड़बड़ा जाती हैं, डिसबैलेंस हो जाती हैं, जब मुश्किलें आती हैं ज़िंदगी में, तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तो वहाँ जब हम अकेले पड़ जाते हैं, तब हमें लगता है कि ये समय बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन बस आप हिम्मत बनाए रखिएगा, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। समय तो लगता ही है हर चीज़ को ठीक होने में। और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, अरिजीत सिंह जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़, मुस्कुराने की वजह तुम हो। और सच में आप सब हमारे मुस्कुराने की वजह हैं। सुनिए कई खूबसूरत सा ट्रैक।

0: कितनी वफाएं कितनी जताएं कितनी छुपाएं कह दे।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
6: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। और दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है उन लोगों के नाम जो सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने का हौसला भी रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज 21 अगस्त को विश्व उद्यमी दिवस यानी वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे मनाया जाता है। ये दिन उन एंटरप्रेन्योर्स को सम्मान देने का मौका है जो नए आइडियाज देते हैं एंड नई नई चीजें करते हैं और मेहनत के जरिए ना सिर्फ अपना रास्ता बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार और नए अवसर पैदा करते हैं। तो आज बात करते हैं हम उद्यमिता, नए बिजनेस आइडिया और अपने सपनों को कामयाब बनाने की। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स यानी सिर्फ बड़ा बिजनेस करने वाले व्यक्ति नहीं। अगर आपके पास कोई नया आइडिया है, आप किसी समस्या का सलूशन ढूंढते हैं और उसे एक काम के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आप भी एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत कर सकते हैं। कई बार एक छोटी सी सोच ही बड़े बिजनेस की नींव बन जाती है। आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस आइडिया आएगा कहाँ से, तो इसका आसान जवाब है अपने आसपास देखिए। लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस काम में उन्हें परेशानियाँ होती हैं, कौन सी चीज़ उन्हें आसानी से उपलब्ध नहीं होती। कई सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत किसी बड़ी कंपनी से नहीं बल्कि एक छोटी सी समस्या के समाधान से भी हुई है।

हैप्पी वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे. एंटरप्रेन्योर्स डे एंड सेलिब्रेट किया जाता है और हमारे मुरादाबाद में बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, जो और लोगों को काम देते हैं. विश्व उद्यमिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और दोस्तों मैं बता देती हूँ आपको कि हमारे कुछ टेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए हैं और हमारे जो लिस्नर हैं वो कह रहे हैं कि मैम आपने हमारा मैसेज शामिल नहीं किया है. तो देखिए, नाराज़ होने की कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मैनेज करना पड़ता है. और आप हमारे प्यारे से दोस्त हैं, अगर आप नाराज़ हो जाएंगे तो कैसे चलेगा. हाँ, एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है अमरोहा से नेहा जी का. कहती हैं, खुशी जी नमस्ते, कैसे हाल हैं आपके. जी मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप सब भी अच्छे ही होंगे और सब अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, लेकिन हाँ रेडियो को सुनना बिल्कुल नहीं भूलते हैं. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप सभी का इतना प्यार आप अपनी मुरादाबाद को देते हैं. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम. वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिखा, बस गुड मॉर्निंग विश किया है. स्टो के चलता है, अब क्या कर सकते हैं. इतनी बार तो हम अपने श्रोताओं से बोलते हैं कि दोस्तों आप अपना नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए, लेकिन वो है कि मानते नहीं हैं. अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मोहिनी सैनी जी का और ये मैसेज हमें पहुँचाती है कुंदनपुर मुरादाबाद से. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग सनी अग्रवाल जी का, काशीराम नगर मुरादाबाद से मैसेज हमें पहुंचाते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है कोमल जी का, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. कोमल शर्मा जी गुड मॉर्निंग विश करती हैं एंड थैंक यू सो मच, आपने मैसेज पहुंचाया है. तो चलिए दोस्तों, बस मैं आती हूँ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर. आप बस ऐसे ही बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। We'll be right back.

नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी का, वंस अगेन वेलकम बैक एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। लेकिन दोस्तों जाते जाते बस एक छोटी सी बात, लेकिन बहुत प्यारी है, कि ख्वाहिश बड़ी रखिए, शुरुआत छोटी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि चमक हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं, छोटी छोटी कोशिशों में भी होती है। मैं आरजी खुशी मिलती हूँ फिर नई बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, रेडियो को बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही अपने अपनों के साथ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और जो भी लाइफ में आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करते रहिए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब हमारे साथ जुड़े एंड कार्यक्रम में हिस्सा लिया आपने और अपने संदेश पहुंचाए उसके लिए दिल से धन्यवाद आपका। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एवरीवन।

0: विजिट करो।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जुड़ी हुई है एक नन्ही सी जान की जिंदगी के पहले घंटे से। जी हाँ, ये नवजात शिशु के बारे में है, इसके इस संसार में सांस लेने के पहले घंटे के बारे में। इसमें बहुत सारे पहल शामिल हैं। बच्चे का पहली बार इस दुनिया में सांस लेना, पहला घंटा, माँ का पहला दूध, माँ और पिता का पहला स्पर्श, परिवार के सदस्यों का स्पर्श और फिर शुरुआत महीने में उसका शारीरिक और मानसिक विकास। दोस्तों, ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पोषण पखवाड़े का विषय है नवजात शिशु के पहले 6 महीने में उसकी देखभाल। और इसके लिए आज हम दोनों सेहतिया भैया और टीकन भाभी को स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। नमस्कार भैया।
1: नमस्कार आरजी खुशी, आप दोनों ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो आज हम भी आ जाते हैं जब आप इतनी प्यार से बुला रही हैं, क्योंकि हम अभी दिल्ली से आए हैं एक सेमिनार अटेंड करके। वहाँ पूरी चर्चा इसी मुद्दे पर हो रही थी, नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी कैसे लाई जाए।
2: हालांकि भारत में शिशु मृत्यु दर में लगातार कमी आई है, लेकिन यह अभी भी एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है। SRS बुलेटिन 2024 के अनुसार भारत का IMR 24% 1000 जीवित जन्म है। इसका मतलब है कि हर 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से लगभग 24 बच्चे अपना पहला जन्म नहीं मना पाते। यह 2023 से 1% कम हुआ है।
0: तो इस मृत्यु दर का कारण क्या है?
1: नवजात बच्चों के लिए सबसे जोखिम भरा समय के बाद बात का पहला महीना, खासकर पहला दिन और पहला सप्ताह होता है। हमें बताया गया है कि WHO के अनुसार अधिकतर नवजात मौत के जीवन के पहले सप्ताह में ही होती है, और इनके प्रमुख कारण है समय से पहले जन्म, जन्म के समय सांस लेने में दिक्कत, संक्रमण और जन्मजात समस्याएं।
2: अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो गया तो अब सबसे बड़ा काम हो गया, बच्चा और माँ दोनों ठीक है। लेकिन सच तो यह है कि बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा उसकी पूरी जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर कम हुए हैं, लेकिन आज भी कई नवजात बच्चे ऐसी वजहों से अपनी जान गवा देते हैं जिन्हें सही जानकारी और समय पर देखभाल से रोका जा सकता है।
0: तो सेहतिया भैया, आप ये बताइए कि गोल्डन आवर या सुनहरा घंटा क्या है? क्या पहला घंटा ही गोल्डन आवर कहलाता है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने आरजी खुशी, बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत ही अहम है। इसी समय ये तय होता है कि बच्चा सुरक्षित रहेगा या उसे संक्रमण, ठंड लगना, सांस की दिक्कत या दूसरी परेशानियों का खतरा बढ़ जाएगा।
0: यानी यह सिर्फ एक घंटा नहीं बल्कि बच्चे के पूरे भविष्य की नींव है।
2: जी हाँ, इससे पहले घंटे में कुछ बहुत जरूरी काम किए जाते हैं, जैसे बच्चों को तुरंत माँ के सीने से लगाना, उसे गर्म रखना, सांस सही चल रही है या नहीं यह देखना, और सबसे जरूरी जन्म के पहले घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जिसे कैलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चे का पहला टीका माना जाता है। यह बच्चे की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है और उसे कई बीमारियों से बचने में मदद करता है।
1: और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें बहुत सरल हैं, सही जानकारी, परिवार का सहयोग, आशाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से, और समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करके ये सब मिलाकर नवजात बच्चे की जान बचा सकते हैं।
0: तो साथियों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम विस्तार से समझेंगे नवजात बच्चे की देखभाल कैसे करें, बच्चे को गर्म क्यों रखना जरूरी है, स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, कौन कौन से खतरे के संकेत होते हैं और परिवार क्या सावधानियां रख सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ।
3: माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अनमोल होता है, ये बच्चे को निमोनिया, डायरिया जैसी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है।
4: बिल्कुल ठीक, माँ का पहला गाढ़ा दूध अमृत समान होता है, उसे बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए चाहे कोई कुछ भी कहे। क्यों अनु जी?
3: बिल्कुल, जन्म के 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है।
5: भाई साहब, 6 महीने का होने से पहले माँ के दूध के अलावा बाहर का कुछ भी खाएगा तो बहादुर नहीं मरियल सिंह ही बनेगा।
4: जन्म के बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए।
6: अब देखो, मुन्नी 7वें महीने में आ गई है, अब मुन्नी को खाना दो, ना रोए तब भी। और हाँ, अब मुन्नी को दिन में कम से कम 3 से 4 बार खाना खिलाओ।
5: जी हाँ, सातवें महीने से बच्चे को मुलायम मसले हुए अनाज, दालें, सब्जियां और फल थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाना शुरू कर दें, दिन में 3 से 4 बार, और उसे माँ का दूध पिलाना जारी रखें।
4: और वो 4 बातें याद है ना? 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। आज हमारी अपनी टीकन देवी और सेहतिया सिंह दोनों हमें बताएंगे कि जन्म के पहले घंटे में क्या करना जरूरी है, माँ का पहला दूध क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और परिवार नवजात बच्चे को सबसे मजबूत शुरुआत कैसे दे सकते हैं। लेकिन सेहतिया भैया, अक्सर लोग पूछते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को कौन कौन टीके लगते हैं, क्या ये भी उतना ही जरूरी है?
1: बिल्कुल जरूरी है जी खुशी। जिस तरह माँ का पहला दूध बच्चे की पहली सुरक्षा है, उसी तरह जन्म के समय दिए जाने वाले टीके भी बच्चों को कई गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में पहला कदम होते हैं।
2: भारत के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जन्म के समय कुछ महत्वपूर्ण टीके मुफ्त दिए जाते हैं। इसमें BCG, हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक और ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV की शून्य खुराक शामिल है।
1: इन टीकों से बच्चों को TB, हेपेटाइटिस बी और पोलियो जैसी बीमारियों से सुरक्षा मिलनी शुरू होती है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि जन्म के बाद बच्चे का टीकाकरण समय पर ही करवाया जाए और उसका टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखा जाए।
0: यानी बच्चों की मजबूती शुरुआत के लिए 2 बातें साथ साथ जरूरी हैं: जन्म के पहले घंटे में स्तनपान और समय पर जन्म खुराक वाली टीके।
1: बिल्कुल, मैं भी यहाँ एक बात साफ करना चाहूँगा, बच्चों के दिमाग का विकास बाद में शुरू नहीं होता, बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। वो माँ की आवाज़ पहचानता है, स्पर्श महसूस करता है, दूध पीता है, सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करता है। इसीलिए नवजात देखभाल केवल बीमारी से बचाने की बात नहीं है, ये बच्चे के दिमाग, शरीर और भावनात्मकता विकास की नींव है।
0: टीकन भाभी, बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे अभी क्या समझ आता होगा, लेकिन आप कह रही हैं कि जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे के विकास की शुरुआत हो जाती है।
2: बिल्कुल, बच्चा भले बोल नहीं सकता लेकिन वह महसूस करता है। माँ की छाती से लगाना, माँ की आवाज सुनना, पहला दूध पिलाना, ये सब उसके लिए सुरक्षा और जीवन की शुरुआत है। शुरुआती वर्षों में मजबूत नींव जन्म के पहले घंटे से ही पड़नी शुरू हो जाती है, इसीलिए जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत कीमती है और इसके लिए इसे गोल्डन आवर कहते हैं।
0: तो अब बताइए कि ये गोल्डन आवर इतना जरूरी क्यों है?
1: जन्म के बाद पहले घंटे में कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे को माँ की छाती से लगाएं और स्तनपान शुरू हो। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यह बच्चों को शुरुआती जरूरी आहार देता है, संक्रमण से बचाने में मदद करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। माँ के दूध में ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जो बच्चे के दिमाग और शरीर दोनों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण होते हैं।
2: और यहाँ एक बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है। कई जगह पहला पीला गाढ़ा दूध देखकर लोग कहते हैं कि ये खराब है, इसे फेंक दो, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। पहला पीला दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा है, इसे फेंकना नहीं है, ये बच्चे की पहली सुरक्षा है।
0: तो साफ संदेश, पहला पीला दूध फेंकना नहीं, बच्चों को देना है।
2: और जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने की कोशिश करानी है। अगर बच्चा तुरंत दूध नहीं पकड़ पा रहा है तो घबराना नहीं है, माँ भी सीख रही होती है, बच्चा भी सीख रहा होता है। नर्स, आशा दीदी, ANM या डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए।
1: स्तनपान में सही पकड़, सही स्थिति और धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार परिवार जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है, माँ का दूध नहीं आ रहा, शुरुआती दिनों में दूध थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन नवजात बच्चे का पेट भी छोटा होता है, इसीलिए माँ दोष देने की जगह सहयोग देना चाहिए।
0: बहुत सी घरों में जन्म के बाद बच्चों को शहद, गुटी, पानी या कोई और चीज देने की परंपरा होती है। टीकन देवी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
2: नवजात बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए, जब तक डॉक्टर कोई अलग सलाह ना दे। शहद, घुट्टी, पानी या बाहर की कोई चीज बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, ना पानी, ना शहद, ना घुट्टी। माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा भोजन है।
0: गर्मी में पानी भी नहीं?
1: पहले 6 महीनों तक माँ का दूध ही पर्याप्त होता है, जब तक डॉक्टर डॉक्टर या किसी विशेष स्थिति में अलग सलाह ना दें। माँ के दूध में पानी भी होता है और जरूरी तत्व भी होते हैं, इसीलिए अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती है।
0: लेकिन अगर बच्चा बार बार रोता है तो परिवार सोचता है कि बच्चा भूखा है।
2: हाँ, रोना भूख नहीं होता। बच्चा गीलापन, गर्मी, ठंड, नींद, पेट की असहजता या गोद की जरूरत से भी रो सकता है। शुरुआती दिनों में बार बार दूध पिलाना भी सामान्य है। माँ को शांत माहौल, पानी, खाना, आराम और परिवार का भावनात्मक साथ चाहिए, ताने नहीं चाहिए।
0: यानी माँ की सेहत और बच्चे की सेहत अलग अलग नहीं है।
2: बिल्कुल, अगर माँ थकी है, भूखी है, डरी हुई है या लगातार दबाव में है तो स्तनपान भी प्रभावित हो सकता है। परिवार को माँ को संभालना है, सिर्फ सलाह देना काफी नहीं है, काम में हाथ बटाना भी जरूरी है।
1: पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिता माँ को पानी दे सकता है, खाना खिला सकता है, रात में सहयोग कर सकता है, रिश्तेदारों की अनावश्यक सलाह से माँ को बचा सकता है और चूंकि देखभाल शामिल हो सकता है। नवजात देखभाल केवल माँ का काम नहीं है।
0: अब बात करते हैं त्वचा से त्वचा संपर्क की। सेहतिया जी, ये क्या होता है और क्यों जरूरी है?
1: त्वचा से त्वचा का संपर्क का मतलब होता है कि बच्चों को माँ या देखभाल कर्ता की छाती से सीधा लगाया जाए सुरक्षित तरीके से। इसी को कंगारू केयर कहते हैं। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है, वह सुरक्षित महसूस करता है और स्तनपान में भी मदद मिलती है। खासकर कम वजन वाले समय से पहले बच्चों के लिए तो बहुत ही लाभकारी हो सकता है।
2: बच्चा माँ की धड़कन सुनता है, माँ की गर्माहट महसूस करता है और शांत होता है। यह केवल शरीर की गर्माहट नहीं है, यह भरोसे की गर्माहट है। बच्चे के दिमाग और भावनात्मक विकास के लिए यह बहुत अच्छा है।
0: क्या पिता भी ऐसा कर सकते हैं?
1: हाँ, सही तरीका सीखकर पिता भी त्वचा से त्वचा का संपर्क दे सकते हैं। खास करके जब माँ को आराम चाहिए तो वह थकी हुई है, लेकिन इसका तरीका स्वास्थ्य कर्मी से सीखना चाहिए। बच्चे की नाक और मुंह खुला रहे, बच्चा दबे नहीं, वह आराम से सांस ले रहा हो, यह ध्यान रखना भी जरूरी है।
2: पिता की भूमिका जन्म के पहले दिन से शुरू होती है। सिर्फ खर्च उठाना पिता की भूमिका नहीं है। बच्चे को गोद में लेना, माँ का साथ देना, बच्चे को गर्म रखना और माँ को भावनात्मक सहारा देना, यह भी पिता की जिम्मेदारी है।
0: साथियों, अब हम कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं। पहली गलतफहमी, पहला पीला दूध खराब होता है।
2: सच्चाई, पहला पीला दूध बहुत लाभकारी होता है, इसे बच्चे को जरूर देना चाहिए।
0: दूसरी गलतफहमी, नवजात को शहद या घुट्टी देना जरूरी है।
1: सच्चाई ये है आरजी खुशी, पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, जब तक डॉक्टर अलग से सलाह ना दे।
0: तीसरी गलतफहमी है, माँ का दूध कम होता है तुरंत ऊपर का दूध देना शुरू कर देते हैं।
2: सच्चाई, पहले स्तनपान सहायता ले, माँ को दोष ना दे, स्वास्थ्य कर्मी से मदद ले।
0: चौथी गलतफहमी, नवजात देखभाल सिर्फ माँ का काम है।
2: सच्चाई, पिता, दादी, नानी, परिवार और स्वास्थ्य कर्मी सब की भूमिका है।
0: अब एक जरूरी सवाल, किन संकेतों पर परिवार को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए?
1: अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा हो, बहुत सुस्त हो, तेज या कठिन सांस ले रहा है, शरीर बहुत ठंडा है या बहुत गर्म लग रहा है, त्वचा नीली पड़ रही है, दौरे जैसा लग रहा है, लगातार रो रहा है या बिल्कुल नहीं रो रहा है, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। नवजात बच्चों पर घरेलू प्रयोग नहीं करना चाहिए।
2: और अगर बच्चा समय से पहले जन्मा है या उसका वजन कम है तो उसे सतर्क रहना चाहिए। ऐसे बच्चों को नियमित जांच, स्तनपान, गर्माहट और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह की जरूरत होती है।
0: ये पूरी बातचीत हमें क्या याद दिलाती है?
1: आरजी खुशी, ये बातचीत हमें याद दिलाती है कि बच्चों का दिमाग, शरीर और भविष्य की शुरुआत देखभाल से बनती है। अच्छी देखभाल केवल खाना नहीं, इसमें स्तनपान, सुरक्षा, स्पर्श, साफ सफाई, टीकाकरण, माँ का स्वास्थ्य और परिवार का सहयोग, ये सब कुछ भी शामिल है।
2: हर घर 5 संकल्प ले सकते हैं। गर्भवती महिला को अच्छा भोजन और आराम देंगे, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने में मदद करेंगे, पहला पीला गाढ़ा दूध नहीं फेंकेंगे, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध देंगे, माँ को अकेले नहीं छोड़ेंगे।
1: और एक छठा संकल्प भी जोड़ लीजिए, बच्चे के जन्म के बाद आने वाले सभी जन्म खुराक टीके समय पर लगवाएं और आगे का पूरा टीकाकरण कैलेंडर भी पूरा करवाएं।
2: सही कहा, माँ का दूध और समय पर टीकाकरण दोनों मिलकर बच्चों को जीवन के सुरक्षित शुरुआत होती हैं।
0: बहुत स्पष्ट बात है, बच्चों के जीवन का पहला घंटा पूरे जीवन पर असर डाल सकता है। माँ का दूध, माँ पिता का स्पर्श, परिवार का सहयोग और समय पर स्वास्थ्य सेवा, यही बच्चों की मजबूत शुरुआत होती है।
1: और मैं एक बात फिर कहूँगा, अगर स्तनपान में कोई दिक्कत हो तो शर्म या डर की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी से सहायता लें और यह सीखने की प्रक्रिया है।
2: माँ को ताना नहीं सहारा चाहिए, बच्चों को घुट्टी नहीं माँ का दूध चाहिए, परिवार को अफवाह नहीं सही जानकारी चाहिए।
0: साथियों, आज की 5 जरूरी बातें याद रखिए। पहली, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करवाने की कोशिश करें। दूसरी, पहला पीला दूध बच्चों को दें, उसे फेंके नहीं। तीसरा, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध दें। चौथी, त्वचा से त्वचा संपर्क बच्चे को गर्माहट और सुरक्षा देती है। पांचवी, पिता और परिवार की भूमिका बहुत जरूरी है।
2: और छठी बात, खतरे के संकेत दिखे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाए, इंतजार ना करें।
0: इसी संदेश के साथ आज का सेहत सही लाभ कई यही समाप्त करते हैं। याद रखिए, बच्चों की अच्छी शुरुआत महंगे साधनों से नहीं, सही जानकारी और सही देखभाल से होती है। पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य और सेवाओं योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
7: सेहत सही तो लाभ गई।
2: पहला दूध पहला प्यार, पहला घंटा जीवन का आधार, माँ का साथ पिता का हाथ, बच्चे को मिले सुरक्षित शुरुआत। सेहत सही लाभ कई।
8: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ गई। और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बेहद जरूरी मुद्दे पर बात उठाने वाले, किशोरों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य 10 से 19 साल की उम्र में ना सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी सवाल उठते हैं। ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह से माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकती है। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए सिहतिया जी हैं। सिहतिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरजे खुशी जी। देखिए, जैसे किसी बगीचे में सही समय पर पानी और खाद ना मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह ना मिले तो बच्चा उलझ सकता है। इसलिए इस उम्र में सही बात जानना और समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सीतिया जी। वैसे किशोर अवस्था के दौरान शरीर और मन में क्या बदलाव आते हैं?
1: जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब से उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं। जैसे लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। शरीर बदलेगा तो इसका असर मन पर भी पड़ेगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा या अकेलापन लगेगा। ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है।
0: सिहतिया जी, जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं?
1: देखिए खुशी जी, कई बातें जिनके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर ना लगे। अब बात आती है गर्भ ठहरने की यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझे कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बन जाना मुश्किल बढ़ा सकता है। गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सबको होनी चाहिए और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझ कर होना चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का हक है और अपने शरीर के बारे में फैसले लेने का भी अधिकार है। ये समझना ही असली समझदारी है।
0: अगर किसी किशोर को डर लगे, शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो उसे क्या करना चाहिए?
1: सवाल उठाना तो अच्छी बात है, ऐसे में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेने चाहिए।
0: सिहतिया जी, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात कर रहे हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बन जाती हैं। जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी का दबाव और लड़कों पर हमेशा रो मत मर्द बन का बोझ रहता है। ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधा कितनी जरूरी है?
1: बिल्कुल आज है खुशी जी, चाहे गाँव हो या शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई। लड़कों से कहा जाता है कि अब घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे? इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात भी सुनी जाए। किशोरों को डांटना नहीं, उनकी बातें सुननी है और उनका साथ देना है।
0: सिहतिया जी, अब हम सुन रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। ऐसा करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है और अगर किशोरी गर्भवती हो जाए तो ये खतरनाक हो सकता है ना?
1: बिल्कुल, ये चिंता की बात है। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे की जान जाने का खतरा भी हो सकता है। फिर लड़की की पढ़ाई, करियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं। जिंदगी बस घर और गृहस्थी तक ही सीमित हो जाती है।
0: अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो कई बार वो डर की वजह से चोरी छुपके गर्भपात करवा लेती है, ये कितना खतरनाक है सिहतिया जी?
1: जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती तो वो गुपचुप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भपात करवा लेती है। ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना।

0: कभी कभी ऐसा काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होती। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। अगर किशोरों को ये नहीं पता कि इन बीमारियों से कैसा बचा जाए तो वह अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
1: सिहतिया जी, हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बातें, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कत क्यों बढ़ रही है?
0: देखिए, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता है और ऊपर से समाज की उम्मीद की तू लड़का है रो नहीं सकता या तू लड़की है समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है लेकिन उसे बोलने की इजाज़त नहीं है तो क्या होगा? सब कुछ अपने अंदर छुपाएगा। धीरे धीरे ये चीजें तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की वजह बन सकती है। कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरे रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता, उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रह, ऐसी बातें मत कर। इसलिए किशोर को सुनने और समझने की जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। स्कूलों में काउंसलर हो, घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले तो बहुत कुछ सुधर सकता है।
1: किशोरों के सामने बहुत सवाल होते हैं, जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसे में कोई तरीका है जिससे वे अपने फैसले समझदारी से ले सकें?
0: सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसे समझदारी और जिम्मेदारी से ये फैसले लेने चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड्स बिल्कुल सामान्य चीज है और इसे लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि अगर कोई ना कहे तो उसे मनाना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
1: बिल्कुल सिहतिया जी, किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या गर्भ से बचने के लिए उपाय यानी गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जानकारी भी दी जानी चाहिए?
0: एकदम दी जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगते हैं तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक साधन इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं हो और वो किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाए, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो गई तो उसकी पढ़ाई, करियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है, उस लड़की की सेहत भी खतरे में पड़ सकती है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कंडोम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली कैसे काम करती है या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होगा।
1: लेकिन सिहतिया जी, कुछ लोग कहते हैं अगर किशोरों को ये सब सिखाया बताया तो वे कहीं गलत रास्ते पर ना चल पड़े।
0: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता दिखाना नहीं है, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनाना। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया तो वे कहीं और से, इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं, लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो तो वे खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
1: सिहतिया जी, आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से भी कोई ऐसी पहल हुई है?
0: बिल्कुल खुशी जी, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK। इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाव जैसी चीजों पर जानकारी दी जाती है।
1: आखिर इस योजना में क्या क्या सुविधा मिलती है? यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं?
0: RKSK बहुत काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक, ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं जहां किशोर अपनी समस्या खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अनुपूर्ण कार्यक्रम। इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते

0: एक बार आयरन की गोली दी जाती है ताकि उनमें खून की कमी ना हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना। इसमें गांव के ही कुछ लड़के लड़कियों की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों से सेहत की बातें कर सके।
1: अच्छा सेहतिया जी, ऐसा है क्या?
0: हाँ, अब जैसे मेरे गांव की सीमा है, वो कक्षा 10 में पढ़ती है। RKSK से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सिखाती है, जानकारी देती है। सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझके सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना। इसमें सरकार सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए पैसे देती है ताकि गांव की लड़कियां साफ सफाई से पीरियड्स संभाल सके। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थी जिससे इन्फेक्शन हो जाता था, अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। RKSK सिर्फ आम किशोरों के लिए ही नहीं बल्कि LHBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन, ग्रे, ट्रांसजेंडर के लिए भी है। डॉक्टर, ANM, काउंसलर सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह सभी किसी ना किसी की मदद बिना भेदभाव के कर सके।
1: सेहतिया, अगर RKSK जैसे प्रोग्राम हर गांव, हर स्कूल तक पहुंचाएं, तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त ही नहीं होंगे बल्कि कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे।
0: देखिए आरजे खुशी जी, एक और बढ़िया योजना है ARSH। इसका मतलब है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से शरीर और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना, जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, पीरियड्स और यौन व प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं। इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
1: ये तो बहुत बढ़िया है सीतिया जी।
0: हाँ, अब सरिता की आप बीती आपको सुनाता हूँ। 14 साल की सरिता पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले जब कोई पीरियड्स या शरीर के बदलाव की बात करता था तो सरिता और उसकी सहेलियां नजरें चुरा लेती थी, शर्मा जाती थी। फिर एक दिन गांव में RKSK योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन ANM दीदी भी आई। उन्होंने लड़कियों से प्यार से बात की, बोली कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। उस दिन की बातें सरिता के दिल और दिमाग में घर कर गई। अब सरिता खुलकर बोलती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
1: बिल्कुल सेहतिया जी, जब कोई इतनी गंभीर बात हो, खासकर सेहत को लेकर, तो बात खुलकर ही करनी चाहिए। इसमें डर और शर्म करके अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी नुकसान होता है।
0: सरिता की सहेली गीता कई दिनों से थकी थकी सी रहती थी, कुछ खाने का मन ही नहीं करता था, चक्कर आते रहते थे। फिर वह आंगनवाड़ी केंद्र आई तो वहाँ मौजूद ANM रेखा दीदी ने गीता से बात की, फिर उनकी जांच करवाई। पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता ना चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
1: मतलब ये योजना सच में जमीन पर असर कर रही है।
0: और सुनिए, सबसे प्रेरणादायक बात तो ये रही पास के गांव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी, 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए थे। लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने शादी की बात शुरू कर दी। बोली, अब ज्यादा पढ़ाई का क्या फायदा, लड़की तो घर ही संभालेगी। रीना ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनवाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने उसके माता पिता को समझाया कि 18 साल से पहले शादी करना ना सिर्फ कानूनन गलत है बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग देती है। धीरे धीरे परिवार मान गया। आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है और आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद करती है।
1: क्या बात है सेहतिया जी, जब सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिले तो किशोर अपने फैसले खुद लेने लगते हैं।
0: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते और ना ही वो पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वे बीच का सफर तय कर रहे हैं। उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं सेहतिया जी। दोस्तों, ये ठान लें कि हम किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सुनेंगे और उनका साथ देंगे, क्योंकि जब जानकारी सही होगी, सोच खुली होगी, तभी सेहत भी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभकारी के अगले एपिसोड में। पर जाने से पहले लेते हैं हम अपने सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए हम जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। तो दोस्तों, सेहत सही
1: तो लाभ कई। सुनते रहिएगा अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: विजिट करो।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, यानी बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी।
1: और आज की हमारी कहानी पहुंचती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस शहर में जिसने इतिहास में क्रांति की चिंगारी जलाई, खेल के मैदानों में देश का नाम रोशन किया और आज विकास की नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: जी हाँ, बात हो रही है मेरठ की।
1: मेरठ यानी 1857 की क्रांति की ऐतिहासिक धरती, देश के खेल सामान उद्योग की बड़ी पहचान और आज एक ऐसा शहर जहां परंपरा और आधुनिक विकास दोनों साथ साथ कदम बढ़ा रहे हैं।
0: बिल्कुल, और मेरठ की सबसे खूबसूरत बात क्या है जानती हो?
1: बताइए।
0: यहाँ विकास सिर्फ सड़कों, इमारतों और उद्योगों की कहानी नहीं है। विकास तब पूरा होता है जब सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे आम परिवार के जीवन में खुशियाँ लेकर आए।
1: और इसी सोच को केंद्र में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं समाज के अलग अलग वर्गों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकताओं में जन कल्याण और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ने पर जोर दिखाई देता है।
1: और इसी क्रम में सरकार की योजनाएं कोशिश कर रही हैं कि विकास का लाभ समाज के उन परिवारों तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
0: इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना।
1: सोचिए, एक परिवार के लिए बेटी का विवाह सिर्फ एक रस्म नहीं होता, वो वर्षों का सपना होता है, जिम्मेदारी होती है और कई बार आर्थिक चिंता भी।
0: ऐसे परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक सहारा बनकर सामने आती है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र जोड़ों का सामूहिक विवाह कराना और उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
1: योजना के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार पात्र जोड़े को सरकार की ओर से कुल 1,00,000 रुपए तक का प्रावधान है। इसमें 60,000 रुपए की आर्थिक सहायता, 25,000 रुपए की विवाह सामग्री और 15,000 रुपए का आयोजन संबंधी खर्च शामिल है।
0: यानी मदद सिर्फ चेक तक सीमित नहीं बल्कि बेटी के नए जीवन की शुरुआत को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश है।
1: और यही तो है जन कल्याण की असली तस्वीर, जब सरकारी योजना फाइलों से निकलकर किसी परिवार की मुस्कान बन जाए।
0: अब जरा सुनते हैं मेरठ की दो ऐसी युवतियों की आवाज़ जिनके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि उनके परिवार की खुशियों का हिस्सा बनी। हमारा एक खास कार्यक्रम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और इसमें लाभार्थियों की जो कहानियां हैं वो आपके बीच हम साझा करते हैं। मेरे साथ इस वक्त दो लाभार्थी यहां पर मौजूद हैं, एक का नाम है दीपांशी और दूसरी का नाम है छवि, और दोनों को लाभ मिला है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का, जो एक बहुत ही अच्छी योजना है। बहुत युवतियां, बहुत युवक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो सबसे पहले छवि और दीपांशी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: थैंक यू।
0: छवि, आप मुझे बताओ कि ये जो योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसके बारे में आपको कैसे पता चला?
2: हमारे गांव के पंचायत घर से हमें पता चला इसके बारे में, तो वहां से हमने जानकारी ली इस योजना के बारे में।
0: ओके, तो जब योजना के बारे में आपको पता चला तो आगे की प्रक्रिया कैसे की आपने, क्या किया फिर?
2: इसके लिए एक फॉर्म भरा जाता है जो जन सेवा केंद्र पे जाके हमने भरा है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो वो तैयार किए, फिर हमने जन सेवा केंद्र पे जाके ये फॉर्म भरवाया है।
0: तो जब आपका फॉर्म भरा गया था छवि, तो फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे आपके?
2: डॉक्यूमेंट तो आधार कार्ड और जी
3: बैंक की किताब लगी थी और पैन कार्ड की और फोटो लगे थे और राशन कार्ड की लगी थी।
0: अच्छा, कब हुई है आपकी शादी?
3: 27 जुलाई।
0: ओके, तो क्या क्या लाभ मिले हैं इस योजना से आपको?
3: सम्मान मिला है और पैसे आगे खाते में।
0: क्या क्या सामान मिला है
3: उसमें? कम्बल है और कुल मतलब 51 बर्तन है और उसमें तके हैं, गद्दे हैं और इटैची है, मतलब उसमें सारा सामान है।
0: और कितना कैश आएगा आपका?
3: 64,000
0: खाते में आएगा। छवि, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कौन सी डेट को आपकी शादी हुई?
2: 27 जुलाई को हुई थी हमारी शादी।
0: तो शादी के बाद क्या पॉजिटिव चेंज आए हैं आपकी जिंदगी में?
2: अच्छा लग रहा है, काफी चेंजेस आए हैं, तो सही चल रहा है, मतलब सब
0: लाइफ आसान हो गई है पहले से। छवि, हमारे श्रोताओं को बताओ कि क्या क्या सुविधा आपको इस योजना के अंतर्गत मिली है?
2: तो हमें सामान मिला है, कुछ जरूरत की चीजें मिली है और कैश मिला है।
0: कौन से गांव में आपकी शादी हुई है?
2: चंदसारा।
0: चंदसारा में। हस्बैंड ठीक है आपके?
2: हाँ ठीक है।
0: कोई दिक्कत कोई परेशानी?
2: नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
0: तो इस तरह की जो स्कीम है यूपी गवर्नमेंट की, कितनी सहायक हो सकती है ये समाज के लिए या फिर उन वर्ग के लोगों के लिए जो थोड़े से गरीब वर्ग के लोग हैं?
2: हाँ, बहुत सहायक है ये। लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, सभी सेवाओं का फायदा उठाना चाहिए जो चल रही है, जो गवर्नमेंट ने ये निकाली है।
0: छवि, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का फॉर्म भरने के बाद क्या प्रक्रिया हुई, आगे कैसे हुआ सब?
2: फॉर्म भरने के बाद फिर सबमिट कर दिया वो ब्लॉक में जाके, और उसके बाद फिर डेट मिली है हमको कि 27 तारीख को आपको वहाँ पे जाना है। कार्ड आया था उससे पता चला, फिर वहाँ पे गए हम लोग, फैमिली गई है हमारी और जो मेरे हस्बैंड है उनकी फैमिली गई है, वहाँ पे जाके फिर हुआ है।
0: छवि, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जितनी शानदार योजनाएं दे रहे हैं आप सभी लोगों को, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगी?
2: हाँ, वो ही मतलब अच्छा कर रहे हैं, वो योगी भी और मोदी जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो गरीब फैमिली है उनको काफी योजना निकाल रहे हैं, नई नई योजना आ रही है, तो अच्छा ऐसे चलता रहना चाहिए।
0: और भी बहुत सारी ऐसी युवतियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है बहुत वक्त से, या फिर पैसे की तंगी है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, उनको क्या संदेश आप देना चाहोगी?
2: उनको बस यही कि उनको जानना है इस चीज के बारे में, या नहीं पता होता बहुत से लोगों को कि क्या योजना आ रही है सरकार की तरफ से, तो बस उनको इस चीज का पता करना चाहिए प्रधान से या फिर किसी भी पंचायत घर में जाके इस चीज के बारे में पता करना चाहिए। ये तो हमारा अधिकार है, तो हमें नहीं डरना चाहिए इस चीज से, पूछना चाहिए सबसे।
0: छवि, आप क्या संदेश देना चाहोगी?
3: योगी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ।
1: आपने सुना, किसी भी योजना की सबसे बड़ी सफलता उसके आंकड़ों में नहीं बल्कि उन चेहरों की खुशी में दिखाई देती है जिन तक उसका लाभ पहुंचता है।
0: वैसे मेरठ की बात हो और खेलों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
1: बिल्कुल नहीं, मेरठ को देश की स्पोर्ट्स सिटी के रूप में पहचान मिली है। यहाँ क्रिकेट बैट, बॉल, हॉकी स्टिक, बैडमिंटन और दूसरे खेल उपकरणों का बड़ा उद्योग है।
0: और यही तो है उत्तर प्रदेश की खासियत, हर शहर की अपनी पहचान, अपनी क्षमता और अपनी कहानी।
1: सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP पहल के तहत मेरठ की पहचान स्पोर्ट्स प्रोडक्ट से जुड़ी है, जिससे स्थानीय उत्पादों और उनसे जुड़े कारोबार को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
0: यानी मेरठ के मैदानों में खिलाड़ी पसीना बहाते हैं और मेरठ की कार्यशालाओं में कारीगर अपने हुनर से खेलों का सामान तैयार करते हैं।
1: वाह, क्या बात कही आपने।
0: क्योंकि विकास वही है जहां हुनर को पहचान मिले, रोजगार के अवसर बढ़े और स्थानीय पहचान को नई उड़ान मिले।
1: और यही वजह है कि जब हम विकास का प्रदेश कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट से नहीं होता।
0: इसका मतलब है किसी बेटी के विवाह की चिंता कम होना, किसी कारीगर के हुनर को बाजार मिलना, किसी युवा को आगे का अवसर मिलना और किसी परिवार के चेहरे पर भरोसे की मुस्कान आना। दोस्तों, फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको मिलाएंगे मेरठ की CDO यानी कि मुख्य विकास अधिकारी, जो कि 2023 से मेरठ शहर में कार्यरत हैं। मैम एक IAS ऑफिसर हैं और मैम ने मेरठ की तरक्की को, यहाँ पर हो रही प्रगति को बहुत ही करीब से देखा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन के कारण और CDO मैम के नेतृत्व के कारण मेरठ लगातार आगे बढ़ रहा है। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका।
4: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
0: मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि मेरठ में चल रही हैं इस वक्त, जो मुख्य योजनाएं हैं?
4: इस वक्त मेरठ में बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मेरठ आई थिंक एशिया का एक इकलौता ऐसा, SRTS भी चल रही है और मेट्रो भी चल रही है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भी मेरठ में ही आया और अभी गंगा एक्सप्रेस वे का भी हाल फिलहाल में ही इनॉग्रेशन हुआ। इसके साथ में बहुत सारे ऐसे रोड्स का जाल यहाँ मेरठ में बिछाया जा रहा है और जा चुका है, जिससे आज के टाइम पे कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो मेरठ इज आई थिंक नंबर वन व्हेन इट कम्स टू उत्तर प्रदेश ऑन द होल। साथ ही में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर स्कूल्स को मॉडल स्कूल्स बनाना, जहाँ पर हमारी सरकारी स्कूल्स में भी वही सारी फैसिलिटीज के लिए हम ट्राई कर रहे हैं जो सारी प्राइवेट स्कूल्स में दी जाती है बच्चों को, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ टीचिंग के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। इसके साथ में अगर हम किसानों की बात करें तो किसान सम्मान निधि और बहुत सी ऐसी अलग परियोजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है जहां उन्हें सब्सिडी दी जाती है, उन्हें फर्टिलाइजर्स उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है। अगर हम युवा की बात करें तो PMGP एक बहुत अच्छी योजना सामने आई है
0: जी।
4: जिसके अंदर उन्हें लोन दिया जाता है सब्सिडाइज्ड रेट पे। इसके साथ ही हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ में आयुष्मान कार्ड एक ऐसा गोल्डन कार्ड है जो 5 लाख तक का फ्री उपचार मरीजों को उपलब्ध कराता है किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी। और मेरा मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसे पिलर्स हैं जिनके ऊपर ही एक मजबूत और विकसित प्रदेश की नींव रखी जा सकती है। और हमारे यहाँ पर आप किसी भी सेक्टर की बात कीजिए तो सभी में ही काम लगातार किया जाएगा।
0: जी मैम, एक योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, तो इस योजना के बारे में थोड़ा सा आप सभी को जानकारी दें मैम।
4: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बेसिकली ऐसे निर्धन परिवारों की बच्चियों की शादी कराई जाती है जिसे खुद सरकार कराती है। इसके अंदर हाल फिलहाल में अभी जो धनराशि दी जाती है उसे भी बढ़ाया गया है, उसे भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसके अंदर सरकार ना सिर्फ उनको कुछ सामग्री देती है जैसे उन्हें ब्रीफ केस, गद्दा, चुनरी, कुछ साड़ियाँ, बेडशीट्स, कुकर, एक डिनर सेट, ये सब देती है। साथ ही साथ उनके खाते में भी डायरेक्ट पैसे दिए जाते हैं और इसके साथ में ही एक सामूहिक रूप में एक बहुत अच्छा वेडिंग हॉल तैयार किया जाता है जिसमें उन सभी को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि वो वहाँ पर आए, शादी करें और साथ ही में उनके परिवारजन, लड़कियों के परिवारजन और लड़कों के परिवारजन दोनों ही वहाँ आते हैं, विवाह संपन्न होता है और साथ ही में वहाँ पर उन सभी के लिए एक प्रीति भोज भी रखा जाता है जिसके अंदर ये एक धर्मनिरपेक्ष चीज है जहाँ पर दोनों ही हिंदू भी और मुस्लिम परिवार दोनों की ही शादियाँ करवाई जाए।
0: जी मैम, क्योंकि आपको 3 साल हो चुके हैं मेरठ में आपके कार्यकाल को, तो आपके अनुसार मैम जो मेरठ के लोग हैं खासकर जो ग्रामीण लोग हैं किस प्रकार इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वो क्या आपके पास आते हैं वो बताने के लिए कि मुझे ये योजना मिली है और इससे मुझे फायदा हुआ है?
4: बिल्कुल, जब हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सीधा सीधा गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा मिला है। जब हम पेंशन की बात करें, चाहे हम कोई भी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, इन सभी का लाभ उन लोगों के द्वारा लिया जा रहा है। शिक्षा की बात करें तो आज हर एक गांव में एक बहुत अच्छा स्कूल स्थापित किया गया है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर हर एक गांव में बसाया गया है। वहाँ सर जो गांव की सड़कें हैं वो बहुत अच्छी हो गई है। हर एक गांव में आज एक पंचायत घर बनाया गया है, एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। और मैं खासकर ये बात बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ मेरठ में जो डिजिटल लाइब्रेरीज या जो पंचायत घर में लाइब्रेरी बनाई गई है उसमें आज के दिन में टोटल 1231 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, चाहे वो पुलिस भर्ती हो या फिर SSC CGL हो या फिर UPSC हो, इन सब में उत्तीर्ण हुए हैं, उन्होंने सफलता पाई है। तो मेरा मानना है कि ये जो सरकार की सारी स्कीम्स है, शासन की सारी परियोजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सरकार लोगों तक पहुंचाती है। और हम सब लोगों का भी यही एक ट्राई हमारा रहता है, कोशिश रहती है कि हम सब उन सभी लोगों तक जा सके और उन सभी लोगों की मदद कर सके जो इनके इच्छुक है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर गांव में समूह की महिलाएं भी बहुत अच्छा काम कर रही है। एक हमारे यहाँ पर समूह की महिला है जो फूलों की खेती कर रही है खेरकौदा में, एक समूह की महिला है जो बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बना रही है, उसको अलग रेसन पोर्ट करके वो जयपुर में अपना माल सप्लाई करती है। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दीदियां हैं जो आज लखपति दीदी बन
0: गई है।
4: यहाँ मेरठ जनपद में हमने ना सिर्फ इन सब बट आशा बहुओं का भी बहुत ध्यान रखने की कोशिश की। यहाँ पर DM सर के नेतृत्व में एक आशा पेकर के प्रोग्राम चलाया गया जिसके अंदर आज के दिन हमारी जो एक एवरेज आशा जो सैलरी पा रही है, जो एक पैसे पा रही है मंथली, वो लगभग 9000 के लगभग पहुंच गए हैं, जिसके अंदर अभी हाल फिलहाल भी DM सर के द्वारा हमारे यहाँ पर 4 ऐसी आशाओं को सम्मानित भी किया गया था वॉशिंग मशीन देकर, जो सबसे ज्यादा पैसे पा रही थी। और मैं ये बहुत खुशी के साथ कह सकती हूँ कि वो चारों ही आशा 14,000 से 15,000 रुपए प्रति महीना वो कमा रही थी। तो ये सभी चीजें दर्शाती है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कैसे हम लोग एक अच्छी दिशा में आगे प्रगति कर रहे हैं।
0: जी मैम, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा जो गांव के लोग होते हैं, मैम बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, आपके ऑफिस में भी काफी लोग आते हैं, मैम सारी योजनाओं का तो सभी को नहीं पता होगा, तो लोगों तक योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए मैम विभाग की तरफ से मैम क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, क्या क्या कार्यक्रम किए जाते हैं?
4: हर एक सेक्टर अपना अलग अलग कार्यक्रम करता है और साथ ही में हमारे द्वारा भी एक कन्वर्जेंस भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि समय समय पर यहाँ पर ग्राम चौपालों का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर पूरा पूरा प्रशासन उठ के वो गांव में जाता है और वहां सभी लोगों को सभी स्कीम्स के बारे में बताता है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, बहुत सारे पैम्फलेट्स बांटे जाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में उन्हें इन्वाइट किया जाता है। जैसे अगर मैं अगर कृषि की ही बात करूं, तो कृषि में हमारे द्वारा ऐसी बहुत सारी चीजें की जाती है जहां पर यहां से साइंटिस्ट, जिले से साइंटिस्ट या हेडक्वार्टर से साइंटिस्ट उनके गांव में जाते हैं और उन्हें बताते हैं, और वाइस वर्सा भी। उन्हें भी बहुत बार ब्लॉक्स पे या फिर हेडक्वार्टर्स में बुलाया जाता है कि वो लोग यहाँ आके सीखे और जानकारी ले। जैसे अगर मैं डीपीओ विभाग की बात करूँ, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलाई जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत, कन्या सुमंगला योजना जैसे हो गई, जिसमें पहले लोगों को शिक्षित किया जाता है और फिर उनका लाभ उनके द्वारा लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे बैनर्स सोशल मीडिया, सर का, डीएम सर का, कमिश्नर सर का, और सूचना विभाग के द्वारा भी समय समय पर न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में, बैनर्स में बड़े बड़े ये चीज बहुत सारे लोगों तक बताई जाती है। और साथ ही में आपका रेडियो भी हमारी बहुत बहुत हेल्प करता है ये सब चीजें आम जनता तक पहुंचाने के लिए। तो मेरा मानना है कि जिस जिस प्लेटफॉर्म पर हम जैसे जैसे सोच सकते हैं हम लोग वैसे ट्राई करते हैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। जैसे कल ही एक कॉन्क्लेव हुआ जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाया गया जो कैटल फार्म चलाते हैं या जो पशुपालन से रिलेटेड है, तो ऐसे भी बहुत सारे कॉन्क्लेव यहाँ पर कराए जाते हैं।
0: जी मैम, क्योंकि हमारा जो एक कार्यक्रम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जागरूकता के लिए है, लोगों तक हम योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, बेसिकली मेन पर्पस है अवेयरनेस। तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी मैम?
4: हाँ, मैं सभी लोगों से यहाँ पर आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूंगी कि आप सभी लोग जागृत रहिए। यहाँ पर आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी न्यूज भी फैलाई जा रही है जो भ्रामक है, जो सही नहीं है, तो एक बार प्लीज फैक्ट चेक कीजिए। कोई भी चीज़ जो आप सोशल मीडिया में पढ़ते हैं या अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे पढ़ते हैं वो सही नहीं भी हो सकती है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए, देश के हित के लिए काम कीजिए और आप खुद तरक्की कीजिए ताकि देश भी आपके साथ तरक्की करे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 2047 तक हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसके लिए हमें एक हमें अपने प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है, और उसके लिए हम सभी को बहुत अच्छे से एकदम एड़ी चोटी पर जोर लगा के काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा देश वो हर बुलंदी पर पहुंचे जहां पर वो पहुंचने का हकदार।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार विकास और जन कल्याण को साथ लेकर आगे बढ़ने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है,
0: और इन प्रयासों की खासियत यही है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों की स्थानीय जरूरतों और उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विकास की नई संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया जा रहा है।
1: मेरठ इसकी एक खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। एक तरफ इतिहास की विरासत, दूसरी तरफ खेल और उद्योग की ताकत, और साथ में सामाजिक कल्याण की योजनाओं से जुड़ती नई उम्मीदें। मेरठ ने 1857 में बदलाव की एक चिंगारी देखी थी,
0: और आज वही मेरठ नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में अपनी अलग पहचान बना रहा है।
1: मेरठ जहां खेल का हुनर है,
0: जहां उद्योग की ताकत है,
1: जहां इतिहास की विरासत है,
0: और जहां जन कल्याण की योजनाओं से जुड़ती हैं उम्मीदें।
1: तो ये थी मेरठ से विकास की एक ऐसी कहानी
0: जिसमें आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है लोग, उनके सपने, और उन सपनों को मिलती नई दिशा,
1: क्योंकि उत्तर प्रदेश बदल रहा है,
0: और जब प्रदेश आगे बढ़ता है तो शहर की कहानी विकास की कहानी बन जाती है।
1: आप सुन रहे थे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और आज आनंद अकेला नहीं है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम में हम हाजिर हो गए हैं और कुछ नया नया लेकर आए हैं एक बार फिर से। और आज सोच बदलो का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है। आज का विषय है क्या कहेंगे लोग। अक्सर मैं और आप यही सोचते हैं ना कुछ भी करने से पहले कि यार अगर हमने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, वो किया तो लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं कि उनके बारे में सोच सोच के ना अपना फ्यूचर, टाइम, अपना एनर्जी सब कुछ खराब कर लेते हैं। और इसी पर जो है बात करने के लिए मैंने एक नई मेहमान को स्टूडियो में आमंत्रित किया है और एक हमारी प्यारी सी होस्ट एंड दोस्त है और एक और दोस्त है, तो मतलब कुल मिला के चार लोगों के टॉपिक पे चार लोग आए हैं अपनी अपनी राय देने। सो सबसे पहले तो वेलकम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ आरजे, और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। कई बार मैं आ चुकी हूँ और आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार ही आई हूँ। हर बार मुझे एक न्यू फीलिंग आती है और मुझे हर बार लगता है कुछ नया है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये नया जब हम आप लोग एफएम पे आते हो तो हमें भी लगता है कि हमारे साथ भी कुछ नया है। आपको देख के लग रहा है कि आज एक नई मेहमान है, मतलब कुछ नया है।
1: कुछ नया है
0: बिल्कुल। अपने बारे में थोड़ा बताओ हमारे सुनने वालों को।
1: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ RSM पब्लिक स्कूल
0: जी
1: छजलैट, और रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर जो जॉब स्विच करी कुछ कारणवश, और मैं जिम ट्रेनर भी हूँ। योगा जिम मेरा पैशन है, योगा मेरा मैं खुद के लिए करती हूँ। हाउसवाइफ हूँ अभी तो फिलहाल मैं।
0: तो आज का जो ये प्रोग्राम है इसका नाम है सोच बदलो। जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि सोच को बदलना बहुत जरूरी है। आजकल हमारा युवा पीढ़ी सब लोग अपने मोबाइल तक ही सीमित रह गए हैं, सबको मोबाइल में घुसने की आदत है, तो मुझे लगता है कि मोबाइल से बाहर निकल के सोच बदलने की जरूरत है, राइट? और हमारे साथ कुमकुम भी है, रीना भी है, तो आप लोगों का भी स्वागत है। आप लोग भी थोड़ा हेलो हाय करो इस प्रोग्राम में। हेलो बोलिए जी, सोच बदलो में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच आरजी आनंद
0: जी।
2: मैं कुमकुम आप सबकी प्यारी दोस्त फिर से आपका एक और बार स्वागत करती हूँ मैम हमारे नए शो में
0: जिसका नाम है सोच बदलो।
2: जिसका नाम है सोच बदलो।
0: रीना जी आप कुछ बोलेंगी?
3: हेलो एवरीवन, मैं आरजे रीना, आप सभी मुझे जानते हैं, हम ढेर सारी बातें करने वाले सोच बदलो के ऊपर।
0: बिल्कुल जी, तो सोच बदलो में जैसे कि हमने आज टॉपिक उठाया है क्या कहेंगे लोग, तो सबसे पहले श्रोताओं आपको भी पता है जैसे कि मैंने आते ही जिक्र किया, हम अक्सर कोई भी चीज करते हैं तो हमारे दिमाग में हमारे जहन में एक ही बात आती है कि लोग क्या कहेंगे। तो शैली जी इस पे आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हर दुनिया का दूसरा इंसान यही सोचता है कुछ भी करने से पहले?
1: पहले तो मैं शैली सिंह आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और चार लोग क्या कहेंगे ये ना बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे जितनी बात की जाए वो कम है। चार लोग उस समय कहाँ होते हैं कि जब हमारे बच्चे की फीस नहीं जा रही होती है,
0: करेक्ट?
1: वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा होता है, वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में होता है, वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं और हमारे पास कोई नहीं होता जिनसे हम अपनी फीलिंग शेयर कर पाएं, वो चार लोग तभी क्यों आते हैं जब हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम ग्रो कर रहे होते हैं, वो चार लोग तभी क्यों आते हैं, तभी उनमें हमें हर चीज में कमियां क्यों दिखाई देती हैं। उससे पहले लाचार बेचार उनके सामने बने रहो तो उनके लिए अच्छे हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी अपने मन की कर ली तो आप वहीं पे पूरे।
0: तो मतलब आपका कहने का ये है कि कुल मिला के इन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, जब जब ये चीजें होती हैं तो ये चार लोग गायब होते हैं, जब आपकी प्रोग्रेस शुरू होती है तो ये लोग।
1: उन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, वो चार लोगों के बारे में आपको ये सोचना है कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है ठीक है, और आपके वो लोगों के कहने पे आप अपने बच्चों को घर नहीं भेज रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप चार लोगों की मत सुनिए। चार लोग ये कह रहे हैं कि आप इस बच्चे को अपनी अच्छी ये वाला कॉलेज खुद से बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके
0: एडवाइस
1: कर रहे हैं कि, तब सुनिए आप उनकी। हमारी हेल्थ इश्यूज का कोई अगर हमें अच्छा सजेशन दे रहा है तब सुनिए आप उन लोगों की। हमारे घर में कोई बेरोजगार बच्चा है उसे रोजगार दिला रहे हैं तब सुनिए आप उनकी।
0: सही कहा आपने, बिल्कुल शैली जी आप बिल्कुल अच्छा कह रही हैं, और दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है। मुझे भी ऐसी लगता है कि जब बात चार लोगों की आती है तो हम इतना ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि हम बहुत सारी चीजें खुद की खुद ही भूल जाते हैं, और जब एक्चुअल में हमें इन लोगों की जरूरत होती है तब ये लोग आते नहीं है, जब हमें इनकी जरूरत नहीं होती तब ये लोग आके टांगड़ आते हैं, है ना? बट ये चार लोग आज तक किसी को समझ में नहीं आए हैं। मुद्दे की बात यह है, क्यों कुमकुम कभी तुम्हें लगा कि ये चार लोग तुमने देखे हैं कभी कहीं?
2: नहीं, वो चार लोग आपको हर जगह दिख जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चार लोगों के सामने कैसे बिहेव करते हैं और किस तरह की से उनकी बातें अपने ऊपर लेते हैं।
0: और तुम रीना, तुम्हें क्या लगता है चार लोगों के बारे में?
3: मेरा मानना ये है कि चार लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बस आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप चार लोग की बात सुनोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
0: जी हाँ दोस्तों, चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, प्रोग्राम है सोच बदलो। थोड़ी देर में लौट कर आते हैं कुछ और खास बातों के साथ।

0: एक बार फिर से वेलकम बैक है आप सभी का। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद और प्रोग्राम है सोच बदलो। श्रोताओं, जब भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं या जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्या कहेंगे लोग? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, अगर लोग मुझ पर हंसेंगे तो मुझे बड़ी बेइज्जती होगी, मुझे बड़ी शर्म आएगी। कई बारी तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लगेगा मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। कई बारी लोगों के चक्कर में हम जो चीज हम करना चाहते हैं एक्चुअली वो कर नहीं पाते हैं, और इसी पर हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तो शाली जी, क्या मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है ऐसा कि लोगों को सोच बदलने की जरूरत है, आपको क्या लगता है, क्या हमें इन चालू के बारे में सोचना चाहिए या अपना फ्यूचर अपना करियर सेट करने के बारे में सोचना चाहिए?
1: को मेरा तो मेरा क्या सभी का मानना यही होना चाहिए कि चार लोगों को साइड करो, अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे और अपने आप पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ के लिए फोकस करो। क्योंकि जब आपके पास एवरीथिंग होगा ना, पैसा पावर सब होगा, वो चार लोग आपके घर में ही बैठे नजर आएंगे और रोज नजर आएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छा बोला आपने शैली जी। डरते रहेंगे जो लोगों की बातों में आएंगे,
1: वो घर में ही बैठे नजर आएंगे और रोज नजर आएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छा बोला आपने शैली जी। डरते रहेंगे जो लोगों की बातों में आएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो लोगों की बातों में आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कुमकुम?
2: मुझे भी यही लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनको यही सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे वो साइड में रख दिया जाए और खुद के सपनों की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
0: ग्रेट जी, शैली जी कुछ कह रही हैं आप?
1: वो एक सॉन्ग है, राजेश खन्ना जी का है शायद, मेरे ख्याल से उसमें वही है कुछ तो

0: कहेंगे।
1: ग्रेट, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए अब जब शैली जी ने इतनी खूबसूरत आवाजों में इस गाने को गाई दिया, इतनी ब्यूटीफुल आवाज में, तो अब इस गाने को सुनी लेते हैं, फिर थोड़ी सी देर में लौट कर आते हैं सोच बदलो में।

0: इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। तो रीना, आपको क्या लगता है सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? क्या सच में उन्हें भी सोच बदलने की जरूरत है? चार लोगों को लेकर जो लोग सोचते हैं, हम और आप अक्सर सोचते रहते हैं, मुझे नहीं पता तुम सोचती हो नहीं, मैं कभी कभी सोच लेता हूँ।
1: नहीं नहीं यार, मैं अक्सर सोचती हूँ और मुझे लगता है कि चार लोगों की जरूरत जब आपको पड़ती है वो आपके साथ नहीं खड़े होते, बल्कि जब आपको जरूरत नहीं होती तब आपके साथ रहते और बोलते यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तेरे साथ था, बस यार बताना चाहिए था ना। मतलब वो सहानुभूति देते हैं, आपको दिखाते हैं कि मैं तेरा साथ हूँ, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, बहाना बना लेते हैं कि यार मेरे पास कुछ काम है मैं भी नहीं आ सकता। तो ये है, तो बस आप अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी दुनिया बोलने सुनने के लिए है।
0: बहुत अच्छा बोला रीना आपने, और मुझे भी लगता है श्रोताओं, देखिए सोच बदलने के साथ साथ ना अपने इरादों को भी बदलिए और लोगों की बातों को छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आपके होने चाहिए। क्यों शैली जी?
2: बिल्कुल, आजकल का जो सोशल मीडिया का जमाना है, आप उसमें देखिए हमारी कितना फ्रेंड सर्कल फैला पड़ा है, कितना दोस्त है, ठीक है, लेकिन जब आप परेशान होंगे आपके मोबाइल में एक नंबर नहीं मिलेगा कि आप उसको डायल करें और कहें यार मैं बहुत परेशान हूँ आ जा,
0: करेक्ट,
2: वो एक नंबर नहीं होगा आपके पास।
0: बिल्कुल, और मुझे ऐसे लगता है कि चार लोगों को ना हम ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पे भी आजकल वो चीज नहीं डालते हैं जो हमारी पसंद की है, वो डालते हैं जो लोगों को पसंद आए।
2: बिल्कुल,
0: है ना, वो इसलिए ताकि कोई डिप कमेंट ना कर दे। तो आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में भी हम चार लोगों का सोच रहे होते हैं, जबकि हमारा अपना अपना खुद का प्रॉपर्टी है सोशल मीडिया। भाई अगर मेरा अकाउंट है तो मेरा अपना प्रॉपर्टी है, मैं उसका राजा हूँ, तो मुझे क्यों दुनिया के बारे में सोचना? जो मुझे अच्छा लगे मैं तो वो डालूंगा ना, बट फिर भी हम वहां भी लोगों का सोच रहे होते हैं कि नहीं यार अगर हमने ये चीज डाल दी तो इस पे लोगों के क्या कमेंट। स्पेशली लेडीज को मुझे लगता है बहुत जरूरत है सोच बदलने की, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। आप क्या कहेंगी?
2: मैं तो इस चीज को आनंद
0: एक्सेप्ट नहीं करती,
2: फेस करती हूँ रोज।
0: ओके, फेस कर,
2: आज से नहीं, मतलब जब से मेरी, जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने फेस करा, क्योंकि मैंने कभी लोगों की सुनी ही नहीं,
0: मतलब इसका
2: और मैं जब सुनी ही नहीं हूँ तो आज मेरे बच्चे सेटल हो रहे हैं, मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा जो हस्बैंड का सपोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा है। वो भी कहते हैं जो सही है वो सुनो, जो गलत है उसे मत सुनो।
0: करेक्ट करेक्ट, मुझे लगता है कि श्रोताओं सोच बदलनी सिर्फ लेडीज को नहीं जेंट्स को भी होगी, और जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक चीजें अपनी जगह पे सेट नहीं होंगी, और यही हमारा भी एक मकसद है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम आपको एक सही और सटीक मैसेज दे सकें, और ताकि

0: हमारे आसपास में जो हमारे समाज में लोग हैं, जब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी तब तक चीजें सेटल नहीं होंगी। तो सोच बदलों का एक छोटा सा मकसद यही है कि हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा समय के साथ साथ। जैसे हम अपना खान पान चेंज करते हैं, जैसे मौसम चेंज होता है, वैसे ही सोच का चेंज होना भी बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको मैम, जरूरी है ना?
1: मैं एक बात कहती हूँ, हाँ प्लीज। तुमने देखा होगा जब इंसान सामने होता है ना, हम उसकी तारीफ नहीं कर पाते हैं। जब वही इंसान हमसे दूर चला जाता है, हम फिर बोलते हैं यार वो इंसान था बहुत अच्छा, लेकिन कभी हमने उसके सामने नहीं बोला होगा। तो आप इतना क्यों सोचते हो यार किसी के बारे में, हम क्यों सोचे किसी के बारे में?
0: करेक्ट करेक्ट,
2: आप दोनों मैम की बातों से मुझे एक बात मेरी बहुत अच्छी याद आई कि जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम में थी, मैं भी बहुत सोचती थी कि चार लोग क्या कहेंगे। बट अब जब शादी के बाद मैंने अपनी सोच को बदला है कि लोगों को छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, लोग तो कहेंगे जो कहना है, उनका काम है कहना। बट जब से उन चार लोगों में से कुछ ऐसे चार लोगों से मैं मिली हूँ जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक तो आप ही हो गए आज ही आनंद,
0: आपकी शादी होगी बताया नहीं था आपने मुझे, ये मेरे को आज ही पता चला है। अच्छा आगे बोलो
2: जी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीछे रह के खंजर भौंकने का काम करते हैं, तो उन लोगों से बच के मैं इन लोगों में आई हूँ। कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पीछे खींचेंगे, कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे।
0: करेक्ट, सही कहा है।
1: तो आप उनके साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ाते हैं।
3: ये बात बहुत अच्छी है कि चार लोग बुरे ही नहीं होते हमेशा। हाँ, चार लोग अच्छे
1: भी होते हैं।
3: चार लोग केवल निगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी होते हैं।
0: क्या बात है, इसी इन्हीं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो
1: एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है और अब हमारा जाने का समय हो गया है। लेकिन जाने से पहले हम चार लोग हैं तो हम चार लोगों की एक एक मैसेज तो होनी चाहिए सोच बदलो प्रोग्राम को लेकर। जी शैली जी, आपका क्या संदेश होगा हमारे तमाम सुनने वालों के लिए?
1: मेरा संदेश तो सबसे पहले महिलाओं के लिए है कि सबसे पहले उन्हें बदलने की जरूरत है। हमारी बेटी या हमारा बेटा कहाँ जाएगा, किसके साथ शादी करेगा, कैसे पढ़ेगा, तो पहले वो अब जो घर की लीडर है वो है, उन्हें सोच बदलिए कि आपने बच्चों को दूसरे के ऊपर मत छोड़िए, उनको अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, जो आपके बच्चों को ठीक लगता है वो करने दीजिए।
0: करेक्ट। और आप कुमकुम क्या कहेंगी?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि मैम ने कहा महिलाओं के लिए, मैं पुरुषों के लिए कहना चाहूंगी कि जो भी हस्बैंड है ना, वो अपनी वाइफ को जब सपोर्ट करते हैं तो वो आसमान छूती हैं। तो उनको पूरा सपोर्ट कीजिए और वो आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करने दीजिए जिससे कि वो आगे बढ़ पाए।
0: रीना?
3: मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, हमें कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करो आप उनको ताकि वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी में।
0: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, हम चार लोग चार राय रख रहे थे अपनी अपनी। मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा एपिसोड। फिलहाल हमारा जाने का समय हो रहा है। जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि रुक चाहा दुनिया ने हर बार, फिर भी सपनों ने उड़ना नहीं छोड़ा। जो डर गए लोगों की सोच से, उन्होंने खुद को जीना नहीं सीखा। तो आप जो है जीना सीखना चाहते हैं तो लोगों की बातों को छोड़िए, अपने आप पे और अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये दुनिया ऐसी है, आगे पीछे बातें होती रहेंगी। इनफैक्ट मैं तो ये भी जानता हूं कि जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं। जैसे शैली जी ने कहा, नेगेटिव भी चार लोग नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो उन पॉजिटिव लोगों को तलाशिए, वो आपको जरूर आपके आसपास मिल जाएंगे। और बाकी चार पॉजिटिव लोग हम भी हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हम भी आपके साथ हैं। फिलहाल यहाँ से लेते हैं हम जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच गाइज, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू कुमकुम, थैंक यू रीना। ओके चलो जी, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड पे इसी चैनल पर। तब तक के लिए सुनते रहिए
1: 89.6 FM रेडियो मुरादाबाद।
0: क्या बात,
3: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: चलिए गाइस, बाय बाय।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूं सुजाता स्मार्ट एनजीओ से। और मैं हूं इस समय परिवार कल्याण विभाग में, मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर आरसीएच यूपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट एनजीओ का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
0: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है।
1: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
0: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं।
1: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, वहाँ जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी एएनएम बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ ओपीवी की वैक्सीन भी पिलाई जाती है। और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने जेई का टीका लगाया जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल आईपीवी लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग डीपीटी की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजल्स रूबेला का बूस्टर डोज और जेई की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो डीपीटी वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग TD का वैक्सीन लगाते हैं।
0: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को।
1: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती हैं। टीकों की बात करें तो TD का टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है डिप्थीरिया से बचाव होता है, और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता, बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जो बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
0: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
1: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया, और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा सारा खून आता है, और उस खून जितना भी बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, RBCs होती हैं, WBCs होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है। तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में, जो भी हमने शुरू में जिक्र किया, उन टीकों को लगाना जरूरी है।
0: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे? क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
0: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
1: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहाँ पे एक एनम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे एनम होती हैं और हर एक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1000 की आबादी पर जो होती हैं जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, और इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉयज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
0: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
1: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अब मैं देख रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पे दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 में पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था, सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहां भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांति है तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए, और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
0: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
1: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है, और इस मृत्यु का जो कैंसर।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स ICT बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले SSB के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
4: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
3: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से SSP के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स ICT बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
5: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
3: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
6: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
7: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
3: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
8: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
3: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
9: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
10: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का

0: लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमेरिकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
2: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमरीकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमरीका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
3: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारत के त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशु शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज एम्स्टर्डम में FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स ICT बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। तो इस महिला मंच शो में हम बात करने वाले हैं, यानी कि हर बार हाँ कहना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी ना भी कहना जरूरी होता है। अक्सर हम यही करते हैं ना कि हम दूसरे को खुशियों के लिए हमेशा जब भी वो कुछ काम बोलता है हम हाँ कर देते हैं, लेकिन देखिए हाँ करना भी जरूरी है, लेकिन कभी कभी ना आपको जब लगे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, वहाँ पे मुझे ना बोलना है, तो वहाँ पे ना बोलना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो ज्यादा अच्छे आप बनोगे ना तो उतने अच्छे तरीके से चक्की में पीसे भी जाते हैं, तो इसीलिए ज्यादा अच्छा भी बनना जरूरी नहीं है। उनके साथ अच्छे रहिए जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जो आप जब भी बोलते हैं वो आपके साथ खड़े रहते हैं, उनके लिए तो भैया देखिए मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, उनके साथ तो आपको देना ही पड़ेगा। और कभी कभी हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को दुखी कर बैठते हैं। किसी ने मदद मांगी, हमने हाँ कह दी, किसी ने अपना काम हमारे ऊपर डाल दिया, हमने कहा कोई बात नहीं कर लेंगे, मन नहीं था फिर भी किसी की बात मान ली, थक गए थे फिर भी किसी के लिए समय निकाल लिया, और जब अपने लिए कुछ करने की बारी आई तो हम खुद से ही कह देते हैं अभी नहीं बाद में। लेकिन श्रोताओं, आज के इस महिला मंच शो में आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी, जो हमारी प्यारी बहनें हैं, सो देखिए काम करना जरूरी है हर किसी के लिए, जब भी कोई काम बोले आप करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ना खुद के लिए टाइम निकालिए और कभी कभी ना बोलना भी सीखिए, क्योंकि अक्सर लड़कियां महिलाएं होती हैं वो ना नहीं बोलती है, हमेशा काम के लिए तैनात रहती है, जिसने बोला काम करो तो कर देती है, लेकिन कभी कभी आपको अपने लिए डिसीजन लेना भी बहुत जरूरी है।
1: साथियों, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और क्या हर बार हाँ कहना हमें अच्छा इंसान बनाता है, या फिर कभी कभी अपने लिए ना कहना भी जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, हर हाँ रिश्ता नहीं बचाती और हर ना रिश्ता नहीं तोड़ती, कभी कभी एक छोटा सा ना आपको खुद से दोबारा जोड़ देता है। तो आज बात करेंगे दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को पीछे छोड़ देने की, बात करेंगे अपनी सीमाओं की, अपने सम्मान की और अपने लिए ना कहना सीखने की। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला मंच और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे खुशी। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, हर किसी को खुश करने से पहले एक बार खुद से भी पूछेंगे, क्या खुशी, क्या तू खुश है? और एक बार आपका जो भी नाम है आप खुद से पूछिएगा कि क्या आप खुद से खुश हैं? आखिर ना कहना इतना मुश्किल क्यों है? दोस्तों, ना सिर्फ दो अक्षर का एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे बोलना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है सामने वाला बुरा ना मान जाए, उसे लगेगा कि हम स्वार्थी हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने मना कर दिया तो शायद रिश्ता खराब हो जाएगा, और डर में हम अपनी इच्छा के खिलाफ बार बार हाँ कहते रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दूसरों की हर उम्मीद पूरा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप भी थक सकते हैं, आपका भी मन नहीं हो सकता है, आपके पास भी समय कम हो सकता है, और ये सब बिल्कुल सामान्य है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एवरीवन, आप आखिरी बार कब सिर्फ इसलिए हाँ बोले थे क्योंकि आपको डर था कि सामने वाला बुरा ना मान जाए, और अगर आप उस समय ना कह देते तो क्या होता? मुझे अपने संदेश जरूर भीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896।
0: तो देखिए श्रोताओं, अब हम बात करेंगे अच्छा इंसान बनने की गलत परिभाषा। हमारे मन में बचपन से ही एक बात बैठा दी जाती है, अच्छा बच्चा वही है जो सबकी बात, अच्छी बेटी वही है जो सबके काम आए, अच्छी पत्नी वही है जो सबको खुश रखे, अच्छा दोस्त वही है जो हर समय उपलब्ध रहे। लेकिन क्या ये सच है? अगर आप हर किसी के लिए मौजूद है लेकिन खुद के लिए कभी कोई मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी में संतुलन लाने की जरूरत है। अच्छा इंसान बनने का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहे। अच्छा इंसान होना और खुद को भूल जाना दो अलग बात। और घर वाले तो अक्सर हमें सिखाते हैं कि हमेशा एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के लिए खड़े रहो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप उनके साथ खड़े रहो, उनको साथ दो जो आपके साथ, जैसे आप किसी के लिए एक बात पर खड़े हो जाते हो, बोलते हो कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, मैं काम करूंगी, तो जो बोलेगा मैं तेरे साथ हूँ, सामने वाला भी आपको वैसा रिप्लाई दे और आपके साथ वैसा ही रहे, तो बिल्कुल आप भी उनके साथ वैसा ही रहे, वैसा ही व्यवहार करे जैसा सामने वाला करता है। और कभी कभी हर विमनिया को ना भी कर देना चाहिए। शाम होते ही सुबह से लेकर शाम तक किचन में लगी रहती है, भाई कुछ बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, लेकिन कभी अपने पसंद के कुछ नहीं बनाती है। तो कभी कभी ना करके ये बोला करिए कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, बाहर एंजॉय करके आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको भी जिंदगी जीने का मौका मिले, बाहर घूमने का मौका मिले। और बाहर घूमने का ये सबसे आसान तरीका है कि शाम के खाने के लिए ना कर दो, आज खाना नहीं, आज बाहर खा के आते हैं, एंजॉय करके आते हैं। तो देखिए आपको भी टाइम मिलेगा और अभी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगी और बाहर के नजारे हैं, जो बाहर की देश दुनिया है, आप उसको भी एंजॉय कर पाएंगी। क्योंकि चार दीवारी में रहना और भाई थोड़ी सी घुटन भी हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है, तो उससे थोड़ा बाहर निकलिए, ताजगी हवा लीजिए और अपने जीवन को एंजॉय करिए। फिलहाल हम लेंगे यहाँ पे श्रोता एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद मैं कनेक्ट होती हूँ आप सभी के साथ। एक बहुत ही शानदार गाना आप सभी के लिए है, तो इस गाने को एंजॉय करिए।

0: क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है और मैं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं महिला मंच शो। मेरे साथ आरजे खुशी भी है। सो अब मैं बात करने वाली हूँ, ना स्वार्थ नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अपने लिए ना कहना स्वार्थ, लेकिन नहीं। अगर कोई आपसे कहता है आज मेरे साथ बाहर चलो और आपका मन नहीं है, तो आप प्यार से कह सकते हैं आज मेरा मन थोड़ा आराम करने का है। हर किसी और दिल मिलते हैं, इसमें स्वार्थ कहाँ है। अगर कोई आपसे ऐसा काम करने को कहता है जिसके लिए आपके पास समय नहीं है, तो आप कह सकते हैं अभी मेरे पास समय नहीं है कि बाद में करूँगी या फिर कर दूंगा। क्योंकि देखिए, जब आपका मन ना हो ना कोई काम करने के लिए और आप उसको जबरदस्ती करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो काम आप बेटर कर ही नहीं पाएंगे। आप बोल सकते हैं कि अभी मेरा मन नहीं है, मैं थोड़ी देर में आपका जो काम है वो कर दूंगी। शायद आप और बेटर उस टाइम कर पाए। और जब मन नहीं होता किसी काम को करने के लिए, तो आपका वो सारा काम गलत ही होता जाता है। आप उसको खुद से भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान तो कहीं और रहता है। बॉडी थकान हो चुकी होती है, तो वो आपसे आराम मांगती है, तो उसको आराम दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद आप उस काम को कर सकते हैं। फिलहाल अब मैं खुशी से जानना चाहूंगी, कहाँ हो भैया तुम? बातें सुन रही है भैया, लड़के चुप चुप के। अरे बोलो भाई, तुम भी कुछ?
1: हाँ, मैं आपकी बातें सुन रही थी। बहुत ही अच्छे से आप सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करती हूँ, पहले आपको सुन लेती हूँ। और दोस्तों, मैं भी आपसे कुछ एक छोटा सा संवाद शेयर करना चाहती हूँ। क्या आपको ना कहने के बाद अपराध बोध होता है? मतलब आपने किसी को मना तो कर दिया, लेकिन बाद में मन में बार बार चलता रहता है शायद मुझे हाँ कर देनी चाहिए थी। ये मेरे साथ होती ना,
0: मेरे साथ भी होता है।
1: मुझे लगता है कि यार मैंने क्यों ना बोल दिया, मुझे हाँ बोलना
0: चाहिए। और वो मुझे लगता है कि वो पूरा दिन हमारे दिमाग में घूमता रहता है।
1: हाँ।
0: सामने भी जब जाते हैं ना उसके पास, तो मैंने कहा यार क्या सोच रहा होगा ये, क्या सोच रही होगी।
1: सेम सिचुएशन होती है। अगर ऐसा आपके साथ होता है, आज का हमारा महिला मंच बहुत खास है आपके लिए, तो आप हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी है मीरा की। मीरा एक बहुत ही होनहार लड़की थी। घर में सबकी मदद करना, दोस्तों के काम आना, ऑफिस में दोस्तों का काम कर देना, मीरा के लिए सब सामान्य था। उसकी एक आदत थी, वह किसी को ना ही नहीं कह पाती थी। ऑफिस में कोई कहता मीरा मेरा ये काम कर दो, वह कहती हाँ। दोस्त फोन पर कहते मीरा मेरे साथ बाजार चलोगी, मीरा बोलती हाँ चलूंगी। घर में कोई कहता आज ये काम तुम कर देना, मीरा कहती हाँ मैं कर दूंगी। धीरे धीरे मीरा थकने लगी, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं थी। एक दिन वह बहुत थकी हुई घर लौट कर आई। उस दिन उसकी माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? मीरा ने कहा कुछ नहीं माँ। माँ ने मुस्कुरा कर कहा कुछ नहीं नहीं बहुत कुछ है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा माँ मैं सबके लिए इतना कुछ करती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं किसी के लिए पर्याप्त नहीं हूँ, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं हूँ। माँ कुछ देर चुप रही, उन्होंने बहुत प्यार से कहा बेटा दूसरों के लिए अच्छा बनने की कोशिश में तुम खुद के लिए बुरी बन गई हो। मीरा चौंक गई। माँ ने कहा तुमने कभी किसी को मना नहीं किया।

लेकिन कभी खुद से पूछा कि तुम क्या चाहती हो? मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन ऑफिस में एक साथी ने फिर अपना काम मीरा को देते हुए कहा, मीरा ये भी काम कर देना मीरा प्लीज। मीरा कुछ सेकंड चुप। पहली बार उसने मुस्कुराकर कहा, माफ कीजिएगा, आज मेरे पास पहले से ही बहुत काम है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। बस इतना ही कहा, सामने वाला थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दुनिया खत्म नहीं हुई, बड़ा रिश्ता नहीं टूटा, ऑफिस बंद नहीं हुआ। मीरा को बस पहली बार महसूस हुआ, अरे मैं मना कर सकती हूँ। उस दिन के बाद मीरा ने हर बात पर ना कहना शुरू नहीं किया। जहाँ सच में जरूरत है वहाँ मदद करो, लेकिन जहाँ आपकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा हो वहाँ अपनी सीमा तय करो। और दोस्तों, मीरा की जिंदगी में सबसे खूबसूरत बदलाव तब आया जब उसने दूसरों को खुश करने से पहले खुद को भी इम्पोर्टेंस दी, खुद को भी महत्व देना शुरू किया। तो दोस्तों, अभी मिलते हैं आपको एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। आप कहीं मचाइए, यूं ही मुस्कुराइए, लौट कर आते हैं हम आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है महिला मंच, जहां पर हम बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में। अक्सर क्या होता है ना, हमारी जो मेल्स होती है ना, जैसे रीना ने भी आपको बताया दोस्तों कि वो कभी लड़कियां भी ना बोलती ही नहीं है, हमेशा हर काम के लिए हाँ ठीक है मैं कर दूंगी। और मीरा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो आगे क्या हुआ है सब आपको बताऊंगी अभी एक प्यारे से गाने के इस बार।

0: क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। अपने तो अपने होते हैं, सच में अपने तो अपने ही होते हैं। फिलहाल इस महिला मंच में हम आगे बढ़ते हैं, आगे की जो बात है वो शुरू यानी कि जारी रखते हैं। रिश्तों में ना क्यों जरूरी है, अब एक बहुत जरूरी बात। कई लोग सोचते हैं कि ना कहेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन जो रिश्ता आपके एक सम्मानजनक ना होकर स्वीकार ना कर सकता, उस रिश्ते में कभी ना कभी संतुलन की जरूरत है। सच्चे रिश्ते में आप अपनी बात कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आज मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे ये बात पसंद नहीं आई, मैं इस तरह बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए और सामने वाला आपकी बात समझने की कोशिश करे। यही स्वस्थ रिश्ता होता है, क्योंकि जो आपकी बात समझे, जो आपका अहमियत करे, मुझे लगता है कि वो रिश्ता सबसे बेस्ट होता है। और रिश्ता वो नहीं कि जो आपने हाँ कहा वो टूट गया और उसने अगले ने सोचा कि यार इसका तो यही काम है, ये ना कर देती, इसे बोलना ही बेकार है, आज के बाद मैं इसे कुछ काम बोलूंगा ही नहीं, तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। मुझे ये लगता है वहाँ पर आपको ना करना बहुत जरूरी। जो इंसान आपको समझता है, जिस रिश्ते में आपको समझा जाता है, सम्मान दिया जाता है, प्यार दिया जाता है, वो आपको समझेगा, वहाँ पर आपकी बातें अच्छे से सुनी भी जाएगी, तो वो रिश्ता हमारे लिए बेस्ट होता है। ना कि ना कहा और टूट गया, वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता है। सो महिलाओं के लिए यानी कि खास बात क्या है, जो आजकल की हमारी प्यारी विमेन है उनके लिए खास बात क्या है, और आज की ये बात खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो घर में सबकी जरूरत समझती हैं, सबके खाने का ध्यान रखती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं, पति का ध्यान रखती हैं, सास ससुर का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो कहती हैं मेरे लिए क्या। याद रखिए, आप घर की जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, आपकी अपनी पसंद है, आपका अपना समय है, आपके अपने सपने हैं, घर वालों की देखभाल कीजिए, लेकिन खुद की देखभाल भी उतनी जरूरी है। अक्सर महिलाएं इस चीज को अवॉइड करती है, उनको अगर थोड़ी तबीयत भी खराब होती है ना तो बस एक ही बात कहती है, यार ठीक है दवाई लेके ठीक हो जाएगा, क्या ही जरूरत है, वो दवाई लेके तो दो एक दिन के लिए ठीक भी हो जाता, फिर से उनके साथ यही होता है। तो मुझे लगता है कि खुद के लिए कदम बढ़ाइए, आप अगर आप स्वस्थ रहेंगी ना तभी आप परिवार वालों को भी खुश रख पाएंगी, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगी तो परिवार वालों को आप खुश नहीं रख पाएंगी। और जब आपकी लग रहा है कि आपको आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो बोल दो कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, थोड़ी देर बात कर लेंगे, क्योंकि हर समय हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना जरूरी नहीं है। आप जितना अच्छा बन के दिखाएंगे आपसे उतना ही काम कराया जाएगा और आप उतने ही बेवकूफ बनते जाएंगे, इसीलिए थोड़ा दिमाग से काम करिए। देखिए हर किसी के साथ काम करिए, लेकिन थोड़ा खुद के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी। तो देखिए यहाँ पर अब मैं बच्चों के बारे में भी बात करने वाली हूँ। बच्चों को भी ना कहना सिखाइए, क्योंकि अक्सर माँ बाप यही सिखाते हैं हमें कि हर किसी के साथ रहो, हर किसी की बात मानो, जो भी तुम्हें कोई कहे मतलब जो तुमसे बड़ा है उनकी बातों का सम्मान करें, लेकिन मुझे लगता है कि उनको कभी कभी ना कहना भी सिखाना पड़ेगा। अगर आप उनको ना कहना नहीं सिखाते हैं तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी भूल करते हैं। हम बच्चों को अक्सर कहते हैं बड़ों की बात मानो, लेकिन हमें उन्हें ये भी सिखाना चाहिए कि अगर कोई उन्हें ऐसी बात के लिए मजबूर करे जिसे वो असहज महसूस करे तो वो साफ शब्दों में ना कह सके और किसी भरोसेमंद बड़े को बता सके। ना कहना सिर्फ व्यक्तित्व की बात नहीं, कई बार ये अपनी सुरक्षा सम्मान की बात भी होती है। इसीलिए बच्चों को सिर्फ अच्छा बच्चा बनो मत सिखाइए, ये भी सिखाइए अपनी बात कहना भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर जब हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि हाँ बोलो हाँ बोलो, तो कभी कभी एक ऐसा अनजान व्यक्ति भी सामने आ जाता है जिसको नहीं जानता है बच्चा, और फिर भी वो बोलता है कि मैं तुम्हें चिप्स देता हूँ, कुरकुरे देता हूँ, वो ले लेता है और हमें नहीं पता उसमें क्या मिलावट है क्या नहीं मिलावट है, और बच्चे के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि वो रास्ते में अकेले भी आते हैं। तो ऐसी जगह पर यानी कि बच्चों को ना कहना भी सिखाना चाहिए कि जो अनजान व्यक्ति है जिसको नहीं जानते हैं उनको आप ना बोलो, अगर उनके साथ भी अगर आप बोलते हो तो आजकल आप सभी को पता है कि कितना स्कैम चला हुआ है, है, बच्चे के साथ भी धोखाधड़ी होती है, तो बच्चों को ना कहना सिखाइए और उन्हें ये भी सिखाइए कि जो अब आपके साथ अनजान व्यक्ति आता है तो उसे कम बात करें। और साथ ही साथ कोई अजनबी व्यक्ति आपके बच्चों को खाने के लिए कुछ दे रहा है और उसे कह रहा है कि बेटा चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, वैन में छोड़ देता हूँ, तुम पैदल चल रहे हो धूप में ना, तो वहाँ पर बच्चों को सिखाइए कि वहाँ पर आपको ना बोलें। और सबसे बड़ी बात, बच्चे बाहर जाते हैं और बच्चे लालच में भी आ जाते हैं, बच्चे होते हैं दिल के सच्चे, वो उनको लालच मिल जाता है कि चलो मैं तुम्हें चिप्स देता हूँ, कुरकुरे देता हूँ, तो ले लो और खा लो और मेरे साथ चलो, तो बच्चे चल भी देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को सावधान करिए, जो घर वाले दे रहे वो खाओ, लेकिन जब आपको बाहर दिया जा रहा है तो मत खाओ। और कोई भी कहता है कि दो कदम पर मेरे साथ चलो तो वो भी आपको ना कहना है, वहाँ पर बच्चों को सिखाइए, ये बच्चों को सिखाने के लिए बहुत जरूरी।
1: क्या बात है दीना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि अगर कोई भी बच्चा बाहर जा रहा है, कोई अजनबी पर्सन उनको मिल रहा है, तो उनसे कोई चीज ना लें और उनके साथ कहीं भी ना जाएं, क्योंकि बच्चों को सुनना बहुत जरूरी होता है, बच्चे बड़े मासूम होते हैं। और बच्चों को ना ये भी बताइए आप अपना मोबाइल नंबर एंड अपने घर का एड्रेस, पूरा डिटेल्स में पेरेंट्स का नाम, ये सारी चीजें बच्चों को याद करवाइए, ताकि बच्चा कभी ऐसे सिचुएशन में अगर फंस जाए, कभी ऐसी कंडीशन, मैं तो कहूँ कि ना आए, लेकिन कभी ऐसा हो तो बच्चों को अगर सारी चीजें याद रहे तो वो अपनी फैमिली को कॉन्टेक्ट कर सकता है एंड अपने सही अपने डायरेक्शन पर वो पहुंच सकता है।
0: और साथ ही साथ बच्चों को ये भी सिखाइए बैड टच और गुड टच।
1: हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत मोस्ट था, क्योंकि चलो हमने बहुत सारे बच्चों के ऊपर बातें की है और अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम थोड़ा सा ना फन भी करने वाले हैं, थोड़ी सी मस्ती भी करने वाले हैं, थोड़ा फन एक्टिविटीज हो जाए ना एवरीवन। तो चलो रीना, मैं तुम्हारे साथ एक मजेदार गेम खेलती हूँ, ठीक है? चलो रीना, हमने एक मजेदार गेम खेलते हैं, ठीक है? तो मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन दूंगी जिसमें आपको हाँ या ना में जवाब देना है,
0: ठीक है?
1: और वो भी प्यार से, ठीक है? तो पहला सवाल मेरा ये है, आप बहुत थकी हुई हो और दोस्त आपसे कहें कि चलो आज पार्टी करते हैं, तो आप हाँ कहेंगी या ना?
0: अगर वो मेरे खास होंगे तो हाँ, अदरवाइज ना।
1: चलो दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पास पहले से ही बहुत काम है और कोई अपना आपको भी अपना काम दे दे, तो आप हाँ कहेंगी या ना?
0: ना।
1: चलो तीसरा सवाल, कोई आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहा लेकिन आप सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए चुपचाप हैं, क्या यहाँ हमेशा हाँ सोचेंगी या आपने जवाब ना? ओके, इन्होंने सवाल से पहले ही जवाब दे दिया।
0: तुम क्या कहना चाह रही हो?
1: ठीक है,
0: आगे पूछो।
1: अरे वाह, क्या बात है, रीना तो हर सवाल का राइट आंसर दे दिया है और ये तो हमारे आज महिला मंच की बन गई है क्वीन, तो उनके लिए जोरदार तालियां। वैसे बड़ी खुशी होती है ना जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है।
0: हाँ।
1: ना कैसे कहें ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है दोस्तों? अब सबसे जरूरी बात, अगर ना कहना है तो कैसे कहें, क्योंकि ना कहने का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को अपमानित करें, आप प्यार से कह सकते हैं मुझे माफ कीजिएगा, मैं अभी ये नहीं कर पाऊंगी, या मैं आपकी बात समझ रही हूँ लेकिन इस बार मेरे लिए संभव नहीं है।
0: मतलब वही बात है ना, मुस्कुरा कर कहनी है, गुस्से में नहीं कहनी।
1: हाँ, सिचुएशंस, और अभी मुझे थोड़ा अपने लिए समय चाहिए बस। तो चलिए एवरीवन, मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड में नई बातों के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा हमें जाने की अनुमति। बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सभी अपना ख्याल रखिए।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी, लेकर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट शो हेलो फरमाइश, जहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं फोन कॉल के माध्यम से। और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं मंडे टू सैटरडे, लेकिन हाँ, कॉल सिर्फ एक ही बार लगा सकते हैं आप हफ्ते में, ताकि नए लिसनर्स को भी मौका मिल जाए और वो भी इजीली अपना कॉल लगा पाए। तो हमें सभी की खुशियों में खुश होना चाहिए ना एवरीवन। चलो अभी बात करते हैं अपनी फर्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हेलो,
1: नमस्ते दीदी।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्ते। क्या नाम है आपका?
1: लतीफ अहमद रेना, कश्मीर से।
0: कश्मीर से बात कर रहे हैं, बताइएगा सर कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा।
0: हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ, बताइएगा कश्मीर का मौसम कैसा है सर?
1: बस सुहाना ही है, कभी बारिश कभी धूप ऐसा चलता रहता है।
0: अच्छा, तो आज का मौसम कैसा है, मतलब बारिश है या धूप है?
1: उतना धूप भी नहीं है, थोड़ा मौसम क्लाउड है अभी।
0: अच्छा अच्छा, मतलब बादल भी है और धूप भी आ जाती है ना,
1: ऐसा मौसम है।
0: जी बताएगा आज आप क्या सुनना चाहेंगे सर?
1: फिल्म का नाम है दिलवाली।
0: हाँ जी।
1: कितना चेहरा कितनी प्यारी आँखें,
0: कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आँखें, राइट? तो सुनवा देते हैं आपको ये प्यारा सा ट्रैक। थैंक यू कॉल करने के लिए सर। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं फ्रॉम द मूवी दिलवाले से ये प्यारा सा ट्रैक, और आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और बाहर का मौसम काफी धूप है, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, ख्याल रखो अपना अच्छे से। और सुनिए गए खूबसूरत सा गीत, बस मैं वापस आती हूँ इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी। और अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा ट्रैक, कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी बातें। और ऐसी ही खूबसूरत बातों के साथ जारी है आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कहते हैं ना कि कुछ गाने सिर्फ गाने सुने नहीं जाते हैं बल्कि महसूस किए जाते हैं, और ये गाने भी शायद आपके दिलों को छू गया होगा ना ये वाला ट्रैक, राइट। और आप भी अगर अपना ये पसंद का कोई भी ट्रैक सुनना चाहते हैं ना, तो आप मुझे कॉल लगा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मैम फायदा नाम है हमारा।
0: जी बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: इमाम लाल मस्जिद से बात कर रहे हैं।
0: जी बताइए फायजा, क्या सुनना है आज आपको?
1: हमें लाल परी सॉन्ग नहीं, हमें कायनात सॉन्ग सुनना है।
0: कायनात
1: जी।
0: ये कौन सी फिल्म का गाना है?
1: ये तो नहीं पता मैम।
0: गाना कैसे पता है फिर बताओ हमें।
1: मैम ये तो सुना है हमने गाना, लेकिन फिल्म नहीं देखी।
0: ओके, चलिए सुनवा देते हैं आपको ये गाना। कुछ कहना चाहती हैं आप? हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ बताइएगा, क्या करते हो आप?
1: मैम हम ट्यूशन जाने वाले हैं, देखेंगे।
0: अच्छा, ट्यूशन जाने की तैयारी कर रहे हो। ओके, चलो अच्छे से स्टडी करो और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा ट्रैक, ठीक है?
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए फायजा की पसंद पर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा दोस्तों। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही प्यारे गीतों को सुनने के लिए मुझे कॉल लगाते रहिएगा। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी आवारा अंगारा से फहीम अब्दुल्ला जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप भी कोई अपनी पसंद का ट्रैक सुनना चाहते हैं ना, तो हमें बिना किसी देरी के कॉल लगा सकते हैं एंड बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो, फरमाइश। हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका? अपने पीछे बैकग्राउंड में जो इतना शोर हो रहा है, प्लीज उसको थोड़ा कम करूं। ओके,
1: आप बताओ।
0: जी बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं
1: आप?
0: सॉरी, कहाँ से बात कर रहे हो? ओके, बताइएगा अभी कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो आप? सेवन्थ क्लास में पढ़ाई करते हो? अरे वाह, वेरी गुड। और एफएम मुरादाबाद आप कब से सुन रहे हो?
1: दो तीन साल हो गए।
0: अच्छा, 2-3
1: इयर्स।
0: ओके, स्टार्टिंग से आप सुन रहे हैं। बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप? हवाओं ने क्या कहा, बताओ हमें।
1: कौन सा गाना है? हवाओं ने।
0: ओके, चलो ठीक है, सुनवाते हैं गाना आपको।
1: लो, एक मिनट आवाज सुनो।
2: हेलो,
0: हाँ जी।
2: हवाओं ने कहा, हर प्यार की रुत बड़ी कहानी।
0: ओके ठीक है, सुनवा देते हैं गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन, सुन लेते हैं ये खूबसूरत ट्रैक, उसके बाद लौट कर आएंगे। और आप भी मुझे बिना किसी देरी के जल्दी से कॉल लगाइएगा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गाने एंजॉय करते रहिए।
3: नहीं मरना गवारा प्यार में तुमसे।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
6: कोई मिल गया,
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और देखिए, मैं आपको समय भी बता देती हूँ। यहाँ पर वक्त हुआ है 3:35, और आप भी कोई अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं तो हमें फटाफट से कॉल कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है, क्या उनका नाम है, वो हम उन्हीं से जानते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हाय दी।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मैं दरक्षा फातिमा बात कर रही हूँ। मैम कैसी हो आप?
0: मैं ठीक हूँ दरक्षा, आप बताइएगा आप कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, थोड़ी सी खांसी जुकाम हो रही है बस।
0: अच्छा, वो मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
1: हाँ।
0: और बताइएगा फैमिली में सब ठीक है आपके यहाँ?
1: हाँ मैम सब ठीक है। और आप बताएं आपकी फैमिली में सब ठीक है?
0: हाँ जी हाँ जी, सब बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा आज क्या सुनना चाहेंगी आप?
1: आज मैम मैं एक सॉन्ग सुनना चाहती हूँ
0: जी।
1: चलो आमद की आ गए सर का।
0: ओके, और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत आपको
1: जी। मैम मेरी दोस्त है।
0: हाँ बताइएगा।
1: मेरी दोस्त है रुकैया फातिमा, उसी के लिए डेडिकेट है। और अफरोज फातिमा, लाइव अकाजमी और आप सभी।
0: ठीक है, सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। शुक्रिया कॉल करने के लिए। बाय बाय, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुन लेते हैं ट्रैक, उसके बाद लौट कर आएंगे हम। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। मोबाइल नंबर मैं अगेन आपको बता देती हूँ 9837896896, 9838 96 98 300 98 896। जल्दी से कॉल लगाइएगा।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: दोस्तों नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है और जुबिन नौटियाल जी की आवाज में सुना आपने ये खूबसूरत सा ट्रैक। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? कहाँ से बात कर रहे हैं
1: आप?
0: जी बताइएगा सर, क्या करते हैं आप?
1: हम सैंडल्स का काम करते हैं।
0: ओके, वेरी नाइस। बताइएगा सर, आज क्या सुनना चाहते हैं आप? ओके,
1: और इसमें हमारी वाइफ है खुशी, वो उनका पसंदीदा सॉन्ग है ये। हमारे परविंदर जैवी है और प्रियांशु मंजीत चौधरी, रोहित चौधरी, ये सभी की फरमाइश है।
0: ठीक है सर, आपकी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ सुनवाते हैं गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए। तो चलिए अभी फ्रेंड्स सुन लेते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक, क्योंकि सावन का

वैद्यनाथ भंडारी तेरी महिमा है जारी सबकी नैया तूने तारी तुझे माने दुनिया सारी बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले ब

0: दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने सुना है प्यारा सा शिव भजन फ्रॉम द मूवी शिव महिमा से, और इस खूबसूरत गीत को गाया था हरिहरन जी ने। और बात करें अगर अपनी मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद में भी कांवड़ियों का बहुत ज्यादा रश है। एंड हर जगह वो पॉजिटिविटी, वो वातावरण बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है, क्योंकि सावन का लास्ट मंडे है जो आने वाला है अभी। और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार,
0: नाम बताइए अपना सर।
1: मेरा नाम अनिल है।
0: अनिल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी बताइएगा अनिल जी, क्या फरमाइश है आपकी? जी बताइएगा, कौन से गीत सुनेंगी सर आप?
1: अपनी पसंद का सुनवा दीजिए, कोई भी गीत बढ़िया सा।
0: अच्छा ठीक है, सुनवा देते हैं हम अपनी पसंद से एक प्यारा सा गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू मैडम,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद लौट कर आते हैं और फिर करेंगे आपसे भी गुफ्तगू। बहुत ही प्यारा सा गाना हम प्ले कर रहे हैं फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुम से।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर. शो का नाम है हेलो फरमाइश और मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी. तो चलिए दोस्तों, अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गाना और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से. हेलो फरमाइश.
1: हेलो फरमाइश.
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: नीरज कुमार.
0: नीरज कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हरथला मुरादाबाद से बात कर रहे हैं जी. बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी सर. हाँ जी, दोस्ती इम्तिहान लेती है. ओके, चलिए सुनवा देते हैं गाना आपको
1: सभी के साथ.
0: ठीक है सर, सभी के साथ सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गाना. थैंक यू कॉल करने के लिए. तो चलिए ये प्यारा सा गाना सुन लेते हैं नीरज कुमार जी की पसंद पर. और सच में ऐसा होता है, दोस्ती जो होती है ना वो इम्तिहान तो लेती है. एंड अभी आते हैं बस वापस. आप कहीं मचाइए, कॉल लगाते रहिएगा.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये प्यारा से गाना फ्रॉम द मूवी नसीब, जो 1981 में आई थी। और ये खूबसूरत गीत को गाया था कमलेश अवस्थी ने एंड साथ में सुमन कल्याणपुरी जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब? हाँ जी बताइएगा, क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: मैं गाना सुनना चाहता हूँ।

ओके, ये गाना आप सुनना चाहते हैं? ठीक है, सुनवाते हैं आपको। जी सर, सुनवाते हैं आपको ये गाना। आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद आपका। और दोस्तों, सुनते हैं राजा और रंक मूवी का ये प्यारा सा गाना, लता मंगेशकर जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। और ममा की अगर बात करें, जैसे भी आपने ये गाना सुना, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है। तो ममा जो है ना, वो बहुत प्यारी होती है। मतलब उनकी डांट में भी ना प्यार छुपा होता है। अगर वो बच्चे को डांट भी देती है ना, तो बाद में तकलीफ उन्हीं को होती है, फिर वो अफसोस करती है कि ओहो मैंने क्यों डांट दिया बच्चों को। बहुत ज्यादा प्यार करती है ममा एंड पापा। दुनिया में शायद कोई दूसरा इंसान हो सकता है जो इतना प्यार करे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मम्मा पापा बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जो निस्वार्थ प्यार करते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए होता है अपने बच्चों से, और हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स बच्चों के साथ होती हैं। तो चलो अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? जी बताइएगा अशोक जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपके परिवार सभी?
0: हाँ जी सर, सब बहुत अच्छे हैं, मौसम भी ठीक ठाक है। आप बताइए आपकी साइड कैसा मौसम है?
1: मौसम बारिश हो रही है, अभी बंद हो गई है, ठंडा मौसम हो गया, दो चार दिन से हो रही बारिश।
0: ओके, तो बताइएगा।
1: इधर बरगी डैम वगैरह भर गया, गेट खुल गए हैं बहुत से,
0: क्योंकि बारिश ज्यादा हुई है तो पानी ओवर हो गया है ना सर?
1: इधर बारिश नहीं है, ऊपर से आ जाता है ना, दूसरे जिलों से।
0: अच्छा अच्छा, ओके।
1: तो गेट खोलने पड़ते हैं, नहीं तो जबलपुर बह जाएगा।
0: अच्छा, तो बताइएगा शुभ जी, आज आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: सुना दीजिए फिल्म दो रास्ते का। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, काजल लगाया ये रात हो गई।
0: ओके, सुनवा देते हैं प्यारा सा गीत आपको शुभ जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद
0: जी, नमस्कार आपको भी। तो चलिए श्रोताओं, सुन लेते हैं ये खूबसूरत सा गीत, हम लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और हमें जल्दी से कॉल लगाइएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
0: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही

0: संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद कॉल 7055011681।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो स्वच्छता की जिद करो।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है अभी मुरादाबाद 89.6 पर। और ये प्यारा सा गाना अभी आपने सुना। हमारी कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार
1: जी। नमस्कार
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: राजू यादव, ग्राम उपरहता, श्रीरामपुर डेरा सरीला राट, मुस्कुरा हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
0: जी बताइएगा, क्या सुनना चाहेंगे सर आज आप?
1: गाना सुनना चाहते हैं
0: भाई। हाँ बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज आप?
1: आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, सावन की तरह बने।
0: ओके, ये गाना आपको सुनवा देते हैं। धन्यवाद सर कॉल करने के लिए। प्रणाम, आपको भी नमस्कार। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं फ्रॉम द मूवी राजा हिंदुस्तानी से खूबसूरत सा गीत, और आप भी मुझे कॉल लगाइएगा।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है और मेरे साथ एक लिसनर भी कनेक्ट हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम दरक्षा है, मैं अहमद से बोल रही हूँ।
0: जी दरक्षा जी, बताइएगा कैसी हैं आप? हेलो।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: ओके, हाउसवाइफ है। मैंने पूछा आपकी हालचाल कैसे है मैम?
1: जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सुनाइए।
0: जी हम भी बहुत ही अच्छी हैं दीक्षा जी, बताइएगा क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
1: तो है, तूने जिंदगी बदल दी।
0: ओके, बड़ा प्यारा सा गाना है, किन के लिए सुनना चाहती हैं आप?
1: अपने हस्बैंड के लिए।
0: ओके, तो सुनवा देते हैं ये गाना आपको। मैम कुछ कहना चाहती हैं आप?
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुन लेते हैं खूबसूरत सा गाना मैम की पसंद का, और इसी गाने के साथ मैं लेती हूँ आपसे जाने की अनुमति। एंड मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, यूं ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और अपना अच्छे से ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।
2: तुम सा कोई दूसरा इस समय पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, यानी बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी।
1: और आज की हमारी कहानी पहुंचती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस शहर में जिसने इतिहास में क्रांति की चिंगारी जलाई, खेल के मैदानों में देश का नाम रोशन किया और आज विकास की नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: जी हाँ, बात हो रही है मेरठ की।
1: मेरठ यानी 1857 की क्रांति की ऐतिहासिक धरती, देश के खेल सामान उद्योग की बड़ी पहचान और आज एक ऐसा शहर जहां परंपरा और आधुनिक विकास दोनों साथ साथ कदम बढ़ा रहे हैं।
0: बिल्कुल, और मेरठ की सबसे खूबसूरत बात क्या है जानती हो?
1: बताइए।
0: यहां विकास सिर्फ सड़कों, इमारतों और उद्योगों की कहानी नहीं है। विकास तब पूरा होता है जब सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे आम परिवार के जीवन में खुशियां लेकर आए।
1: और इसी सोच को केंद्र में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं समाज के अलग अलग वर्गों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकताओं में जन कल्याण और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ने पर जोर दिखाई देता है।
1: और इसी क्रम में सरकार की योजनाएं कोशिश कर रही हैं कि विकास का लाभ समाज के उन परिवारों तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
0: इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना।
1: सोचिए, एक परिवार के लिए बेटी का विवाह सिर्फ एक रस्म नहीं होता, वो वर्षों का सपना होता है, जिम्मेदारी होती है और कई बार आर्थिक चिंता भी।
0: ऐसे परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक सहारा बनकर सामने आती है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र जोड़ों का सामूहिक विवाह कराना और उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
1: योजना के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार पात्र जोड़े को सरकार की ओर से कुल 1,00,000 रुपए तक का प्रावधान है। इसमें 60,000 रुपए की आर्थिक सहायता, 25,000 रुपए की विवाह सामग्री और 15,000 रुपए का आयोजन संबंधी खर्च शामिल है।
0: यानी मदद सिर्फ चेक तक सीमित नहीं बल्कि बेटी के नए जीवन की शुरुआत को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश है।
1: और यही तो है जन कल्याण की असली तस्वीर, जब सरकारी योजना फाइलों से निकलकर किसी परिवार की मुस्कान बन जाए।
0: अब जरा सुनते हैं मेरठ की दो ऐसी युवतियों की आवाज़ जिनके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि उनके परिवार की खुशियों का हिस्सा बनी। हमारा एक खास कार्यक्रम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और इसमें लाभार्थियों की जो कहानियां हैं वो आपके बीच हम साझा करते हैं। मेरे साथ इस वक्त दो लाभार्थी यहां पर मौजूद हैं, एक का नाम है दीपांशी और दूसरी का नाम है छवि, और दोनों को लाभ मिला है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का, जो एक बहुत ही अच्छी योजना है। बहुत युवतियां, बहुत युवक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो सबसे पहले छवि और दीपांशी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: थैंक यू।
0: छवि, आप मुझे बताओ कि ये जो योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसके बारे में आपको कैसे पता चला?
2: हमारे गांव के पंचायत घर से हमें पता चला इसके बारे में, तो वहां से हमने जानकारी ली इस योजना के बारे में।
0: ओके, तो जब योजना के बारे में आपको पता चला तो आगे की प्रक्रिया कैसे की आपने, क्या किया फिर?
2: इसके लिए एक फॉर्म भरा जाता है जो जन सेवा केंद्र पे जाके हमने भरा है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो वो तैयार किए, फिर हमने जन सेवा केंद्र पे जाके ये फॉर्म भरवाया है।
0: तो जब आपका फॉर्म भरा गया था छवि, तो फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे आपके?
2: डॉक्यूमेंट तो आधार कार्ड और जी
3: बैंक की किताब लगी थी और पैन कार्ड की और फोटो लगे थे और राशन कार्ड की लगी थी।
0: अच्छा, कब हुई है आपकी शादी?
3: 27 जुलाई।
0: ओके, तो क्या क्या लाभ मिले हैं इस योजना से आपको?
3: सम्मान मिला है और पैसे आने खाते में।
0: क्या क्या सामान मिला है
3: उसमें? कम्बल है और मतलब 51 बर्तन है और उसमें तकिए हैं, गद्दे हैं और अटैची है, मतलब उसमें सारा सामान है।
0: और कितना कैश आएगा आपका?
3: 64,000
0: खाते में आएगा। छवि, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कौन सी डेट को आपकी शादी हुई?
2: 27 जुलाई को हुई थी हमारी शादी।
0: तो शादी के बाद क्या पॉजिटिव चेंज आए हैं आपकी जिंदगी में?
2: अच्छा लग रहा है, काफी चेंजेस आए हैं, तो सही चल रहा है, मतलब सब
0: लाइफ आसान हो गई है। हाँ। छवि, हमारे श्रोताओं को बताओ कि क्या क्या सुविधा आपको इस योजना के अंतर्गत मिली है?
2: तो हमें सामान मिला है, कुछ जरूरत की चीज मिली है और कैश मिला है।
0: कौन से गांव में आपकी शादी हुई है?
2: चंदसारा।
0: चंदसारा में। हस्बैंड ठीक है आपके?
2: हाँ ठीक है।
0: कोई दिक्कत कोई परेशानी
2: नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
0: तो इस तरह की जो स्कीम है यूपी गवर्नमेंट की, कितनी सहायक हो सकती है ये समाज के लिए,

0: या फिर उन वर्ग के लोगों के लिए जो थोड़े से गरीब वर्ग के लोग हैं।
1: हाँ, बहुत सहायक है ये। और लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, सभी सेवाओं का फायदा उठाना चाहिए जो चल रही हैं, जो गवर्नमेंट ने ये निकाली है।
2: छवि, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का फॉर्म भरने के बाद क्या प्रक्रिया हुई, आगे कैसे हुआ सब?
1: फॉर्म भरने के बाद फिर सबमिट कर दिया वो ब्लॉक में जाके, और उसके बाद फिर डेट मिली है हमको कि 27 तारीख को आपको वहाँ पे जाना है। कार्ड आया था उससे पता चला, फिर वहाँ पे गए हम लोग, फैमिली गई है हमारी और जो मेरे हस्बैंड उनकी फैमिली गई है, वहाँ पे जाके फिर हुआ है।
2: छवि, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी शानदार योजनाएं दे रहे हैं आप सभी लोगों को, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगी?
1: हाँ, वो ही मतलब अच्छा कर रहे हैं वो, योगी भी और मोदी जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो गरीब फैमिली है उनको काफी योजना निकाल रहे हैं, नई नई योजना आ रही है, तो अच्छा ऐसे चलता रहना चाहिए।
2: और भी बहुत सारी ऐसी युवतियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है बहुत वक्त से, या फिर पैसे की तंगी है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, उनको क्या संदेश आप देना चाहोगी?
1: उनको बस यही कि उनको जानना है इस चीज के बारे में, या नहीं पता होता बहुत से लोगों को कि क्या योजना आ रही है सरकार की तरफ से, तो बस उनको इस चीज का पता करना चाहिए प्रधान से या फिर किसी भी पंचायत घर में जाके इस चीज के बारे में पता करना चाहिए। ये तो हमारा अधिकार है, तो हमें नहीं डरना चाहिए इस चीज से, पूछना चाहिए सबसे।
2: छवि, आप क्या संदेश देना चाहोगी?
3: योगी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ।
4: आपने सुना, किसी भी योजना की सबसे बड़ी सफलता उसके आंकड़ों में नहीं बल्कि उन चेहरों की खुशी में दिखाई देती है जिन तक उसका लाभ पहुंचता है।
5: वैसे मेरठ की बात हो और खेलों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
4: बिल्कुल नहीं, मेरठ को देश की स्पोर्ट्स सिटी के रूप में पहचान मिली है। यहाँ क्रिकेट बैट, बॉल, हॉकी स्टिक, बैडमिंटन और दूसरे खेल उपकरणों का बड़ा उद्योग है।
5: और यही तो है उत्तर प्रदेश की खासियत, हर शहर की अपनी पहचान, अपनी क्षमता और अपनी कहानी।
4: सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP पहल के तहत मेरठ की पहचान स्पोर्ट्स प्रोडक्ट से जुड़ी है, जिससे स्थानीय उत्पादों और उनसे जुड़े कारोबार को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
5: यानी मेरठ के मैदानों में खिलाड़ी पसीना बहाते हैं और मेरठ की कार्यशालाओं में कारीगर अपने हुनर से खेलों का सामान तैयार करते हैं।
4: वाह, क्या बात कही आपने।
5: क्योंकि विकास वही है जहां हुनर को पहचान मिले, रोजगार के अवसर बढ़े और स्थानीय पहचान को नई उड़ान मिले।
4: और यही वजह है कि जब हम विकास का प्रदेश कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट से नहीं होता।
5: इसका मतलब है किसी बेटी के विवाह की चिंता कम होना, किसी कारीगर के हुनर को बाजार मिलना, किसी युवा को आगे का अवसर मिलना और किसी परिवार के चेहरे पर भरोसे की मुस्कान आना। दोस्तों, फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको मिलाएंगे मेरठ की CDO यानी कि मुख्य विकास अधिकारी, जो कि 2023 से मेरठ शहर में कार्यरत हैं। मैम एक IAS ऑफिसर हैं और मैम ने मेरठ की तरक्की को, यहाँ पर हो रही प्रगति को बहुत ही करीब से देखा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन के कारण और CDO मैम के नेतृत्व के कारण मेरठ लगातार आगे बढ़ रहा है। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका।
6: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
2: मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि मेरठ में चल रही हैं इस वक्त, जो मुख्य योजनाएं हैं?
6: इस वक्त मेरठ में बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मेरठ आई थिंक एशिया का एक इकलौता ऐसा, SRTS भी चल रही है और मेट्रो भी चल रही है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी मेरठ में ही आया और अभी गंगा एक्सप्रेसवे का भी हाल फिलहाल में ही इनॉग्रेशन हुआ। इसके साथ में बहुत सारे ऐसे रोड्स का जाल यहाँ मेरठ में बिछाया जा रहा है और जा चुका है, जिससे आज के टाइम पे कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो मेरठ इज आई थिंक नंबर वन व्हेन इट कम्स टू उत्तर प्रदेश ऑन द होल। साथ ही में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर स्कूल्स को मॉडल स्कूल्स बनाना, जहाँ पर हमारी सरकारी स्कूल्स में भी वही सारी फैसिलिटीज के लिए हम ट्राई कर रहे हैं जो सारी प्राइवेट स्कूल्स में दी जाती है बच्चों को, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ टीचिंग के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। इसके साथ में अगर हम किसानों की बात करें तो किसान सम्मान निधि और बहुत सी ऐसी अलग परियोजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है जहां उन्हें सब्सिडी दी जाती है, उन्हें फर्टिलाइजर्स उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है। अगर हम युवा की बात करें तो PMEGP एक बहुत अच्छी योजना सामने आई है जिसके अंदर उन्हें लोन दिया जाता है सब्सिडाइज रेट पे। इसके साथ ही हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ में आयुष्मान कार्ड एक ऐसा गोल्डन कार्ड है जो 5 लाख तक का फ्री उपचार मरीजों को उपलब्ध कराता है किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी। और मेरा मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो ऐसे पिलर्स हैं जिनके ऊपर ही एक मजबूत और विकसित प्रदेश की नींव रखी जा सकती है। और हमारे यहाँ पर आप किसी भी सेक्टर की बात कीजिए तो सभी में ही काम लगातार किया जाएगा।
2: जी मैम, एक योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, तो इस योजना के बारे में थोड़ा सा आप सभी को जानकारी दें मैम।
6: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बेसिकली ऐसे निर्धन परिवारों की बच्चियों की शादी कराई जाती है जिसे खुद सरकार कराती है। इसके अंदर हाल फिलहाल में अभी जो धनराशि दी जाती है उसे भी बढ़ाया गया है, उसे भी बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया गया है, जिसके अंदर सरकार ना सिर्फ उनको कुछ सामग्री देती है जैसे उन्हें ब्रीफ केस, गद्दा, चुनरी, कुछ साड़ियाँ, बेडशीट्स, कुकर, एक डिनर सेट, ये सब देती है। साथ ही साथ उनके खाते में भी डायरेक्ट पैसे दिए जाते हैं और इसके साथ में ही एक सामूहिक रूप में एक बहुत अच्छा वेडिंग हॉल तैयार किया जाता है जिसमें उन सभी को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि वो वहाँ पर आए, शादी करें और साथ ही में उनके परिवारजन, लड़कियों के परिवारजन और लड़कों के परिवारजन दोनों ही वहाँ आते हैं, विवाह संपन्न होता है और साथ ही में वहाँ पर उन सभी के लिए एक प्रीति भोज भी रखा जाता है जिसके अंदर ये एक धर्मनिरपेक्ष चीज़ है जहाँ पर दोनों ही हिंदू भी और मुस्लिम परिवार दोनों की ही शादियाँ करवाई जाती
2: है। जी मैम, क्योंकि आपको 3 साल हो चुके हैं मेरठ में आपके कार्यकाल को, तो आपके अनुसार मैम जो मेरठ के लोग हैं खासकर जो ग्रामीण लोग हैं किस प्रकार इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वो क्या आपके पास आते हैं वो बताने के लिए कि मुझे ये योजना मिली है और इससे मुझे फायदा हुआ है?
6: बिल्कुल, जब हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सीधा सीधा गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा मिला है। जब हम पेंशन की बात करें, चाहे हम कोई भी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, इन सभी का लाभ उन लोगों के द्वारा लिया जा रहा है। शिक्षा की बात करें तो आज हर एक गांव में एक बहुत अच्छा स्कूल स्थापित किया गया है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर हर एक गांव में बसाया गया है, वहाँ सर जो गांव की सड़कें हैं वो बहुत अच्छी हो गई है, हर एक गांव में आज एक पंचायत घर बनाया गया है, एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। और मैं खासकर ये बात बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ मेरठ में जो डिजिटल लाइब्रेरीज या जो पंचायत घर में लाइब्रेरी बनाई गई है उसमें आज के दिन में टोटल 1231 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, चाहे वो पुलिस भर्ती हो या फिर SSC CGL हो या फिर UPSC हो, इन सब में उत्तीर्ण हुए हैं, वो उन्होंने सफलता पाई है। तो मेरा मानना है कि ये जो सरकार की सारी स्कीम्स है, शासन की सारी परियोजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सरकार लोगों तक पहुंचाती है और हम सब लोगों का भी यही एक ट्राई हमारा रहता है, कोशिश रहती है कि हम सब उन सभी लोगों तक जा सके और उन सभी लोगों की मदद कर सके जो इनके इच्छुक है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर गांव में समूह की महिलाएं भी बहुत अच्छा काम कर रही है। एक हमारे यहाँ पर समूह की महिला है जो फूलों की खेती कर रही है खेरकौदा में, एक समूह की महिला है जो बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बना रही है, उसको अलग रेसन कोट करके वो जयपुर में अपना माल सप्लाई करती है। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दीदियाँ हैं जो आज लखपति दीदी बन गई
2: है
6: यहाँ मेरठ जनपद में। हमने ना सिर्फ इन सब बट आशा बहुओं का भी बहुत ध्यान रखने की कोशिश की। यहाँ पर DM सर के नेतृत्व में एक आशा पेकर के प्रोग्राम चलाया गया जिसके अंदर आज के दिन हमारी जो एक एवरेज आशा जो सैलरी पा रही है, जो एक पैसे पा रही है मंथली, वो लगभग 9,000 के लगभग पहुंच गए हैं, जिसके अंदर अभी हाल फिलहाल भी DM सर के द्वारा हमारे यहाँ पर 4 ऐसी आशाओं को सम्मानित भी किया गया था वॉशिंग मशीन देकर, जो सबसे ज्यादा पैसे पा रही थी। और मैं एक बहुत खुशी के साथ कह सकती हूँ कि वो चारों ही आशा 14,000 से 15,000 रुपए प्रति महीना वो कमा रही थी। तो ये सभी चीजें दर्शाती है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कैसे हम लोग एक अच्छी दिशा में आगे प्रगति कर रहे हैं।
2: जी मैम, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा जो गांव के लोग होते हैं, मैम बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, आपके ऑफिस में भी काफी लोग आते हैं, मैम सारी योजनाओं का तो सभी को नहीं पता होगा, तो लोगों तक योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए मैम विभाग की तरफ से मैम क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, क्या क्या कार्यक्रम किए जाते हैं?
6: हर एक सेक्टर अपना अलग अलग कार्यक्रम करता है और साथ ही में हमारे द्वारा भी एक कन्वर्जेंस भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि समय समय पर यहाँ पर ग्राम चौपालों का आयोजन किया जाता है जिसके अंदर पूरा पूरा प्रशासन उठ के वो गांव में जाता है और वहाँ सभी लोगों को सभी स्कीम्स के बारे में बताता है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, बहुत सारे पैम्फलेट्स बांटे जाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में उन्हें इन्वाइट किया जाता है। जैसे अगर मैं अगर कृषि की ही बात करूं तो कृषि में हमारे द्वारा ऐसी बहुत सारी चीजें की जाती है जहां पर यहां से साइंटिस्ट, जिले से साइंटिस्ट या हेडक्वार्टर से साइंटिस्ट उनके गांव में जाते हैं और उन्हें बताते हैं, और वाइस वर्सा भी, उन्हें भी बहुत बार ब्लॉक्स पे या फिर हेडक्वार्टर्स में बुलाया जाता है कि वो लोग यहाँ आके सीखे और जानकारी ले।
0: जी।
6: जैसे अगर मैं डीपीओ विभाग की बात करूँ तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलाई जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत, कन्या सुमंगला योजना जैसे हो गई जिसमें पहले लोगों को शिक्षित किया जाता है और फिर उनका लाभ उनके द्वारा लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे बैनर्स सोशल मीडिया सर का, डीएम सर का, कमिश्नर सर का और सूचना विभाग के द्वारा भी समय समय पर न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में, बैनर्स में बड़े बड़े ये चीज बहुत सारे लोगों तक बताई जाती है। और साथ ही में आपका रेडियो भी हमारी बहुत बहुत हेल्प करता है ये सब चीजें आम जनता तक पहुंचाने के लिए। तो मेरा मानना है कि जिस जिस प्लेटफॉर्म पर हम जैसे जैसे सोच सकते हैं हम लोग वैसे ट्राई करते हैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। जैसे कल ही एक कॉन्क्लेव हुआ जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाया गया जो कैटल फार्म चलाते हैं या जो पशुपालन से रिलेटेड है, तो ऐसे भी बहुत सारे कॉन्क्लेव यहाँ पर कराए जाते हैं।
0: जी मैम, क्योंकि हमारा जो एक कार्यक्रम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश जागरूकता के लिए है, लोगों तक हम योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, बेसिकली मेन पर्पस है अवेयरनेस, तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी मैम?
6: हाँ, मैं सभी लोगों से यहाँ पर आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूंगी कि आप सभी लोग जागृत रहिए। यहाँ पर आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी न्यूज भी फैलाई जा रही है जो भ्रामक है, जो सही नहीं है, तो एक बार प्लीज फैक्ट चेक कीजिए। कोई भी चीज़ जो आप सोशल मीडिया में पढ़ते हैं या अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे पढ़ते हैं वो सही नहीं भी हो सकती है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए, देश के हित के लिए काम कीजिए और आप खुद तरक्की कीजिए ताकि देश भी आपके साथ तरक्की करे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 2047 तक हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसके लिए हमें एक हमें अपने प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है और उसके लिए हम सभी को बहुत अच्छे से एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा के काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा देश वो हर बुलंदी पर पहुंचे जहां पर वो पहुंचने का हकदार।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार विकास और जन कल्याण को साथ लेकर आगे बढ़ने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है,
5: और इन प्रयासों की खासियत यही है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों की स्थानीय जरूरतों और उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विकास की नई संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया जा रहा है।
4: मेरठ इसकी एक खूबसूरत तस्वीर पेश करता है, एक तरफ इतिहास की विरासत, दूसरी तरफ खेल और उद्योग की ताकत और साथ में सामाजिक कल्याण की योजनाओं से जुड़ती नई उम्मीदें। मेरठ ने 1857 में बदलाव की एक चिंगारी देखी थी
5: और आज वही मेरठ नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में अपनी अलग पहचान बना रहा है।
4: मेरठ जहां खेल का हुनर है,
5: जहां उद्योग की ताकत है,
4: जहां इतिहास की विरासत है
5: और जहां जन कल्याण की योजनाओं से जुड़ती हैं उम्मीदें।
4: तो ये थी मेरठ से विकास की एक ऐसी कहानी
5: जिसमें आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है लोग, उनके सपने और उन सपनों को मिलती नई दिशा,
4: क्योंकि उत्तर प्रदेश बदल रहा है
5: और जब प्रदेश आगे बढ़ता है तो शहर की कहानी विकास की कहानी बन जाती है।
4: आप सुन रहे थे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आए हैं खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। We'll be right back.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
3: उत्तर प्रदेश में कावड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
2: कावड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
3: कावड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
2: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
4: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 5:31 हो चुके हैं और आज जरीन आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है इवनिंग मस्ती शो में, यानी कि 2 घंटे अब आप सभी के साथ रहने वाले हैं। और करेंगे क्या, अरे ढेर सारी बातें करने वाले श्रोताओं। देखिए, अपने मुरादाबाद की बात के साथ साथ लोकल भी बात करने वाले हैं, देश दुनिया में क्या चल रहा है वो भी बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ कांवड़ियों का जो रश है, यानी कि मुरादाबाद में भैया उनकी तैयारियों के लिए जगह जगह पर शिविर, और अभी से उनके लिए साफ सफाई, रास्ते बिल्कुल क्लीन कर दिए गए हैं ताकि उनको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना होए, उनके पैरों में कंकड़ ना लगे, इसके लिए सफाई वफाई हर चीज अच्छे से व्यवस्था उनके लिए कर दी गई है। फिलहाल मैं आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हूँ, ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं श्रोता, फिर कनेक्ट हूँ।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:40 हो चुके हैं, और अगर आप ऑन द वे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ना कि हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता मेरी जान, क्योंकि कावड़ियों की वजह से भैया आपको बहुत ज्यादा क्राउड और भीड़ मिलने वाला है सड़क पर, चाहे हाईवे की तरफ हो, और साथ ही साथ बड़े बड़े जो बस है वाहन है वो तो बंदी कर दिए गए हैं ताकि आप एंट्री ना ले सके, और जो कावड़ यात्रा आ रही है उन्हें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो आप अभी ऑन द वे हैं, जिस भी रूट पर हैं, और आपको लग रहा है कि भैया यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो कुछ नहीं करना है। हमारा सिंपल सा नंबर है 9837896896 पर आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं, ताकि और भी जो श्रोता है जो और अपने घर पहुंचने वाले उस रूट से थोड़ा बच सके और शॉर्ट रास्ता अपनाए और अपने घर जल्दी पहुंच जाए। तो उसके लिए आपने मैसेज करना पड़ेगा, और हेलमेट, सीट बेल्ट

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:51 हो चुके हैं और आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्टेड। श्रोताओं, समय की बात करूँ तो 5:51 है। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए श्रोताओं, आप घर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप ऑफिस से निकलते हो तो एक होता है कि भाई हर किसी को बाय बाय बोल के जाते हैं ना, ताकि बाय बोल के जाने का अलग ही मजा होता है। सबको हम बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, घर जा रहे हैं, कल मिलेंगे, सी यू सून, हम कल मिलने वाले आप सभी के साथ करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए और अपने अपने घर आराम से जाइए। मतलब ये एक दूसरे को बताकर जाना एक अलग ही मतलब अच्छा लगता है जब हम बता के घर जाते हैं। तो साथ ही साथ आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप देखिए, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ क्योंकि अभी कांवड़ियों का जो रश है बहुत ज्यादा है सड़कों पर, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकती हैं जिस भी रूट पर आप जा रहे हैं और बाहर ज्यादा ट्रैफिक जाम हो तो उसके लिए बेधड़क बिंदास होकर मैसेज करिए। नंबर है 9837896896 पर आप मैसेज करके बता सकते हैं श्रोताओं, ताकि जो भी यानी कि लॉन्ग सफर पे जा रहे हैं वो थोड़ा सा बच सके। और साथ ही साथ बात की जाए तो सिम के बारे में, इसके बारे में बात करूंगी कि आप एयरटेल, जियो और BSNL का सिम यूज करते हैं तो उनके रिचार्ज के बारे में। और बहुत तो हमारे मन में एक क्वेश्चन जरूर होता है कि अच्छा एयरटेल का मालिक कौन होगा, BSNL का मालिक कौन होगा। मतलब मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आते रहते हैं, मतलब जो भी कुछ मैं पढ़ती हूँ या जिस चीज के बारे में भी मैं बोलना चाहती हूँ, या मैं तो मेरे को लगता है कि मैं मतलब सर्च करने की कोशिश करती हूँ कि आखिरकार इसके पीछे कौन होगा, कौन है जो इतने जियो का मालिक है, एयरटेल का मालिक है, जो भैया हर महीने देखा जाए तो रिचार्ज महंगे कर देते हैं। क्या आपके मन में ऐसा सवाल आता है? अगर आता है तो अरे पूछा करो मुझसे, मैं हूँ आंसर देने के लिए। रीना बैठी है आप सभी के साथ। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि भैया मुरादाबाद में कई इलाकों में इस टाइम बारिश, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, बूंदाबांदी, तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इस इलाके में तो लाइन पार में तो भैया बारिश नहीं है, डेली बता दिया जाता है कि बारिश है, लेकिन कल 90% बारिश बताई जा रही है मुरादाबाद में। लेकिन वेदर 2 दिन से ना काफी अच्छी है, उमस वाली गर्मी वो ठीक है, लेकिन हवाएं भी चल रही हैं तो थोड़ी सी राहत तो है। तो चलिए श्रोता, एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद में कनेक्ट होंगी आप सभी के साथ और करूंगी ढेर सारी बातें। फिलहाल आपने, मैं देखिए एक बात कहती हूँ, रेडियो को से बिल्कुल नहीं घुमानी है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है। ऑल न्यू ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे।

0: तू समझ जाना यार। मत पूछ भाई दादा, इमोशनल हो जाऊंगा भाई, पिल्लो ला दे एक, मैं तो यहीं पे सो जाऊंगा।
1: आय हाय क्या बात है जी, कुछ गाने इतने शानदार होते हैं श्रोताओं, जिन्हें सुनकर मजा ही आ जाता है। और वैसे भी आप आरजू रीना के साथ कनेक्ट रहेंगे ना, तो ऑफिस से जो भी परेशानी लेकर आते हैं ना, घर पर जाते हैं, वो हो भाई साहब बहुत ज्यादा थक गए, तो आपकी थकान भी आराम से छू मंतर हो जाएगी जब आरजू रीना के साथ आप कनेक्ट। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए फिलहाल कुछ मैसेज है श्रोताओं, तो मैं आप सभी के साथ साझा करूंगी। यानी कि जैसे कि हमारे पास मैसेज आता है, रीना जी जैसा कि आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काट रोड पर और पूरी तरह से बंद है, यानी कि कॉस्मोस हॉस्पिटल से लेकर पीएससी तक बहुत भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, यानी कि 2 घंटे से अधिक समय लग सकता है अगर आप उस रूट पर जाएंगे भैया, यानी कि पीएससी की तरफ से आप जा रहे हैं, तो थोड़ा संभल कर जाइए। मतलब ये वो रूट है जहां पर हमेशा ट्रैफिक जाम तो लगी रहती है, लेकिन अभी फिलहाल कावड़ियों का क्रश है, तो इस टाइम तो आपको ट्रैफिक जाम तो वहां मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं आकाश चौधरी जी, कनेक्ट होते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विनम्र धन्यवाद कि आपने मैसेज करके बताया कि ट्रैफिक पीएससी के तरफ कॉस्मोस हॉस्पिटल के तरफ बहुत ज्यादा है, काट रोड की तरफ बहुत ज्यादा है, तो भैया थोड़ा सा संभल कर जाइए। और देखिए सबसे सिंपल बात है, जब भी आप गाड़ी में बैठते हैं लोकेशन डालिए, जब लोकेशन आपको दिख रही है कि ग्रीन पट्टियां आपको दिखती है लोकेशन के टाइम जब आप डालते हैं, और उसी लोकेशन पर यानी कि ग्रीन पट्टियों के आगे चलते चलते आपको रेड दिखेगा, मतलब जहां पर ट्रैफिक ज्यादा जाम ज्यादा होता है वहां उसी रूट में आपको रेड दिखने लग जाता है, तब समझ जाइए कि उस रूट पर जिस रूट पर आप जा रहे हैं ट्रैफिक आपको मिलने वाला है, काफी देर तक मिलने वाला है। तो बस इतना सा सर्च जरूर कर लीजिए जब आप निकलते हैं घर से, ताकि आप पहले ही सतर्क हो जाए और दूसरा रूट अपना ले। चलिए फिलहाल और अगले मैसेज की बात करूं, तो अंसार हुसैन जी दौलतबाग मुरादाबाद से कनेक्ट हो गए हैं। रीना मैम आपने यानी कि आपका प्रोग्राम बहुत ही मजेदार का है, अच्छी जानकारियां लेकर आती है, धमाकेदार एंट्री और धमाकेदार गाने, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि मैं आप सभी के लिए, सर मेरा काम ही है आप सभी तक अपडेट पहुंचाना एंटरटेनमेंट के साथ, यानी कि गानों के साथ साथ बातें भी ऐसी होनी चाहिए जो आपको सुनकर कभी बोर ना फील हो, और अपडेट मिलती रहनी चाहिए देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ताकि आपको पता चले। और बहुत से घरों में भैया सच बताऊं तो अखबार नहीं आते, मेरे घर में भी पहले अखबार नहीं आते थे, तो एक रेडियो के माध्यम से ही हमें जानकारियां मिलती थी। और बहुत से बड़े बुजुर्ग हैं जो अखबार नहीं पढ़ते हैं, उनको यहीं से मिल जाता है न्यूज़, तो बिल्कुल कनेक्ट रही, हमारा तो फर्ज है आप सभी तक न्यूज़ पहुंचाने जानकारियां पहुंचाने, ताकि आप सतर्क रहे और आपको देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में पता चले। फिलहाल तो हम न्यूज़ सुनेंगे, उसके बाद एक बनारस की बदलती तस्वीर के बारे में कुछ कहानियां हैं उसको प्रस्तुत किया जाएगा आप सभी के बीच, फिर मैं कनेक्ट होंगी और करूंगी क्या, अरे ढेर सारी बातें सर आप भी ना। चलिए फिलहाल म्यूजिक यानी कि न्यूज का टाइम है, उस सुनते हैं, उसके बाद मैं कनेक्ट होती हूँ, ठीक है जी, कहीं नहीं जाना अपने।
2: उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक के दौरान स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने दोहराया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले 2 जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सचिव ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीमा सुरक्षा को लेकर पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
3: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, सूचना और संचार, विनिर्माण, औषधि डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर करीबी नजर रखने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। श्री नड्डा ने कहा कि ये विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्सटरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM।
5: आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी नई

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी।
1: और आज हमारी कहानी पहुंची है उस शहर में जिसकी सुबह गंगा की लहरों से होती है, जिसकी गलियों में सदियों की संस्कृति बसती है और जिसकी पहचान सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में है।
0: जी हाँ, आज बात होगी काशी की, हमारे बनारस की, हमारे वाराणसी की।
1: एक ऐसा शहर जहाँ परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती

0: दिखाई देती है। एक तरफ गंगा के घाट, मंदिरों की घंटियाँ और बनारसी संस्कृति की मिठास,
1: तो दूसरी तरफ सड़क, बिजली, आवास, रोजगार और जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से बदलती हुई तस्वीर।
0: क्योंकि विकास सिर्फ बड़े शहरों की ऊंची इमारतों का नाम नहीं,
1: विकास तब मायने रखता है जब उसकी रोशनी गांव के उस घर तक पहुंचे जहां एक माँ अपने बच्चे को बेहतर भविष्य के लिए दिन रात संघर्ष करती है।
0: और ऐसी ही एक कहानी है वाराणसी के छितौना गांव की।
1: छितौना की रहने वाली जड़ावती देवी, एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली जड़ावती देवी ने जिंदगी में मुश्किलें तो बहुत देखी, लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ।
0: सीमित साधन, घर की जिम्मेदारियां और बच्चों की पढ़ाई का सपना, जड़ावती देवी ने संघर्ष किया, मेहनत की और अपने बच्चों को पढ़ाने की पूरी कोशिश की।
1: क्योंकि माँ के लिए बच्चों की पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, वो उसके सपनों की वो सीढ़ी होती है जिस पर चढ़कर उसके बच्चे उससे बेहतर जिंदगी जी सके।
0: और आज जब सरकार की योजनाओं का लाभ ऐसी जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचता है तो उनके संघर्ष में एक नया सहारा जुड़ता है।
1: जड़ावती देवी को आवास की सुविधा मिली, परिवार को राशन कार्ड की सुविधा मिली और मनरेगा का जॉब कार्ड भी मिला।
0: यानी कि सिर पर छत का सहारा, परिवार के लिए खाद्यान्न सुरक्षा का सहारा और रोजगार के अवसर से जुड़ने का एक माध्यम।
1: किसी बड़े शहर में बैठकर ये सुविधाएं शायद सिर्फ योजनाओं के नाम लगे,
0: लेकिन जड़ावती देवी जैसे परिवार के लिए यही सुविधाएं जिंदगी की मुश्किल राह को थोड़ा आसान बनाने वाली उम्मीद बनती है। दोस्तों, गांव की मिट्टी की खुशबू अलग ही होती है, पर फिलहाल आज हम गांव की मिट्टी की बात नहीं करने आए हैं, आज हम बात करने आए हैं विकास की। प्रदेश भर में जो विकास की लहर चल रही है उसकी छवि जो है बनारस में भी देखने को मिल रही है। बनारस और इससे संबंधित जो भी गांव है यहां पर भी विकास की जो छटा है वो बहुत अच्छे से छा रही है। और दोस्तों, विकास से जुड़ी बातें करने के लिए हम आपके साथ विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश में तो जुड़ते ही हैं, और उसी कड़ी में आज हम आ चुके हैं वाराणसी के एक गांव में एक लाभार्थी से बात करने। इन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए।
2: हमारा नाम जड़ावती देवी है।
0: घर में कौन कौन है आपके?
2: हमारा बस माई है ना, एक लड़का बस, और हम हैं, तीन लोग बस हैं।
0: और क्या करती हैं आप?
2: बस खाना बनाते हैं, सरकारी काम मिला है, बस वही।
0: और बेटा क्या करता है?
2: अभी कुछ नहीं।
0: तो जड़ावती जी, जो सरकार की विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं, उन परियोजनाओं में से आपको किन किन परियोजनाओं का लाभ मिला है?
2: बस शौचालय, आवास, हाँ, आयुष्मान कार्ड बस बना है।
0: तो आपको, जैसे कि आपका घर नहीं था पहले, तो अब
2: पहले मड़ई था, इस पर ये जो बना है इस पर मड़ई था, अब उधर भी एक था, बस यही था
0: पहले, कच्चा घर।
2: हाँ, एकदम।
0: तो अब आवास के तहत जो आपको लाभ मिला है उससे अभी क्या क्या चीजें बनी है आपके घर में?
2: पहले बहुत दिक्कत हुआ था, बस छत ढला है, आरियारी ढला है, अभी अब जाके जब आवास मिला है तब तो ठीक थे, सब कुछ आरियारी दीवार हो गया है, छत भी बन गया है और सब बाकी है अभी करने के लिए।
0: पहले आप कच्चे घर में रहती थी।
2: हाँ।
0: तो अब क्या है कि अब आपके पास पक्का मकान हो गया है, टीन शेड लग गया है।
2: हाँ।
0: और जैसे कि आपने बकरी भी पाली है तो बकरी को भी रखने में उसमें आपको आसानी होती है।
2: हाँ।
0: और ये बताइए जड़ावती जी कि जैसे अब शौचालय बन गया है आपके यहाँ, तो शौचालय बनने से क्या फायदा है?
2: बहुत फायदा है, उतरे खुले में जाना पड़ता है, हमारी माँ को ज्यादा दिक्कत होती है।
0: बिल्कुल। और शौचालय बनने से क्या होता है कि शौचालय जो है किसी भी औरत के सम्मान या हाँ। उनकी मर्यादा से भी संबंधित हाँ। उसको हम देखते हैं समाज में, लोग जो है खुले में शौच में जाते थे, तो उससे क्या है कि कई सारी बीमारियों का भी खतरा रहता था, बीमारियों का भी खतरा रहता था, या वृद्ध जन है आपके घर में, एजेड है आपकी जो माता जी है, तो उनको भी अब सुविधा रहती है और आपको भी सुविधा रहती है।
2: पहले हम मड़ई में रहते थे, आवास मिल गया है, अब मकान बन गया है, शौचालय है, राशन कार्ड भी है, मोदी को और योगी को हमारा धन्यवाद।
1: आपने सुना, ये सिर्फ एक लाभार्थी की आवाज़ नहीं है,
0: ये उस माँ की आवाज़ है जिसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष किया और अब सरकारी योजनाओं के जरिए अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
1: लेकिन किसी योजना का लाभ जब गांव के परिवारों तक पहुंचता है तो उसके पीछे स्थानीय स्तर पर भी कई लोगों की भूमिका होती है।
0: तो आइए जानते हैं चितौना गाँव में विकास और सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का क्या कहना है। दोस्तों, असली विकास वो होता है जो सबको लेके चले, यानी कि समावेश करके चले। और वाराणसी में भी जो विकास की लहर है पूरे उत्तर प्रदेश की, वो दिखाई दे रही है। और इसी लहर के चलते आज हम आ पहुंचे हैं वाराणसी के छितौना गांव में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास शख्स से जो कि इस गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं। तो चलिए अपनी बातचीत को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि यहां पर क्या क्या कार्य हुए हैं विकास से संबंधित। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं, आप अपना नाम बताइए।
3: आलोक यादव।
0: आलोक जी, इस ग्राम में जो है कई तरीके के विकास परियोजनाओं पे काम हो रहा होगा, तो अभी फिलहाल में कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं और किस प्रकार से जो है उसका लाभ लोगों को दिया जा रहा है?
3: कच्चे रोडों को बनवाया जा रहा है, जो पहले से बने हुए रोड है उन पे कंक्रीट डाला जा रहा है, खड़पे लगाए जा रहे हैं और डमरू लगाया जा रहा है, और जहाँ जहाँ पानी लग रहा है उसका निस्तारण के लिए नालियाँ लगाई जा रही हैं, और जो इनके पास घर नहीं उनके लिए मुख्यमंत्री आवास, विधवा और विकलांगों के लिए ऑलरेडी मिल चुका है 12-13 लोगों को मेरे गांव में, और कुछ लोगों का जो अभी लिस्ट में नाम गया है, जीरो प्रॉपर्टी वालों का भी गया है जिनके पास एकदम ही कुछ नहीं है।
0: यदि कोई आवास के लिए अप्लाई करना चाहता है तो किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं या क्या उसका प्रोसेस होता है?
3: उसमें जैसे कि वो पात्र होना चाहिए, उसके पास 6 फीट से ऊपर पक्की दीवार नहीं होनी चाहिए, प्लस झोपड़ी टाइप रहना चाहिए, ये न कि वो झोपड़ी बनाकर दिखाए, झोपड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि 2-3 बार उसकी जियो टैगिंग होती है, वहाँ से अधिकारी आते हैं जांच करते हैं तब उनको लाभार्थी को लाभ दिया जाता है।
0: कोई तरीके की ऐसे आपको समस्या भी देखने को मिलती है कि लोगों को अलॉट करने में या इस प्रोसेस में कोई तरीके की समस्या जो लोगों को आ रही हो या आपको आ रही हो अपने लेवल पर?
3: जैसे क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग दूसरे के घरों में रहते हैं और वो पक्का होता है, और तो उनसे ये मांगा जाता है कि आप जिसके मकान में रह रहे हैं या फिर आप अपने भाई के ही मकान में रह रहे हैं तो उनसे लिखित ले लें एक स्टाम्प पे कि वो मेरा घर है, मैं इनको भाड़े पे या उनके रहने के लिए दिया हूँ, तब मैं अलॉट कर पाता हूँ, इसी वजह से उनको नहीं मिल पाता है।
0: मतलब कि दस्तावेजों से संबंधित जो है कुछ दिक्कतें ऐसी आती हैं। और अभी जो है कई तरीके की परियोजनाओं का लाभ जो है यहाँ पर लोगों को मिल रहा है, हमने देखा है, जिसमें से कि मुख्य तौर से मुख्यमंत्री आवास योजना और राशन कार्ड की सुविधा और मनरेगा का जो जॉब कार्ड होता है उससे संबंधित भी चीजें हैं। तो लक्ष्य आपका एकदम साफ है कि बाकी जो आगे भी है जो डेवलपमेंट की चीजें हैं या विकास कार्य आपका निरंतर चलता रहेगा, और ग्राउंड लेवल पर चीजें करने के लिए साथियों बहुत जरूरी होता है नेतृत्व। जब ऊपर बैठे लोगों का नेतृत्व हमें अच्छा मिलता है तभी विकास कार्य की जो छवि है वो ग्राउंड लेवल पर आपको दिख पाती है अच्छे तरीके से। और आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ
3: मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद बोलना चाहते हैं, इसी तरह करते रहें हमारे गांव का विकास, उनको मेरे तरफ से धन्यवाद।
1: ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की बातों से साफ है कि गांव के स्तर पर विकास की तस्वीर सिर्फ सुविधाओं के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं की पहुंच से भी जुड़ी है।
0: लेकिन छितौना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
1: हमारी दूसरी कहानी है आशिमा बेगम की, 2 बच्चों की अम्मा और जीवन की कठिन परिस्थितियों के बीच अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालती हुई एक सशक्त महिला।
0: आशिमा बेगम के पति भी नहीं है, ऐसे में 2 बच्चों की परवरिश और परिवार की जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं रहा होगा।
1: लेकिन मुश्किल हालात के सामने खड़े होकर आगे बढ़ना ही तो जिंदगी का दूसरा नाम है।
0: आशिमा बेगम को भी आवास की सुविधा, राशन कार्ड और मनरेगा का जॉब कार्ड मिला।
1: यानी एक महिला, 2 बच्चे और चुनौतियों से भरी हुई जिंदगी, लेकिन अब परिवार के पास एक सुरक्षित आवास, खाद्यान्न सुविधा से जुड़ाव और रोजगार के अवसर से जुड़ने का रास्ता है।
0: दोस्तों, विकास की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुकी है और वही लहर अब हमें देखने को मिल रही है वाराणसी और उसके आसपास के गांव में भी। और ऐसी ही कुछ विकास की बातें लेकर हम आ पहुंचे हैं वाराणसी के एक गांव में, जहां पर हम एक लाभार्थी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनको किस तरीके के लाभ सरकार द्वारा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी एफर्ट्स हैं, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं गरीबों के कल्याण के लिए या इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए अपने लाभार्थी से हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है?
4: आशिमा।
0: और क्या आपके गांव का नाम है?
4: चितौना।
0: क्या करती हैं आशिमा जी?
4: यही मजदूरी का काम, बच्चों के खेत में। आप तो जानते हैं गरीब है।
0: तो जैसे मजदूरी में जो मनरेगा आपका
4: गेहूं धान काटते हैं,
0: तो मनरेगा के तहत आप अपना मजदूरी करती हैं। और परिवार में कौन कौन है?
4: यही दोनों बच्चे हैं।
0: अच्छा, तो स्कूल जाते हैं?
4: हाँ, स्कूल जाते हैं, सरकारी में पढ़ते हैं दोनों।
0: कितने बड़े बच्चे?
4: एक दिन पाँच में पढ़ते हैं और एक दिन दो में पढ़ते हैं और एक दिन पाँच साल का है। और
0: तो आशिमा जी, आप मुझे बताइए कि जैसे कि आपको जो है, हमें पता चला है कि आवास योजना के तहत लाभ मिला है, तो पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है? पहले कैसे रहती थी जब मकान नहीं बना था? तो
4: जैसे कि मैं पहले तो कच्चे में रहती थी, तो कच्चे के बाद तो मैं जो मजदूरी को बच्चों लोग बना के खिलाते हैं और जो अपने राशन बना के खिलाए हैं। अभी जो है
0: 18-19 साल से आप कच्चे घर में रहती थी। हाँ। फिर उसके बाद जो है, जब आपको आवास मिला है, तो उसके बाद जो पक्के मकान में आप रहने लगी?
4: दो साल हुआ था, तो दो साल हुआ तो वो बना है
0: आपका जो घर है, दो साल से आप उसमें रह रही हैं। आशिमा की कहानी हमें एक बात सिखाती है
1: कि जब किसी जरूरतमंद परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचता है, तो उसका असर सिर्फ कागज पर दर्ज नहीं होता है,
0: उसका असर घर की चौखट पर दिखाई देता है,
1: बच्चों के भविष्य में दिखाई देता है
0: और उस माँ के चेहरे पर दिखाई देता है जो कल की चिंता के बीच आज थोड़ा सुकून महसूस कर पाती है। वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं है,
1: ये आस्था है, संस्कृति है और विरासत है।
0: और अब तो ये विकास की नई कहानी भी लिख रहा है।
1: वाराणसी में विकास की तस्वीर आज कई स्तरों पर दिखाई देती है, बेहतर बुनियादी सुविधाओं से लेकर कनेक्टिविटी, पर्यटन, रोजगार और जन कल्याण तक।
0: और इस विकास यात्रा में गांव और गरीब परिवार पीछे न छूटे, यही किसी भी जन कल्याणकारी व्यवस्था की सबसे बड़ी कसौटी है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार विकास के साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जरूरतमंद परिवारों तक सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दे रही है।
0: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के रूप में वाराणसी में भी विकास की कई परियोजनाओं और योजनाओं ने शहर की तस्वीर को नई दिशा देने का काम किया है।
1: लेकिन बनारस की असली खूबसूरती सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट में नहीं है,
0: बल्कि उस छोटे से गांव में भी है जहां जड़ावती देवी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखती है,
1: जहां आशिमा बेगम अपने दो बच्चों के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं,
0: और जहां सरकारी योजनाएं उनके संघर्ष में सहारा बनने का काम कर रही हैं।
1: यही है विकास का असली मतलब।
0: जब विकास शहर से गांव तक पहुंचे,
1: जब परियोजनाएं कागज से निकलकर जरूरतमंद परिवारों के घर तक पहुंचे,
0: जब एक माँ अपने बच्चों के भविष्य को लेकर थोड़ा और निश्चिंत हो सके,
1: और जब हर परिवार को लगे कि बदलते उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में उसकी भी हिस्सेदारी है।
0: गंगा की लहरों की तरह निरंतर आगे बढ़ती काशी,
1: अपनी विरासत को संजोते हुए विकास की नई राह पर बढ़ता वाराणसी,
0: और छितौना जैसे गांव में उम्मीद जगाती जन कल्याण की कहानियाँ,
1: यही है नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर।
0: एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहां विकास की रफ्तार के साथ जन कल्याण को भी आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
1: तो ये थी बनारस के छितौना गांव से आई दो परिवारों की कहानी,
0: जड़ावती देवी और आशिमा बेगम की कहानी,
1: संघर्ष की कहानी,
0: हौसले की कहानी
1: और सरकारी योजनाओं से मिली नई उम्मीद की कहानी।
0: आप सुन रहे थे
5: विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी।
6: 91.2 FM, हेलो बनारस। शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
7: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
8: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: जी गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो श्रोताओं 6:27 हो चुके हैं और आज से रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है। आई नो कि आप इंतजार कर रहे थे भैया रीना कहाँ चली गई है, क्यों नहीं बोल रही है लड़की। अरे लड़की यही थी, लेकिन कुछ आगे सभी अपडेट होता है कि भैया कुछ तो तुम्हें जो प्रोग्राम है वो प्ले करने ही, आप सभी के बीच सुनवाने ही, तो आ जाते हैं जी। और अभी फिलहाल हम बात करने वाले, देखिए श्रोताओं, यानी कि सिम के बारे में हम बात कर रहे थे। एक्चुअली हमें पता नहीं होता ना सिम के बारे में, हमें ये तो पता है कि एयरटेल, जियो और वीआई, बीएसएनएल और एमटीएनएल, यानी कि इनके मालिक कौन कौन है। तो मैं आपको बताऊं, जियो का जो मालिक है भैया मुकेश अंबानी, अंबानी नाम से ही पता चल रहा है भैया, साथ ही साथ एयरटेल के सुनील भारती मित्तल जी है, और वीआई की बात करूं तो कुमार मंगलम बिरला जी है, और बीएसएनएल का भारत सरकार है, और एमटीएनएल का भी भारत सरकार ही है। लेकिन साथ ही साथ एयरटेल वालों ने भैया बड़ा ही नाइंसाफी कर दिया है हमारे साथ, सच बताओ तो। लेकिन क्योंकि सिम भी तो एयरटेल का ही है ना, तो नाइंसाफी तो है ही जी। यानी कि 299 का जो पहले रिचार्ज हो जाता था, यानी कि 300 ही काटते थे, लेकिन अब वो रिचार्ज बिल्कुल बैन कर दिया है, खत्म कर दिया है, आप रिचार्ज 299 का नहीं कर सकते। साथ ही साथ बात करूँ 319 का, 579 का और 619 का बात करूँ, 649 की बात करूँ और 700 यानी कि 99 की बात करूँ, तो ये सीधा थप्पा लग गया है कि आप इतने के रिचार्ज नहीं कर पाओगे, सीधा आपने ज्यादा के रिचार्ज करना पड़ेगा। भाई साहब 349 का अब एक महीने का रिचार्ज कर दिया है, सोचिए। मतलब फोन रखना भी गुनाह हो गया है भैया, कि फोन भी रख रहे हैं ऊपर से इतने महंगे रिचार्ज भी, और साथ ही साथ फोन के बिना काम ही नहीं चलता है ना। लेकिन पहले का जो समय था ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि देखिए बिना इंटरनेट और वो फोन होता था हमारे पे जो ट्रिन ट्रिन करता था, उससे ही पता चल जाता था, 1 रुपए डालते थे कॉल हो जाती थी, बात हो जाती थी, मिनट के हिसाब से बात होती थी, वो सही था। लेकिन अब देखिए रिचार्ज भी इतना महंगा करे, आंख भी अपनी खराब करे, दिन रात लगे रहते हैं फोन में, कोई काम नहीं भैया फोन चला लो, रात को नींद नहीं आ रही फोन चला लो, ये नेट के कारण है, क्योंकि हमारी लालच बढ़ती जाती है, हम रह नहीं पाते और रिचार्ज कर लेते हैं, इतना महंगा रिचार्ज कर लेते हैं। अब क्या करें, काम भी करना है, ऑफिस का भी करना है, और भी कामें करने हैं बहुत से, अब तो हर चीज फोन में ही हम स्टोर करके रखते हैं, जितने भी फाइल्स है हर चीज अपडेट है वो फोन में ही रखते हैं, तो रिचार्ज करना पड़ता है। और भाई आगे आगे देखो क्या ही होता है। साथ ही साथ श्रोताओं बात करने वाले, देखिए त्योहार भी यानी कि नजदीक है और साथ ही साथ महंगाई बढ़ती जा रही है। चीनी की बात कर लो, जो 44 रुपए किलो मिलता था वही 60-65 रुपए किलो मिलने लगा है अब, और साथ ही साथ तो और भी जो चीजें हैं वो कहा जा रहा है कि सितंबर तक क्या महंगी होने वाली है वो भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले देखिए थोड़ा सा तो गाने बीच में होना चाहिए ना, चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं उसके बाद लौट कर। लेकिन उससे पहले देखिए, गाने से पहले ना कुछ कमर्शियल एडवरी का टाइम हो गया है श्रोताओं, तो हम आपके साथ कनेक्ट होते रहेंगे, बस आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। मैं कहती हूँ जी आपने किथे नहीं जाना है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है, ऑल योन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120+ रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629, विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो अब 6:37 हो चुके हैं श्रोताओं। और ये कहा जा रहा है सितंबर से, यानी कि देखिए खाने पीने की चीजें तो भैया महंगी है ही, साथ ही साथ ये कहा जा रहा है सितंबर के महीने से बिस्किट, साबुन और सरफ तेल यानी कि महंगे होने वाले हैं। तो महंगाई अब सर पर टांडव करने लगी है भैया, लेकिन रोजमर्रा की चीजें हैं, इसके बिना तो रह भी नहीं पाएंगे, काम तो करना ही है ना। फिलहाल मैसेज भी हैं, वो भी शामिल करते हैं। बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, हेलो जी, आपको हमारी तरफ से प्यारी प्यारी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी, टिल्लू राजा, आई ये टिल्लू राजा कौन है सर, गुड वाली इवनिंग है आपको हमारी तरफ से, वेरी गुड इवनिंग। हेलो रीना मैम, गुड वाली इवनिंग है, इवनिंग मस्ती शो में आप कैसे हो, बहुत अच्छे जी। ललिता कश्यप जी कनेक्ट हो गई हैं, चाय पी लीजिए, बिल्कुल भिजवा दीजिए आज तो, थोड़ा सर भी कह रहा है कि भाई चाय पीना पड़ेगा तेरे को, आज मौसम भी बहुत ही गर्म हो रहा है जी। बिल्कुल उमस वाली जो गर्मी है ना, इस वजह से उमस वाली जो गर्मी होती है ना, इसमें यही होता है, सर थोड़ा सा भारी और साथ ही साथ गर्मी इतनी ही। चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं, उसके बाद कड़क सवाल लेकर आएंगे।

0: You're tuned into FM Moradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और वहीं समय की बात करूं तो 6:48 हो चुके हैं और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, इसी बीच में आप सभी के लिए लेकर आ गई हूं एक कड़क म्यूजिक, जिसको आपने सुनना है और गैस करना है कि आखिरकार गाने का क्या नाम है। तो आप रेडी है तो वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, कहूंगी तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा कि गाना कौन सा है। हाँ जी, कहाँ ध्यान है आपका, जल्दी जल्दी सोचिए। जो मैंने अभी म्यूजिक प्ले किया है, यानी कि गाने का क्या नाम है, आपने मैसेज करके बताना है। नंबर है 9823789689 पर। वन सेकेंड, एक बार और मैं रिपीट करती हूँ इस म्यूजिक को। चलिए चलिए जी, सोचिए सोचिए कि आखिरकार गाने का क्या नाम है और आराम से मैसेज करिए, क्योंकि गाना भी आप बहुत बार सुनते भी हैं और इस गाने की रिक्वेस्ट भी बहुत ज्यादा आती है। तो इसीलिए आप समझ जाएंगे कि आखिरकार जो हमने म्यूजिक प्ले किया है, कौन से गाने का क्या नाम है, आप आसानी से बता पाएंगे। क्या आपने एक बार और प्ले करे समझ नहीं आया है? चलिए जी, सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा तभी आएगा। चलिए जी, बस इतना ही था। और सुनिए और मैसेज करिए। फिलहाल के लिए गाना भी बहुत ही शानदार।

हाय हाय जी, जान की कुर्बानी बिल्कुल नहीं देनी है, बस आपने मैसेज करना है, इतना ही सही कष्ट करना है जी। नंबर है 9837896896। आप आरजे रीना के साथ कनेक्टेड श्रोता हो। इवनिंग शो में और समय की बात करूँ तो 6:54 है, और जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है यानी कि लास्ट चांस आपको और मिलता है यानी कि गेस करने का कि म्यूजिक जो प्ले कर रही हूँ गाने का क्या नाम है। चलिए जी, जल्दी जल्दी सोचकर मैसेज करिए। क्योंकि आप सभी के फेवरेट वाला गाना है, क्योंकि रिक्वेस्ट भी इस गाने की बहुत ज्यादा आती है। सोचिए एक और गाना जो कि मेरे पास इसकी रिक्वेस्ट आई है, मैंने सोचा चलो प्ले कर देते हैं आज।

0: बात है जी, कितना शानदार गाना है ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। और इस गंगा पानी को ना हमें साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि जाते हैं हम नहाने के लिए, है ना, और कहते हैं हम अपने पाप धो कर आ जाते हैं। लेकिन देखिए, नहाने से कोई पाप धुलता नहीं है, क्योंकि आपके मन में है पाप, तो जब तक आप अपने मन को साफ नहीं रखेंगे, किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखेंगे, तब आपका मन शुद्ध है, आपको गंगा नहाने की भी फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, आज का जो मैंने म्यूज़िक प्ले किया है आप सभी के बीच, यानी कि देखते हैं कौन विनर बनते हैं आज के शाम। चलिए, जब देखना ये है कि किनका हमारे पास राइट आंसर आया है, और सबसे पहले राइट आंसर आया है हमारे पास ललिता कश्यप जी का। भैया, ये लेडी बड़ी एक्टिव है सच में, दिल ले गई कुड़ी गुजरात दी। चलिए जी, आप विनर बनती हैं शाम के शो की। अगले मैसेज की बात करूं तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। सैयद शारिक अली जी, गुड इवनिंग रीना जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? आपका शो इवनिंग मस्ती सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और गाने भी बहुत अच्छे प्ले कर रही हैं आप, थैंक यू सो मच। दिल ले गई कुड़ी गुजरात दी, आपका राइट आंसर है ये। और विक्की सागर जी सही आंसर के साथ कनेक्ट होते हैं। अरे कैसी हो रीना जी, सब ठीक? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सब बहुत बढ़िया है, एकदम मस्त हैं। बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, इनका कहना है फिल्म का नाम है राबता। ओके जी, लेकिन गाने का नाम बताना था जी आपने। अरे रणवीर जी, कहाँ कंफ्यूज हो गए आप, अंदाज। चले श्रोताओं, मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, कल मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह तो नहीं मिल पाएंगे, कल हमको आपको मिलेंगे, सुबह ही मिलने वाले हैं, और कल इवनिंग में स्टेज शो तो नहीं आने वाला है, क्योंकि कल है सैटरडे, हम मॉर्निंग में भी मिलेंगे, फिर से मॉर्निंग में मिलेंगे, और फिर आफ्टरनून में मिलने वाले हैं। अब आप समझ जाएंगे, ठीक है जी, आप बहुत प्यारे प्यारे श्रोता है ना, तो आप अच्छे से समझ जाते हैं जी, दिल की बात आखिरकार आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। चलिए, फिलहाल न्यूज का टाइम हो गया है, और इसी न्यूज के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत।
1: से बातचीत की उन्होंने, लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क में है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सुश्री रंगनाथन ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य सरकार सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रही है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया, कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को स्वीकृति दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। श्री नड्डा ने कहा कि ये विरोध ना तो विद्यार्थियों के हित में है और ना ही न्याय के हित में। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। यह 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ,
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जायकों, कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियां, जलेबी की मिठास, पान की गुलियां और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पूर्ण जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुंचेगी।
1: और सिर्फ पहुंचेगी नहीं, दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहरा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी, उफ।
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करतनी जो उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गणवाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जोन हमारी जनता आवतिया वह लोगन के बहुत जोन बा।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
0: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कौशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसर तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
0: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
1: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियो और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
0: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
1: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
0: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
1: और यही तो योगी सरकार की विकास परक सोच की खासियत है। विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की महक दुनिया भर में पहुंचे।
0: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे। जाएंगी।
1: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
0: अरे बनारस और ठंडाई, जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है, लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
1: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती है तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
0: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छानकर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगी, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों, अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
1: जी हाँ, तिरंगा बर्फी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
0: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
1: सोचिए, मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
0: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोए से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
1: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधिकारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
0: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
1: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी लौंग लता।
0: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंग लता।
1: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
0: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से खा सकें और साथ ले जा सकें।
1: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
0: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
1: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
0: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू। वाह, जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
1: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
0: जी हाँ, बनारसी पान।
1: और भाई, यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
0: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
1: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
0: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
1: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
0: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
1: मलाई और काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
0: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
1: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
0: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए। यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
1: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
0: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
1: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
0: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
1: सबसे अहम बात गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
0: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुँचेगा
1: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
0: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
1: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
0: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
1: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
0: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: के साथ दिल्ली को आधुनिक और टिकाऊ राजधानी बनाना, सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली 106 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की। दिल्ली में स्वाइन फ्लू मामले तेजी से बढ़े, अब तक 1700 से अधिक मरीज मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली नगर निगम ने डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन 2026 अभियान शुरू किया। और नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल सेमीफाइनल में पहुंची। दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का लक्ष्य किफायती आवास, पुरानी और अनधिकृत कॉलोनियों के पुनर्विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और हरित क्षेत्र बढ़ाकर दिल्ली को आधुनिक तथा टिकाऊ राजधानी बनाना है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली में जमीन सीमित है, लेकिन हमारी सोच और परिकल्पना सीमित नहीं है। इस मास्टर प्लान के प्रमुख प्रावधानों में 30 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर ग्राउंड फ्लोर पर व्यावसायिक गतिविधियां, 500 मीटर के दायरे में पारगमन अनुकूल विकास और पुरानी कॉलोनियों के पुनर्विकास की व्यवस्था शामिल है। साथ ही इसमें लैंड पूलिंग के जरिए नए नियोजित आवासीय क्षेत्रों को विकसित करने पर भी बल दिया गया। श्री सूद ने कहा कि इस नीति में जहां झुग्गी वहीं मकान के अंतर्गत पुनर्वास, यमुना के बाढ़ क्षेत्र में नए निर्माण पर रोक, हरित क्षेत्रों के विस्तार और जीरो वेस्ट विकास जैसे प्रावधान भी हैं।
4: लैंड एरियाज में 3000 स्क्वायर मीटर के एरिया को रीडेवलप करने की रास्ता मास्टर प्लान ने खोल दिया है। इन प्लैंड एरियाज में उदाहरण के लिए डीडीए के फ्लैट बने हैं, 3000 स्क्वायर मीटर के लोग इकट्ठा आए तो उसको तोड़कर नए सिरे से 1.5 गुना एफएआर के साथ उसकी एफएआर का 5% कमर्शियल पेस के अनुसार बनाने की प्रावधान इसमें किया गया है। अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज उनको भी रीडेवलप करने के लिए प्रावधान भी इसमें किए गए हैं।
3: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच 2000 से अधिक औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 106 इकाइयां पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करती पाई गयी, वहीं 78 इकाइयां दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से वैध संचालन की सहमति के बिना संचालित हो रही थीं। साथ ही 44 मामलों में पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया, जबकि 33 इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किए गए। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को

0: स्वच्छ हवा देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं बल्कि प्रदूषण के स्रोत पर भी प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है।
1: हमने 500 स्क्वायर मीटर से बड़ी जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइटें हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए खोला है डस्ट पोर्टल और लगा दिए हैं वहाँ पर AI एनेबल्ड कैमरास, जो कि वहाँ पर उड़ती हुई धूल मिट्टी को सेंसर कर पाएंगे और उसका नोटिफिकेशन हमारे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में तुरंत आ जाएगा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली में H1N1 इन्फ्लुएंजा तेजी से फैलने के कारण स्वाइन फ्लू मरीजों की संख्या अब तक 1777 तक पहुंच गई है। मौसमी और वेक्टर जनित बीमारियों को लेकर आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह भी उपस्थित थे। श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही इन्फ्लुएंजा पर बारीकी से निगरानी करने को भी कहा गया। वहीं श्री सिंह ने बताया कि अस्पतालों में बेड, डॉक्टर, दवाओं और जरूरी मेडिकल उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था है। दिल्ली नगर निगम ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन 2026 अभियान शुरू किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अभियान के पहले चरण में लगभग 75 किलोमीटर रेलवे ट्रैक और आसपास के क्षेत्रों में एंटी लार्वल दवाओं का छिड़काव किया जाएगा। ट्रेन के साथ पावर स्प्रे टैंकर तैनात रहेंगे जिससे जल भराव और मच्छरों के संभावित प्रजनन स्थलों तक दवा पहुंचाई जा सके। निगम के अनुसार अभियान अगले महीने तक चरणबद्ध तरीके से दिल्ली के विभिन्न रेलवे रूटों पर चलेगा। श्री वाही ने कहा कि बारिश के दौरान जल भराव से मच्छरों के प्रजनन की संभावना बढ़ती है, इसलिए शुरुआती स्तर पर ही उनके प्रजनन चक्र को रोकना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। महापौर ने दिल्ली वासियों से भी घर और आसपास पानी जमा न होने देने, कूलर तथा पानी की टंकियों की नियमित सफाई करने और मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करने की अपील की। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह के 4 आरोपियों को पंजाब और राजस्थान से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की ठगी के मामले में की गई हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वे टेलीग्राम के जरिए बैंक खाते हासिल करके उन्हें कम्बोडिया और संयुक्त अरब अमीरात में बैठे साइबर ठगी करने वालों को उपलब्ध कराते थे। इनमें से एक बैंक खाता कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दर्ज 17 शिकायतों से जुड़ा था। इन मामलों में करोड़ों रुपए के लेनदेन की जानकारी सामने आई है। दिल्ली के करोल बाग के प्यारेलाल रोड पर आज 2 मंजिला एक पुरानी इमारत के ढहने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि हादसे में 2 घायल मजदूरों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। विभाग के अनुसार इमारत जर्जर हालत में थी और उसमें मरम्मत का कार्य चल रहा था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों को बिना मास्टर डिग्री के PhD करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वाले पात्र विद्यार्थी सीधे PhD कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकेंगे। 2026-27 सत्र के पहले बैच के विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था विशेष रूप से लागू की जा रही है। दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 4,400 MTS कर्मचारियों को समान वेतन का लाभ मिलने पर आज उन्होंने निगम मुख्यालय पहुंचकर दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही का आभार व्यक्त किया। कर्मचारियों को समान वेतन का लाभ मिलने पर श्री वाई ने कहा कि सरकार सिर्फ वादे नहीं करती बल्कि उन्हें पूरा भी करती है और समान वेतन का निर्णय इसी संकल्प का परिणाम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम प्रशासन का उद्देश्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए उन्हें उनके कार्य, दायित्व और जिम्मेदारियों के अनुरूप उचित तथा समान वेतन उपलब्ध कराना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनसे लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभा, कंपनियों और निवेश के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। उन्होंने ऐसा इकोसिस्टम और माहौल बनाने का सुझाव दिया जहां अंतरिक्ष की चर्चा होने पर लोगों का ध्यान भारत की ओर जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। यह योजना भारतीय मोबाइल ब्रांड्स को बढ़ावा देगी और रोजगार सृजित करेगी। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि ये विरोध न तो विद्यार्थियों के हित में है और न ही न्याय के लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा और राहुल गांधी की मीडिया में सुर्खियां बटोरने की लालसा का प्रतीक है।
3: जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 20 जुलाई की घटना का संज्ञान ले लिया है और मामले की जांच के लिए एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की वृद्धि को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि वो स्थिति पर करीबी से नजर रखे हुए है। पिछले कुछ सप्ताह में चीनी की कीमत बढ़ी है। पिछले महीने की 20 तारीख को चीनी की कीमत 48 रुपए प्रति किलो थी, जो कल बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की वृद्धि को एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने फैसले में संशोधन किया है। एक रिपोर्ट।
4: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि शाहदरा फ्लाईओवर से अप्सरा बॉर्डर की ओर जाने वाले मार्ग पर मरम्मत और नवीकरणीय कार्य के कारण 31 अगस्त तक यातायात धीमा या बाधित रहने की संभावना है। यातायात पुलिस ने बताया कि मार्ग पर यातायात को नियंत्रित और सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त यातायात कर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली नगर निगम के राजभाषा विभाग की हिंदी प्रतियोगिता आज समाप्त हो गई। इस दौरान प्रतियोगिताओं में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने निबंध लेखन, टिप्पणी और आलेखन, सुलेख तथा हिंदी ज्ञान जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य निगम के कामकाज में हिंदी को सरल, सहज और प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना तथा अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग रविवार को नई दिल्ली में 32वां स्थापना दिवस मनाएगा। इस कार्यक्रम में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले उपस्थित रहेंगे। इस दौरान आयोग सभी हितधारकों के लिए NCSK मिस्ड कॉल सुविधा नंबर जारी करेगा। इससे आयोग कॉल करने वालों से संपर्क कर सकेगा और उनकी शिकायतें, मुद्दों और आवेदनों को समयबद्ध तरीके से दर्ज कर सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। NTA ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया। NTA के उत्तर की चुनौती एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसमें JEE मेंस, नीट या UGC नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। दोनों ने बेहद संघर्षपूर्ण क्वार्टर फाइनल में चीन के यी फैन और झांग शू को हराया। इस जीत के साथ ही भारत का पदक सुनिश्चित हो गया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में पहला भारतीय पदक होगा। वहीं पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चीन के लियांग और वांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। राजधानी दिल्ली में आज लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहेंगे और कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने कहा, दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का लक्ष्य किफायती आवास, पुरानी और अनधिकृत कॉलोनियों के पुनर्विकास के साथ दिल्ली को आधुनिक और टिकाऊ राजधानी बनाना है। सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली 106 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की। दिल्ली में स्वाइन फ्लू मामले तेजी से बढ़े, अब तक 1700 से अधिक मरीज मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। नगर निगम ने डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया की रोकथाम के लिए मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन 2026 अभियान शुरू किया। और नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं विशेष रेडियो कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
1: आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आगरा जनपद के बरौली अहीर विकास खंड की ओर।
0: बरौली अहीर, जहां खेतों में किसान की मेहनत है,
1: गांव की गलियों में बदलते समय की आहट है,
0: महिलाओं में आत्मनिर्भर बनने का विश्वास है,
1: युवाओं में आगे बढ़ने का उत्साह है,
0: और इन सबके बीच सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभा रही हैं।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों तक विकास और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं पहुंचाना है।
0: बरौली अहीर विकास खंड में 55 ग्राम पंचायतें और 73 गाँव है।
1: आज की हमारी कहानी है उन योजनाओं की, उनके लाभार्थियों की और उस बदलाव की जो गांव के घर घर में दिखाई दे रहा है।
0: कहते हैं अपना घर अपना संसार। जिस परिवार के पास वर्षों तक पक्की छत नहीं थी, उसके लिए एक पक्का घर केवल ईंट और सीमेंट से बनी दीवारें नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और भविष्य का भरोसा होता है।
1: ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और राज्य की आवास संबंधी योजनाएं संचालित हैं। आगरा जिले में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बरौली अहीर विकास खंड भी शामिल है।
0: लेकिन किसी योजना की असली सफलता उसके आंकड़ों में नहीं, लाभार्थी के चेहरे की खुशी में दिखाई देती है।
1: आइए सुनते हैं बरौली अहीर के एक लाभार्थी की कहानी।
2: मैं हूं आप सभी के साथ राखी, और आज हम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश कार्यक्रम के तहत उपस्थित हुए हैं, और हम इस समय हैं बरौली अहीर में, जहां पर मेरे साथ एक लाभार्थी जुड़ने जा रहे हैं। तो जानेंगे उनकी विकास की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो आपका नाम क्या है?
3: रवि कुमार।
2: तो रवि जी, आप सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं?
3: सरकार के द्वारा हमें बहुत सारी योजनाएं मिली हैं, जैसे आवास मिला हमारे को, शौचालय मिला, और मम्मी जी को विधवा पेंशन मिलती है
2: जी।
3: और बहुत सारी योजनाओं से हम लाभ ले रहे हैं और फायदा भी हुआ है, पहले की स्थिति में सुधार भी हुआ है हमें
2: जी। तो रवि जी, आपको इन योजनाओं की जानकारी किस माध्यम से मिली?
3: ग्राम पंचायत जो प्रधान होते हैं ना
2: जी,
3: उनके सदस्य के द्वारा या सोशल मीडिया से हमें मिलती रहती है। हमने फॉलो कर रखा है उनका चैनल योगी जी का, तो उनसे मिलती रहती है
2: जी। तो रवि जी, इन योजनाओं के लिए आवेदन आपने किस प्रकार से करा?
3: वही सर्वे कैफे पे जाके कराया था, और साथ में ग्राम पंचायत के सदस्य भी गए थे, उन्होंने उनकी सहमति के द्वारा।
2: तो रवि जी, आपकी स्थिति में क्या सुधार आया? इन योजनाओं से पहले आपकी स्थिति कैसी थी और अभी आपकी स्थिति कैसी है?
3: पहले हम बहुत कच्चे मकान में रहते थे, अब पक्का है। पीएम की तरफ से हमें बहुत आवास मिला है, तो खुश हैं और काम धंधा भी सही चल रहा है
2: जी। तो रवि जी, जैसे कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते होंगे, लोगों के बीच में बैठते, तो जो जिन योजनाओं का फायदा आपको मिला है, तो क्या आप इन योजनाओं के बारे में दूसरे लोगों से भी बातचीत करते हैं, उनको भी बोलते हैं कि वो भी इन योजनाओं का लाभ उठाएं?
3: हाँ, बोलते हैं, लेते भी हैं, और हमें तो फायदा है, तो हम उस तरीके से बताते रहते हैं। जो मेहनत करने जाते हैं, अपने काम करते हैं, तो हम बताते रहते हैं
2: जी। तो रवि जी, सरकार को क्या बोलना चाहेंगे?
3: सरकार को ये बोलना चाहेंगे, इस तरीके सरकार आती रहे और योजना चलती रहे, तो गरीबों का भला होता रहेगा, बस विकास हो, बस यही है
2: जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रोताओं, ये थे रवि कुमार जी बरौली अहीर से, जिन्होंने विकास की कहानी अपनी जुबानी हमें बताई। उनको, उनकी माता जी को पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन, साथ में उन्हें शौचालय का लाभ मिला और प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला। तो फिर हम मिलेंगे आपसे ऐसी किसी नए लाभार्थी के साथ, जानेंगे उनकी कहानी उनकी जुबानी।
1: एक परिवार के लिए पक्का घर, मतलब बारिश की चिंता से राहत,
0: बच्चों के लिए सुरक्षित जगह, और परिवार के लिए सम्मान के साथ जीने का अवसर,
1: या किसी भी विकास योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि है जब उसका लाभ सीधे जरूरतमंद परिवार तक पहुंचे।
0: विकास का अगला महत्वपूर्ण आधार है स्वच्छता। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के माध्यम से ग्रामीण परिवारों में शौचालय की सुविधा और स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: शौचालय केवल सुविधा नहीं, ये महिलाओं की गरिमा, परिवार के स्वास्थ्य और गांव की स्वच्छता से भी जुड़ा विषय है।
0: बरौली अहीर के गांवों में भी स्वच्छता को लेकर जागरूकता और सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं।
1: बरौली अहीर की विकास यात्रा में किसान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। किसानों की आय और खेती को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं संचालित हैं।
0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि संबंधी योजनाएं, सिंचाई, बीज, खाद, कृषि तकनीक और किसान को बाजार से जोड़ने जैसी पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
1: किसान की मेहनत खेत में होती है, लेकिन उसका असर पूरे गांव की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
0: और विकास की इस कहानी में गांव की महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है।
1: स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं बचत, बैंकिंग, प्रशिक्षण और आजीविका गतिविधियों से जुड़ रही हैं।
0: कहीं सिलाई कढ़ाई, कहीं खाद्य उत्पाद, कहीं पशुपालन, तो कहीं छोटे व्यवसाय।
1: जब महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है तो उसका लाभ केवल महिला को नहीं पूरे परिवार और समाज को मिलता है।
0: विकास का अर्थ यह भी है कि समाज के बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिले।
1: वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं पात्र लोगों के लिए आर्थिक सहारा बनती हैं।
0: उम्र बढ़ने के साथ जब कमाई के साधन सीमित हो जाते हैं, तब नियमित आर्थिक सहायता किसी परिवार के लिए बहुत मायने रखती है।
1: आइए सुनते हैं बरौली अहीर की एक पेंशन लाभार्थी की आवाज। प्रदेश,
2: उत्तर प्रदेश। माता जी, आपका नाम क्या है?
4: मेरा नाम भगवान देवी है।
2: तो आपको पेंशन मिलती है?
4: पेंशन लोग आ करते हैं तो खर्चा पानी कर लेते कि तब जाते हैं आवते हैं और बच्चे अपन खाना पाना देते रहते हैं तो कचू के तब जाते हैं आते हैं हारी दुखारी में आ जाती है।
2: मतलब ये अच्छा है ना कि आपके हाथ पे चार पैसे रहते तो आपको अपने बहू बेटों पे आश्रित नहीं रहना पड़ता।
4: हाँ वो तो ना रहता ही तो फिर वही करते हैं और को खर्च है।
2: हाथ पे पैसे होते तो आप अपना अपनी मनमर्जी से खर्च करती है ना।
4: हाँ फिर तो कर लेते आ जाते हैं तो
2: सरकार से क्या कहना चाहेंगे?
4: सरकार से ये है कि पैसे भी मिलते जाए अपना खर्चा तो खिलते जाए गरीब आदमी और का है।
1: प्रदेश, उत्तर प्रदेश। किसी बुजुर्ग के चेहरे पर संतोष,
0: किसी जरूरतमंद महिला के मन में सुरक्षा का भाव,
1: यही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य है।
0: क्योंकि विकास तभी सार्थक है
1: जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे। प्रदेश,
2: उत्तर प्रदेश। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं खंड विकास अधिकारी प्रेमपाल सिंह जी, जिनसे हम बात करेंगे आगरा के विकास के बारे में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
2: तो सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आगरा जनपद में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं?
5: मैम, जनपद आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें से कुछ मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं, जैसे बीबीजी राम जी योजना और आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना है, मुख्यमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, किसान सम्मान निधि है, सामूहिक विवाह है मैम
2: जी,
5: और स्वच्छ भारत मिशन योजना है मैम। इनके अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं मैम, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारे यहाँ चलाई जा रही है
2: जी। तो सर, इन योजनाओं से आम नागरिक विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को किस तरीके का प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है?
5: मैम, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ही आप ले लें
2: जी,
5: तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ गांव में 10 महिलाओं से लेके और 20 महिलाओं तक के स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा रहा है मैम। उन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मेहमान काफी महिलाएं जो है अपना स्वरोजगार कर रही हैं। उसमें बहुत सारी महिलाएं हमारे जैसे बैंक सखी है, समूह सखी है मैम, विद्युत सखी है, स्वास्थ्य सखी के रूप में भी काम कर रही हैं, बाकी कुछ अपना स्वरोजगार भी कर रही हैं, जैसे अचार बनाना है मैम और डलिया दोना पत्तल बनाना है, डलिया बनाना है, बहुत सारे काम कर रहे हैं। ऐसे ही बीबीजी राम जी योजना है मैम, इसके अंतर्गत जो लोग पलायन करते थे वो पलायन रुका है मैम, गांव में ही श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है
2: जी। तो सर, अब बात आती है कि हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को किसी एक ऐसे लाभार्थी की कहानी भी हमारे साथ साझा करें जिसकी लाइफ में इन योजनाओं की वजह से जो है सकारात्मक बदलाव आए हों।
5: मैम इसके योजना के अंतर्गत मैम हमारे यहाँ एक विनोद कुमार उत्तम सिंह हैं कबूलपुर के मैम, उन्हें मैम मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जैसे उनका मकान था जो दिव्यांग व्यक्ति थे उनके पास मकान नहीं था झोंपड़ी में रहते थे उन्हें मुख्यमंत्री आवास दिया गया है। अब वो अपने आराम से उसमें मुख्यमंत्री आवास में रह रहे हैं मैम। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंदर शौचालय दिया गया है, राशन कार्ड है उनके पास दिव्यांग और दिव्यांग पेंशन मिल रही है मैम और जॉब कार्ड भी है। अगर वो चाहे तो हमारे यहाँ बीवी रामजी योजना में भी काम कर रहे हैं।
2: आज सर अब बात आती है महिलाओं युवाओं किसानों और स्वयं सहायता समूहों के लिए कौन कौन सी योजनाएं विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो रही हैं।
5: मैम महिलाओं के लिए तो सबसे बढ़िया यही है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और अगर वो महिलाएं हमारे जैसे बीवी जी राम जी योजना में भी काम करना चाहती हैं तो वहाँ श्रमिक के रूप में भी काम कर सकती हैं। श्रमिकों के लिए मैम बीवी जी राम जी योजना है बहुत अच्छी योजना है, इसमें पहले मनरेगा योजना चलती थी 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब बीवी जी राम जी में 125 दिन का रोजगार दिया जाता है।
2: तो सर यदि अभी भी कोई ऐसा नागरिक है जो इन जो योजनाएं ये जो इतनी सारी चल रही है इनका अगर लाभ नहीं उठा पाए हैं तो वो किस तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं, उन्हें क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए या कहाँ पे वो संपर्क कर सकते हैं।
5: मैम अगर किसी भी योजना में अगर किसी लाभार्थी को लाभ नहीं मिला है और अगर वो लाभ लेना चाहता है तो हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत में सचिवालय के रूप में स्थापित है और वहाँ पंचायत सहायक परमानेंट बैठते हैं, सचिव भी अपने रोस्टर के हिसाब से वहाँ बैठे हैं। अगर कोई दिक्कत है उन्हें तो वहाँ संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से अपना आवेदन कर दें या जो भी समस्या है वहाँ से उनका सोल्यूशन। अगर वहाँ 1% नहीं होता है किसी कारण से तो 10 से 12 परमानेंट हम जनसुनवाई करते हैं उसमें आ सकते हैं या किसी भी समय पूरे दिन में जब चाहें 10 से 5 संपर्क कर सकते हैं, उनकी पूरा लाभ दिया जाएगा ना, पूरा उनका समस्या जो होगी उसका समाधान किया जाएगा।
2: जी बिल्कुल। आज सर अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि विकास योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है।
5: मैम विकास की योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए मैम तो इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, जो योजनाएं चल रही हैं वो जिला स्तर से भी मॉनिटरिंग हो रही है, हमारे स्तर से भी हो रही है, हमारे एडीओ साहब भी कर रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैम अगर कहीं समस्या किसी क्षेत्र में आती है कहीं भी आती है तो हम लोग वहाँ स्वयं जाके उसका सॉर्ट आउट कराते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आज मैं चाहूंगी कि अंत में हमारे आगरा के श्रोताओं को कोई एक संदेश भी आप जरूर दें।
5: मैम संदेश यही है अगर किसी को कोई समस्या आती है या कोई भी है तो सबसे पहले वो हमसे संपर्क करें, अगर जैसे गांव में पंचायत सचिव नहीं मिल रहे या कोई दिक्कत आ रही है तो जिला प्रशासन के पास जाने से पहले सबसे पहले हमसे संपर्क करें। अब होता क्या है कि लोग सीधे वहाँ पहुँच जाते हैं जिला मुख्यालय पर, तो पहले हमसे संपर्क करें, हमसे बताएं कोई समस्या, अगर हम सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद वो।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि आपकी दी हुई जानकारी का लोग लाभ उठाएंगे और जो नागरिक अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं वो जल्द ही इन योजनाओं से जरूर जुड़ेंगे।
1: बरौली अहिर की विकास यात्रा केवल आवास और पेंशन तक सीमित नहीं है,
0: गांव में शौचालय और स्वच्छता, किसान कल्याण और कृषि योजनाएं, महिला स्वयं सहायता समूह,
1: पेयजल और जल जीवन मिशन, ग्रामीण सड़क और आधारभूत सुविधाएं, रोजगार एवं कौशल विकास
0: और सामाजिक सुरक्षा जैसी अनेक योजनाएं और गतिविधियां ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई हैं।
1: उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास, बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।
0: हर योजना का अपना उद्देश्य है लेकिन मंजिल एक है, गाँव का विकास और ग्रामीण परिवारों का बेहतर जीवन।
1: बरौली अहिर की कहानी एक पक्के घर की कहानी है,
0: बुजुर्ग के सहारे की कहानी है, किसान की मेहनत की कहानी है,
1: महिलाओं के आत्मविश्वास की कहानी है और उन सपनों की कहानी है जो गांव की मिट्टी से निकलकर
0: नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर बना रहे हैं।
1: सरकारी योजनाएं, प्रशासन की मेहनत और ग्रामीणों की भागीदारी जब एक साथ आती है तभी विकास की तस्वीर और मजबूत होती है।
0: यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और यही थी आगरा के बरौली अहिर विकास खंड की विकास गाथा।
1: आप सुन रहे थे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

तेरा इंतजार बड़ी शिद्दत से कर रही है मेरी मोहब्बत की सरगर्मियां। तेरे मेरे फासलों के बीच छुपी हुई है बहुत सी नजदीकियां।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: नई सुबह की नई कहानी,
4: जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है,
5: इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना।
4: सोचिए, एक परिवार के लिए बेटी का विवाह सिर्फ एक रस्म नहीं होता, वो वर्षों का सपना होता है, जिम्मेदारी होती है और कई बार आर्थिक चिंता भी।
5: ऐसे परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक सहारा बनकर सामने आती है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र जोड़ों का सामूहिक विवाह कराना और उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
4: योजना के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार पात्र जोड़े को सरकार की ओर से कुल 1,00,000 रुपए तक का प्रावधान है। इसमें 60,000 रुपए की आर्थिक सहायता, 25,000 रुपए की विवाह सामग्री और 15,000 रुपए का आयोजन संबंधी खर्च शामिल है।
5: यानी मदद सिर्फ चेक तक सीमित नहीं, बल्कि बेटी के नए जीवन की शुरुआत को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश है।
4: और यही तो है जन कल्याण की असली तस्वीर, जब सरकारी योजना फाइलों से निकलकर किसी परिवार की मुस्कान बन जाए।
5: अब जरा सुनते हैं मेरठ की दो ऐसी युवतियों की आवाज़, जिनके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि उनके परिवार की खुशियों का हिस्सा बनी। हमारा एक खास कार्यक्रम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और इसमें लाभार्थियों की जो कहानियां हैं वो आपके बीच हम साझा करते हैं। मेरे साथ इस वक्त दो लाभार्थी यहाँ पर

0: मौजूद हैं। एक का नाम है दीपांशी और दूसरी का नाम है छवि, और दोनों को लाभ मिला है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का, जो एक बहुत ही अच्छी योजना है। बहुत युवतियां, बहुत युवक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो सबसे पहले छवि और दीपांशी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: थैंक यू।
0: छवि, आप मुझे बताओ कि ये जो योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसके बारे में आपको कैसे पता चला?
1: हमारे गांव के पंचायत घर से हमें पता चला इसके बारे में, तो वहां से हमने जानकारी ली इस योजना के बारे में।
0: ओके, तो जब योजना के बारे में आपको पता चला, तो आगे की प्रक्रिया कैसे की आपने, क्या किया फिर?
1: इसके लिए एक फॉर्म भरा जाता है जो जन सेवा केंद्र पे जाके हमने भरा है। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो वो तैयार किए, फिर हमने जन सेवा केंद्र पे जाके ये फॉर्म भरवाया है।
0: तो जब आपका फॉर्म भरा गया था छवि, तो फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे आपके?
1: डॉक्यूमेंट तो आधार कार्ड और जी
2: बैंक की किताब लगी थी, और पैन कार्ड की और फोटो लगे थे, और राशन कार्ड की लगी थी।
0: अच्छा, कब हुई है आपकी शादी?
2: 27 जुलाई।
0: ओके, तो क्या क्या लाभ मिले हैं इस योजना से आपको?
2: सम्मान मिला है और पैसे आगे खाते में।
0: क्या क्या सामान मिला है
2: उसमें? कम्बल है और को मतलब 51 बर्तन है, और उसमें तकिए हैं, गद्दे हैं, और अटैची है, मतलब उसमें सारा सामान है।
0: और कितना कैश आएगा आपका?
2: 64,000
0: खाते में आएगा। छवि, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कौन सी डेट को आपकी शादी हुई?
1: 27 जुलाई को हुई थी हमारी शादी।
0: तो शादी के बाद क्या पॉजिटिव चेंज आए हैं आपकी जिंदगी में?
1: अच्छा लग रहा है, काफी चेंजेस आए हैं, तो सही चल रहा है, मतलब सब
0: लाइफ आसान हो गई है पहले से। छवि, हमारे श्रोताओं को बताओ कि क्या क्या सुविधा आपको इस योजना के अंतर्गत मिली है।
1: तो हमें सामान मिला है, कुछ जरूरत की चीज मिली है, और कैश मिला है।
0: कौन से गांव में आपकी शादी हुई है?
1: चंदसारा
0: में। हस्बैंड ठीक है आपके?
1: हाँ ठीक है।
0: कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
1: नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
0: तो इस तरह की जो स्कीम है यूपी गवर्नमेंट की, कितनी सहायक हो सकती है ये समाज के लिए, या फिर उन वर्ग के लोगों के लिए जो थोड़े से गरीब वर्ग के लोग हैं?
1: हाँ, बहुत सहायक है ये, और लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, सभी सेवाओं का फायदा उठाना चाहिए जो चल रही हैं, जो गवर्नमेंट ने ये निकाली है।
0: छवि, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का फॉर्म भरने के बाद क्या प्रक्रिया हुई, आगे कैसे हुआ सब?
1: फॉर्म भरने के बाद फिर सबमिट कर दिया वो ब्लॉक में जाके, और उसके बाद फिर डेट मिली है हमको कि 27 तारीख को आपको वहाँ पे जाना है। कार्ड आया था उससे पता चला, फिर वहाँ पे गए हम लोग, फैमिली गई है हमारी, और जो मेरे हस्बैंड है उनकी फैमिली गई है, वहाँ पे जाके फिर हुआ है।
0: छवि, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जितनी शानदार योजनाएं दे रहे हैं आप सभी लोगों को, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगी?
1: हाँ, वो ही मतलब अच्छा कर रहे हैं, वो योगी भी और मोदी जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो गरीब फैमिली है उनको काफी योजना निकाल रहे हैं, नई नई योजना आ रही है, तो अच्छा ऐसे चलता रहना चाहिए।
0: और भी बहुत सारी ऐसी युवतियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है बहुत वक्त से, या फिर पैसे की तंगी है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, उनको क्या संदेश आप देना चाहोगी?
1: उनको बस यही कि उनको जानना है इस चीज के बारे में, या नहीं पता होता बहुत से लोगों को कि क्या योजना आ रही है सरकार की तरफ से, तो बस उनको इस चीज का पता करना चाहिए प्रधान से, या फिर किसी भी पंचायत घर में जाके इस चीज के बारे में पता करना चाहिए। ये तो हमारा अधिकार है, तो हमें नहीं डरना चाहिए इस चीज से, पूछना चाहिए सबसे।
0: छवि, आप क्या संदेश देना चाहोगी?
2: योगी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ।
3: आपने सुना, किसी भी योजना की सबसे बड़ी सफलता उसके आंकड़ों में नहीं, बल्कि उन चेहरों की खुशी में दिखाई देती है जिन तक उसका लाभ पहुंचता है।
4: वैसे मेरठ की बात हो और खेलों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
3: बिल्कुल नहीं, मेरठ को देश की स्पोर्ट्स सिटी के रूप में पहचान मिली है। यहाँ क्रिकेट बैट, बॉल, हॉकी स्टिक, बैडमिंटन और दूसरे खेल उपकरणों का बड़ा उद्योग है।
4: और यही तो है उत्तर प्रदेश की खासियत, हर शहर की अपनी पहचान, अपनी क्षमता और अपनी कहानी।
3: सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP पहल के तहत मेरठ की पहचान स्पोर्ट्स प्रोडक्ट से जुड़ी है, जिससे स्थानीय उत्पादों और उनसे जुड़े कारोबार को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
4: यानी मेरठ के मैदानों में खिलाड़ी पसीना बहाते हैं, और मेरठ की कार्यशालाओं में कारीगर अपने हुनर से खेलों का सामान तैयार करते हैं।
3: वाह, क्या बात कही आपने।
4: क्योंकि विकास वही है जहां हुनर को पहचान मिले, रोजगार के अवसर बढ़े और स्थानीय पहचान को नई उड़ान मिले।
3: और यही वजह है कि जब हम विकास का प्रदेश कहते हैं, तो हमारा मतलब सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट से नहीं होता।
4: इसका मतलब है किसी बेटी के विवाह की चिंता कम होना, किसी कारीगर के हुनर को बाजार मिलना, किसी युवा को आगे का अवसर मिलना और किसी परिवार के चेहरे पर भरोसे की मुस्कान आना। दोस्तों, फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको मिलाएंगे मेरठ की CDO यानी कि मुख्य विकास अधिकारी, जो कि 2023 से मेरठ शहर में कार्यरत हैं। मैम एक IAS ऑफिसर हैं और मैम ने मेरठ की तरक्की को, यहाँ पर हो रही प्रगति को बहुत ही करीब से देखा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन के कारण और CDO मैम के नेतृत्व के कारण मेरठ लगातार आगे बढ़ रहा है। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका।
5: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
4: मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि मेरठ में चल रही हैं इस वक्त, जो मुख्य योजनाएं हैं?
5: इस वक्त मेरठ में बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मेरठ आई थिंक एशिया का एक इकलौता ऐसा, SRTS भी चल रही है और मेट्रो भी चल रही है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भी मेरठ में ही आया और अभी गंगा एक्सप्रेस वे का भी हाल फिलहाल में ही इनॉग्रेशन हुआ। इसके साथ में बहुत सारे ऐसे रोड्स का जाल यहाँ मेरठ में बिछाया जा रहा है और जा चुका है, जिससे आज के टाइम पे कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो मेरठ इज आई थिंक नंबर वन व्हेन इट कम्स टू उत्तर प्रदेश ऑन द होल। साथ ही में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर स्कूल्स को मॉडल स्कूल्स बनाना, जहाँ पर हमारी सरकारी स्कूल्स में भी वही सारी फैसिलिटीज के लिए हम ट्राई कर रहे हैं जो सारी प्राइवेट स्कूल्स में दी जाती है बच्चों को, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ टीचिंग के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। इसके साथ में अगर हम किसानों की बात करें तो किसान सम्मान निधि और बहुत सी ऐसी अलग परियोजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जहां उन्हें सब्सिडी दी जाती है, उन्हें फर्टिलाइजर्स उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है। अगर हम युवा की बात करें तो PMGP एक बहुत अच्छी योजना सामने आई है जिसके अंदर उन्हें लोन दिया जाता है सब्सिडाइज रेट पे। इसके साथ ही हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ में आयुष्मान कार्ड एक ऐसा गोल्डन कार्ड है जो 5 लाख तक का फ्री उपचार मरीजों को उपलब्ध कराता है किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी। और इस मेरा मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसे पिलर्स हैं जिनके ऊपर ही एक मजबूत और विकसित प्रदेश की नींव रखी जा सकती है। और हमारे यहाँ पर आप किसी भी सेक्टर की बात कीजिए तो सभी में ही काम लगातार किया जाएगा।
4: जी मैम, एक योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, तो इस योजना के बारे में थोड़ा सा आप सभी को जानकारी दें मैम।
5: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बेसिकली ऐसे निर्धन परिवारों की बच्चियों की शादी कराई जाती है जिसे खुद सरकार कराती है। इसके अंदर हाल फिलहाल में अभी जो धनराशि दी जाती है उसे भी बढ़ाया गया है, उसे भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसके अंदर सरकार ना सिर्फ उनको कुछ सामग्री देती है जैसे उन्हें ब्रीफकेस, गद्दा, चुनरी, कुछ साड़ियाँ, बेडशीट्स, कुकर, एक डिनर सेट, ये सब देती है। साथ ही साथ उनके खाते में भी डायरेक्ट पैसे दिए जाते हैं और इसके साथ में ही एक सामूहिक रूप में एक बहुत अच्छा वेडिंग हॉल तैयार किया जाता है जिसमें उन सभी को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि वो वहाँ पर आए, शादी करें और साथ ही में उनके परिवारजन, लड़कियों के परिवारजन और लड़कों के परिवारजन दोनों ही वहाँ आते हैं, विवाह संपन्न होता है और साथ ही में वहाँ पर उन सभी के लिए एक प्रीति भोज भी रखा जाता है, जिसके अंदर ये एक धर्मनिरपेक्ष चीज़ है जहाँ पर दोनों ही, हिंदू भी और मुस्लिम परिवार, दोनों की ही शादियाँ करवाई जाए।
4: जी मैम, क्योंकि आपको 3 साल हो चुके हैं मेरठ में आपके कार्यकाल को, तो आपके अनुसार मैम जो मेरठ के लोग हैं, खासकर जो ग्रामीण लोग हैं, किस प्रकार इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं वो? क्या आपके पास आते हैं वो बताने के लिए कि मुझे ये योजना मिली है और इससे मुझे फायदा हुआ है?
5: बिल्कुल, जब हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सीधा सीधा गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा मिला है। जब हम पेंशन की बात करें, चाहे हम कोई भी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, इन सभी का लाभ उन लोगों के द्वारा लिया जा रहा है। शिक्षा की बात करें तो आज हर एक गांव में एक बहुत अच्छा स्कूल स्थापित किया गया है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर हर एक गांव में बसाया गया है, वहाँ सर जो गांव की सड़कें हैं वो बहुत अच्छी हो गई है, हर एक गांव में आज एक पंचायत घर बनाया गया है, एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। और मैं खासकर ये बात बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ मेरठ में जो डिजिटल लाइब्रेरीज या जो पंचायत घर में लाइब्रेरीज बनाई गई है उसमें आज के दिन में टोटल 1231 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो पुलिस भर्ती हो या फिर SSC CGL हो या फिर UPSC हो, इन सब में उत्तीर्ण हुए हैं, उन्होंने सफलता पाई है। तो मेरा मानना है कि ये जो सरकार की सारी स्कीम्स है, शासन की सारी परियोजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सरकार लोगों तक पहुंचाती है। और हम सब लोगों का भी यही एक ट्राई हमारा रहता है, कोशिश रहती है कि हम सब उन सभी लोगों तक जा सके और उन सभी लोगों की मदद कर सके जो इनके इच्छुक हैं। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर गांव में समूह की महिलाएं भी बहुत अच्छा काम कर रही है। एक हमारे यहाँ पर समूह की महिला है जो फूलों की खेती कर रही है खेरकौदा में, एक समूह की महिला है जो बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बना रही है, उसको अलग रेसन कोट करके वो जयपुर में अपना माल सप्लाई करती है। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दीदियाँ हैं जो आज लखपति दीदी बन गई
0: जी।
5: यहाँ मेरठ जनपद में हमने ना सिर्फ इन सब बट आशा बहुओं का भी बहुत ध्यान रखने की कोशिश की। यहाँ पर DM सर के नेतृत्व में एक आशा पेकट के प्रोग्राम चलाया गया
0: जी,
5: जिसके अंदर आज के दिन हमारी जो एक एवरेज आशा जो सैलरी पा रही है, जो एक पैसे पा रही है मंथली, वो लगभग 9000 के लगभग पहुंच गए हैं, जिसके अंदर अभी हाल फिलहाल भी DM सर के द्वारा हमारे यहाँ पर 4 ऐसी आशाओं को सम्मानित भी किया गया था वॉशिंग मशीन देकर, जो सबसे ज़्यादा पैसे पा रही थी। और मैं ये बहुत खुशी के साथ कह सकती हूँ कि वो चारों ही आशा 14,000 से 15,000 रुपये प्रति महीना वो कमा रही थी। तो ये सभी चीज़ें दर्शाती है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कैसे हम लोग एक अच्छी दिशा में आगे प्रगति कर रहे हैं।
0: जी मैम, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, जो गांव के लोग होते हैं, मैम बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, आपके ऑफिस में भी काफी लोग आते हैं, मैम सारी योजनाओं का तो सभी को नहीं पता होगा, तो लोगों तक योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए मैम विभाग की तरफ से मैम क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, क्या क्या कार्यक्रम किए जाते हैं?
5: हर एक सेक्टर अपना अलग अलग कार्यक्रम करता है और साथ ही में हमारे द्वारा भी एक कन्वर्जेंस भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि समय समय पर यहाँ पर ग्राम चौपालों का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर पूरा प्रशासन उठ के वो गांव में जाता है और वहाँ सभी लोगों को सभी स्कीम्स के बारे में बताता है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, बहुत सारे पैम्फलेट्स बांटे जाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में उन्हें इन्वाइट किया जाता है। जैसे अगर मैं कृषि की बात करूं, तो कृषि में हमारे द्वारा ऐसी बहुत सारी चीजें की जाती है जहां पर यहां से साइंटिस्ट, जिले से साइंटिस्ट या हेडक्वार्टर से साइंटिस्ट उनके गांव में जाते हैं और उन्हें बताते हैं, और वाइस वर्सा भी, उन्हें भी बहुत बार ब्लॉक्स पे या फिर हेडक्वार्टर्स में बुलाया जाता है कि वो लोग यहाँ आके सीखे और जानकारी ले। जैसे अगर मैं DPO विभाग की बात करूँ तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलाई जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत, कन्या सुमंगला योजना जैसे हो गई, जिसमें पहले लोगों को शिक्षित किया जाता है और फिर उनका लाभ उनके द्वारा लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे बैनर्स, सोशल मीडिया, सर DM सर का, कमिश्नर सर का, और सूचना विभाग के द्वारा भी समय समय पर न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में, बैनर्स में बड़े बड़े ये चीज़ बहुत सारे लोगों तक बताई जाती है। और साथ ही में आपका रेडियो भी हमारी बहुत बहुत हेल्प करता है ये सब चीज़ें आम जनता तक पहुँचाने के लिए। तो मेरा मानना है कि जिस जिस प्लेटफॉर्म पर हम जैसे जैसे सोच सकते हैं हम लोग वैसे ट्राई करते हैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। जैसे कल ही एक कॉन्क्लेव हुआ जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाया गया जो कैटल फार्म चलाते हैं या जो पशुपालन से रिलेटेड है, तो ऐसे भी बहुत सारे कॉन्क्लेव यहाँ पर कराए जाते हैं।
0: जी मैम, क्योंकि हमारा जो एक कार्यक्रम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश जागरूकता के लिए है, लोगों तक हम योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, बेसिकली मेन पर्पस है अवेयरनेस, तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी मैम?
5: हाँ, मैं सभी लोगों से यहाँ पर आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूंगी कि आप सभी लोग जागृत रहिए। यहाँ पर आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी फैलाई जा रही है जो भ्रामक है, जो सही नहीं है, तो एक बार प्लीज़ फैक्ट चेक कीजिए। कोई भी चीज़ जो आप सोशल मीडिया में पढ़ते हैं या अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे पढ़ते हैं वो सही नहीं भी हो सकती है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए, देश के हित के लिए काम कीजिए और आप खुद तरक्की कीजिए ताकि देश भी आपके साथ तरक्की करे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 2047 तक हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसके लिए हमें एक हमें अपने प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है और उसके लिए हम सभी को बहुत अच्छे से एकदम एड़ी चोटी पर जोर लगा के काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा देश वो हर बुलंदी पर पहुंचे जहां पर वो पहुंचने का हकदार।
3: मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार विकास और जन कल्याण को साथ लेकर आगे बढ़ने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।
4: और इन प्रयासों की खासियत यही है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों की स्थानीय जरूरतों और उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विकास की नई संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया जा रहा है।
3: मेरठ इसकी एक खूबसूरत तस्वीर।

0: है,
1: जहाँ इतिहास की विरासत है
0: और जहाँ जन कल्याण की योजनाओं से जुड़ती हैं उम्मीदें।
1: तो ये थी मेरठ से विकास की एक ऐसी कहानी
0: जिसमें आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है लोग, उनके सपने और उन सपनों को मिलती नई दिशा,
1: क्योंकि उत्तर प्रदेश बदल रहा है
0: और जब प्रदेश आगे बढ़ता है तो शहर की कहानी विकास की कहानी बन जाती है।
1: आप सुन रहे थे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन्ड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
2: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए

0: आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
1: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
0: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
3: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि यह योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
4: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। MSME और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है, उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। पीएलआई केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था, इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन आईपी को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
5: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं, उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
6: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
0: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
7: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9.
9: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
10: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
11: Hey, you're tuning to FM Muradabad, 89.6 FM.
12: Bina rap wala remix.

नमस्कार मुरादाबाद। फ्राइडे आ गया है और फ्राइडे का मतलब है सिर्फ वीकेंड ही नहीं, फ्राइडे का मतलब है साफ फिल्मी भी होना और थोड़ा सा रोमांटिक भी। आज तो निकल नहीं रहे होंगे अपने घरों से बाहर, क्योंकि हर जगह मिलेगा आपको भोले का प्यार। इधर भी जाम और उधर भी जाम, तो भाई साहब इससे अच्छा है कि खूब मस्ती करें और सुने अपने पसंदीदा गाने। आज की शाम होगी थोड़ी सी फिल्मी, थोड़ी सी फिटनेस वाली और थोड़ी रोमांटिक सी। तो सिंपल सा सवाल है साहब आप सभी से कि अगर आपकी लाइफ पे एक फिल्म होती तो उस फिल्म का नाम क्या होता? कभी खुशी कभी गम, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, या फिर गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। तो मैसेज करें, कॉल करें 9837896 पे 896 पर और हमें बताएं साहब क्या नाम हो सकता है। तब तक हम एंजॉय करेंगे गाने आपकी फरमाइश के। आप अपनी फरमाइश के भी गाने हमें बता सकते हैं, कोई बर्थडे हो या एनिवर्सरी वो भी उनका नाम ज़रूर हमें मैसेज करें, हम उन्हें विश करेंगे आपकी तरफ से। जिंदगी एक फिल्म है, सीन बदलते जाना है, कभी आंसू कभी स्माइल के मोमेंट आते हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बस इंटरवल के बाद थोड़ा फिटनेस भी करते जाइएगा। तो खूब फ्राइडे एंजॉय करते हैं, चलिए साहब फ्राइडे को स्टार्ट करते हैं और एक एनर्जेटिक सॉन्ग के साथ। 9837896896 पर कॉल लगाना ना भूलें और अपनी फरमाइश बताना भी ना भूलें, क्योंकि साहब आज फ्राइडे है और फ्राइडे में आप किसी के नहीं सुनते हैं। सुनते हैं चलिए वाला गाना, खूब मस्त वाला।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। और कहते हैं कि जब लाइट जाती है ना, अगर अमेरिका में लाइट जाए तो लोग बिजली घर में फोन मिला देते हैं, जापान में लाइट जाए तो लोग ऐप में चेक करके मैसेज कर देते हैं, मगर जब इंडिया में लाइट जाती है ना तो लोग पहले अपने घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि पड़ोसी की भी लाइट गई है या नहीं गई है, तब उन्हें यकीन होता है साहब हाँ लाइट ही चली गई है। तो हाँ, तो अपने अपने देश की अलग अलग कहानी है साहब। अभी लेते हैं एक कॉलर को अपने लाइन पे, वो कह रही है फरमाइश सुननी है भैया, तो चलिए बात करते हैं उनसे कुछ। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप?
1: हेलो भैया, मैं गुंजन बोल रही हूँ मंजुला प्राइमरी स्कूल से, क्लास 4।
0: अरे गुंजन जी, आपने तो एक बार में अपना पूरा बायोडेटा बता दिया। क्या कर रही हैं इस समय आप?
1: कुछ नहीं, बैठी हूँ।
0: बैठी हो? कोई होमवर्क पूरा हो गया आपका? स्कूल से जो होमवर्क मिला था पूरा हो गया? तो कल स्कूल की छुट्टी है या स्कूल जाना है?
1: छुट्टी है,
0: कल छुट्टी है।
1: मंगलवार को हमारे टेस्ट है।
0: मंगलवार से टेस्ट है?
1: मंगलवार को हमारे मैथ टेस्ट है।
0: अच्छा, इसका मतलब अभी आपके टेस्ट चल रहे हैं? सब अच्छे से जा रहे हैं टेस्ट या नहीं? चलो बढ़िया बढ़िया। कौन सा गाना सुनना चाहोगी? कौन सी चूड़िया चलाई? टूट गई चूड़िया कलाई में? ठीक है ठीक है ठीक है, आपका इन दोनों में से एक फरमाइश हम पूरी कर देंगे। दोनों सुनाने पता है, उसके वो दूसरा गाना तब सुनाएंगे जब हमें आपके टेस्ट के जो मार्क्स है ना वो पता चल जाएंगे उसके बाद। नहीं नहीं, अब तो जब टेस्ट के मार्क्स अच्छे से आएंगे ना उसके बाद वो दूसरा गाना प्ले होगा, मगर पहला गाना जरूर आपका प्ले होगा। ठीक है, चलो जी सुना देंगे। और सब सही है? बारिश हो रही है नहीं हो रही है? कितनी तेज हो रही है? कितनी तेज बारिश हो रही है? हल्की हो रही है? तेज? बहुत तेज हो रही है। चलो फिर जल्दी से गाना सुनो, सो जाओ जिससे जल्दी सुबह सुबह उठ जाना। पक्का सुना रहे? ठीक है जी, दोनों सुना दो। ओके बाय बाय। ठीक है, तो ये है हमारी छोटी सी रंजनी जी, जो गुंजन जी जो कहती हैं कि भैया मुझे तो गाने पूरे सुना देना। कितना डांट के कहती हैं, कितना प्यार से कहती हैं, यही तो मज़ा है जब छोटी सी फरमाइश आती है मगर कितना बड़ा धमाके के साथ। तो चलिए इनकी फरमाइश को पूरा करते हैं और आप भी अपनी फरमाइश कर सकते हैं 9837896896 पे मैसेज और फरमाइश दोनों ही वेट कर रहे हैं। और अभी हमारा मैसेज आया है लाइन पार से। हाँ जी, पहचान गए होंगे कौन है, यादव परिवार है पूरा। हमारे पूरे परिवार की तरफ से अखिल सर जी को प्यार भरा नमस्कार। फूल है गुलाब का, नशा है शराब का, आप तो कभी पूछते नहीं इसलिए हमने पूछ रहे हैं। क्या हाल है आपका? हाल तो बहुत ही बढ़िया है, एकदम मस्त। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मेरा ठुमका बदल गई चल मितवा, ज़रा ये वाला गाना प्ले कर दीजिएगा। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। नेम है शंकर लाल यादव जी, निरांशी यादव, नमन यादव, अमित यादव, रितु यादव, लाइन पार मुरादाबाद प्रकाश नगर चौराहे से। और आपकी फरमाइश पूरी होगी सर, सिर्फ एक कॉल मिला दी 9837896896 पे। चलिए हम फरमाइशें पूरी करते हैं दोनों की, थोड़ा सा फ्राइडे एंजॉय करते हैं। और कहते हैं ना, जो मज़ा दिल से कहने का है वो कहीं और से नहीं, तो आप भी अपनी दिल की बात बोलें और हमें और सभी को सुनाएं क्या कहते हैं आज।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। और दोस्तों, हम मूवीज जब देखते हैं ना, उसमें देखते हैं हमेशा कि हीरो जो होता है बिल्कुल एकदम परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट हेयर स्टाइल एंड परफेक्ट एनर्जी के साथ पूरे टाइम 3 घंटे हमें एंटरटेन करता रहता है। मगर असली हीरो वो है साहब जो अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखता है। फिटनेस का मतलब सिर्फ जिम में 2 घंटे एक्सरसाइज और पसीना बहाना नहीं, आप डेली वॉक कर सकते हैं, स्टेयर यूज कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और एक्टिव रह सकते हैं और अपनी डाइट पर भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। डाइट का नाम जैसे लेते हैं ना, सबकी जो नज़रें होती हैं वो भाई साहब अपने अपने कमी की तरफ चली जाती है। अरे यार सही तो कह रहे हैं, डाइट में तो मेरी कंट्रोल है, जैसी थोड़ी सी सांस अंदर करी खींच के पता चल जाता है साहब कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी। ठीक है सब कुछ करना है मगर एक कंसिस्टेंसी के साथ। अगर वॉक पे जाना है तो 1 या 2 दिन जाके सिर्फ रुक नहीं जाना, थोड़ी थोड़ी वॉक चले जाए साहब, भले ही 100 मीटर जाएं या फिर 3 मंजिला चढ़ जाएं, तो वॉक तो करनी है क्योंकि नो पेन नो गेन। चलिए हम बात करते हैं अपने नए लिसनर से और देखते हैं क्या कहते हैं वो उनसे। हेलो दिल से दिल तक अखिल संघ, क्या नाम है आपका जनाब? तो इस्लाम जी, क्या कर रहे हैं इस समय आप?
1: घर पे हैं, अभी काम कुछ नहीं है, खाली हैं।
0: अभी खाली हैं?
1: हाँ।
0: तो कुछ ना कुछ तो काम पकड़ना पड़ेगा ना साहब, सोने वाला काम ही करना पड़ेगा फिर तो। अभी
1: काम पकड़ना पड़ेगा, कुछ खाली सोने से भी कुछ नहीं होता।
0: तो इस समय मौसम के हालचाल कैसे हैं आपकी तरफ?
1: मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है।
0: और रास्ते में कहीं जाम है या सब पूरा हाईवे खुला हुआ है आपके घर की तरफ तक? तो आज हम बातें कर रहे थे, अगर आपके ऊपर कोई एक फिल्म बने तो आप उस फिल्म का नाम क्या होगा? इस्लाम साहब को सलाम।
1: ये टाइटल फिल्म का?
0: हाँ
1: टाइटल इस्लाम साहब को सलाम तो नहीं,
0: तो फिर क्या होना चाहिए?
1: इस्लाम तेरा नाम।
0: इस्लाम तेरा नाम।
1: इस्लाम तेरा नाम।
0: इस्लाम तेरा नाम मतलब ये तेरे नाम पिक्चर आपने बहुत देखी है, सलमान खान के फैन हो आप। तो कौन सा गाना सुनेंगे आज?
1: वही सुना था, मेरे मालिक मेरे दाता मेरे परवरदिगार।
0: जरूर साहब जरूर, ये अभी आपकी फरमाइश पूरी होगी
1: जी।
0: और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे ये गाना आप, दोस्तों को अपने? या अगर शादी हो गई है तो अपने
1: वाइफ को? क्या
0: बात है क्या बात है, सभी श्रोताओं घर को कह दिए। तो आपकी शादी हो चुकी है इसका मतलब?
1: 40 साल उम्र है, शादी हो चुकी है सर।
0: सही है साहब, आपने अपनी उम्र नहीं छुपाई, वरना तो भाई साहब लोग अपनी उम्र साथ पाने लगते हैं। चलिए इस्लाम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे कनेक्ट हुए और आपका गाना जरूर बिल्कुल सही समय पे हमारे साथ इस्लाम जी कनेक्ट हुए और कह रहे हैं कि साहब मेरी उम्र है 40 साल। तो हाँ साहब 40 साल हैं और नॉटी एट 40 होता ही होता है भाई साहब। पति कहते हैं अपनी पत्नी से कि जो है मैं हूँ भगवान और तुम हो मेरी, हमेशा जो वक्त को अपने भगवान से एकदम हाथ जोड़ के नमस्कार करते रहना चाहिए। तो पत्नी पता है क्या कहती है? कहती जी वो जमाने गए, अब तो भगवान जो है ना वो भी अपने भक्तों के वश में रहते हैं, पूछ लेना किसी से। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, जब भक्त हैं तभी तो भगवान है। तो उसी के नाम पे हम करते हैं ये गाना। सारे आपके भी कोई मैसेज हो 9837896896, कोई भी विश हो तो हमें ज़रूर बताएं और कॉल करें और पूरा आनंद ले सकें। आनंद से बात आया, एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि आनंद जी आप पता ही हैं हमारे आरजे आनंद, जो आजकल थोड़ी सी परेशानी में हैं और उनके जो फादर हैं वो इस समय लापता हैं। तो थोड़ी सी मदद कीजिए, आप उन्हें फॉलो करते ही हैं, देखते रहिए उनके अपडेट और जिस रूट पे थे उस रूट पे वो उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी करी मगर अभी कोई प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाई है, सब जगह से लगे हुए हैं। तो अगर आपको भी कुछ अपडेट या कुछ भी मिले, उनके फ़ोटो आपको इंस्टाग्राम पे उनके पेज पे आनंद जी के पेज पे आपको मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर उसे देखें और जैसी मदद कर सकते हैं तो जरूर करें उसे। चलिए तब तक करते हैं गाना एंजॉय 9837896896।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। और कहते हैं ना साहब कि बॉडी को भी थोड़ा वक्त दो, खुद से भी मुलाकात करो, सिर्फ दुनिया को इम्प्रेस मत करो, अपनी सेहत से भी प्यार करो। तो चलिए लेते हैं अपने नए लिसनर को लाइन पे, पूछते हैं उनकी क्या है आज की फरमाइश। हेलो दिल से दिल, कैसे हैं आप?
1: हेलो सर जी, आदाब।
0: आदाब जी, आदाब।
1: कहते हैं कि कॉल हेलो मुरादाबाद में आज शामिल हो रही है हमारी, इसीलिए आज की शाम का नजारा भी है बड़ा ही प्यारा। तो अखिल सर आपकी शान में कबूल हो मोहब्बत भरा सलाम हमारा।
0: धन्यवाद साहब, धन्यवाद। हमारा भी मोहब्बत भरा सलाम आपको। और कुछ कोई शायरी आज इसी बात पे कुछ सुना दीजिए, आज कोई शेर ही सुना दीजिए।
1: शायरी भी सुनाएंगे, पहले अपना एड्रेस बता दे सुनने वालों को। मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर ग्राम खे कांडे से वसीम अकरम बात कर रहा हूँ।
0: तो साहब वसीम अकरम साहब, आज एक आध बॉल फेंक दीजिए अपने पाले में से।
1: बॉल लोर मैं जानना चाहूंगा आपकी फैमिली में वो 89.6 में सभी लोग कैसे हैं?
0: सभी लोग बहुत ही सही हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और
1: सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हम तो यही कामना करते हैं कि आप दिन रात तरक्की करते रहें।
0: धन्यवाद साहब, धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया बात कही आज आप।
1: और मैं कहना चाहूंगा कि काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम अखिल जी, काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम अखिल जी, लम्हे लम्हे की खुशी ले लूं आपकी जिंदगी के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो ज़रूर इस जब भी आप ये शायरी बोलते हैं तो उसके बाद जिसे डेडिकेट कर रहे हैं उनका नाम ज़रूर बोला करें आप।
1: क्योंकि सर डेडिकेट तो किसी को नहीं कर रहे हैं, अभी फिलहाल सिंगल ही हैं, आपका प्रोग्राम सुन लेते हैं मनोरंजन के लिए।
0: तो कोई बात नहीं साहब, सिंगल हैं तो कोई बात नहीं, डेडिकेट तो कर ही सकते हैं।
1: ना जी डेडिकेट तो कर सकते हैं लेकिन एक्सेप्ट करने वाला अभी तो होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा, सही कहा। कोई बात नहीं, आजकल लगता है दोस्तों से जो है आपकी बातें नहीं हो रही हैं, इसलिए आप जो है कह रहे हैं कि ये भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा मामला।
1: जी सर,
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप वसीम साहब?
1: देखिए सर, जब आप जो है एक सेट वाली बात जब आपने निकाल दी है तो एक सॉन्ग सुना देना, तुम हमसे प्यार कर लो हम तुमसे प्यार कर लें, कुछ इस टाइप के बोलते।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं साहब, जरूर जरूर जरूर, ये वाला भी सुनाएंगे आपको गाना हम, तुम हमसे प्यार कर लो हम तुमसे प्यार। और सब सही है आपकी तरफ इस समय गुड़गांव में? इस समय मौसम कैसा है?
1: देखिए सर गुड़गांव में तो अभी हम नहीं है, अभी रामपुर आए हुए हैं और रामपुर में आते जो है काफी सुहाना मौसम हो रहा है, बारिश की संभावना हो रही है सर।
0: बारिश की संभावना है सर?
1: जी सर।
0: तो बस जल्दी हो जाएगी बारिश, आप चिंता ना करें।
1: और जी मैं कहना चाहूंगा कि दिल ही दिल में कुछ छुपाती होती

0: बात कही, बहुत ही बढ़िया। जहां जहां तक मैसेज पहुंचने थे सब पहुंच गए साहब आपके मैसेज। कोई और भी बचा है शायरी का पिटारा तो बता दीजिए, सुना दीजिए आज।
1: कि दिल जीत ले वो नजर हम भी रखते हैं,
0: अरे
1: दिल
0: क्या
1: जीत
0: बात।
1: ले वो नजर हम भी रखते हैं, तो भीड़ में नजर आओगी तो वो असर हम भी रखते हैं, और यूं तो क्या है आप सभी से मुस्कुराने का वादा, वरना आंखों में समंदर तो हम भी रखते हैं।
0: क्या बात कही, बहुत खूब बहुत खूब। आज हमारे शो की सारी शायरी आपने सुना दी है, बहुत ही अच्छा लगा हमें अकरम साहब।
1: देखिए सर, आप एक हफ्ते में लगभग शामिल होते हैं, तो बात होती है अपने बारे में बदलाते हैं, और शायरियों को काफी मनोरंजन होता है, और FM पर गाने चलते होते हैं, और रात्रि के नौ बज रहे बजते हैं, और ऐसे में छत पर आपका प्रोग्राम सुनते हैं तो और चार चांद लग जाते हैं सर।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अगर आपके ऊपर कोई पिक्चर बने तो उसका टाइटल क्या रखेंगे जनाब साहब?
1: पिक्चर बनेगी तो पिक्चर का नाम रखेंगे सिर्फ तुम।
0: सिर्फ तुम पार्ट टू।
1: जी जी जी
0: एक सिर्फ तुम तो आ चुकी है ना, तो दूसरा तो आप पार्ट टू कहलाएगा।
1: पार्ट टू रख देंगे सर।
0: ठीक है साहब, बहुत ही बढ़िया लगा, अच्छा लगा वसीम साहब, आपने जुड़े और खूब दिल की बात कही आपने भी।
1: और मैं चलते चलते रहिए कहना चाहूंगा कि गुलशन बाकी रहे तो गुल खिलेंगे,
0: क्या बात है,
1: गुलशन बाकी रहे तो गुल खिलेंगे, और जिंदगी बाकी रही तो अगले हफ्ते हेलो मुरादाबाद में रात्रि 9 से लेकर 10 तक फिर मिलेंगे।
0: अरे क्या बात है साहब, बहुत जरूर और मिलना जरूरी है उसे हेलो मुरादाबाद में, अपने दिल से दिल की बात रखनी जरूरी है साहब।
1: देखिए सर, सभी को जो है दिल में कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, चाहे वो यार दोस्त हो या फ्रेंड हो, अपने दिल की बात जो है बता देनी चाहिए सर।
0: बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही। आपके लिए भी हम एक बात कहना चाहेंगे, कुछ लोग फिल्म की तरह होते हैं,
1: जी सर,
0: जिनका जिनका एक सीन भी दिल में रह जाता है।
1: जी
0: कुछ
1: वाह वाह
0: लोग
1: वाह
0: गाने की
1: वाह,
0: तरह होते हैं जो बार बार सुनने का मन करता है, और
1: ओहो
0: कुछ लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं जैसे फेवरेट मूवी का फेवरेट करेक्टर।
1: मैं इसी बात पर दो लाइनें मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि ए दोस्त तेरी दोस्ती ने मिसले अंगूर है, ए दोस्त तेरी दोस्ती ने मिसले अंगूर है, और तुमसे मिलने को दिल तो बहुत करता है लेकिन तुम्हारा मुरादाबाद बहुत दूर है।
0: अरे साहब ज्यादा दूर नहीं है, 25 किलोमीटर का सफर है, आप तय कर लेंगे।
1: सर गुड़गांव से आने में टाइम लगता है, गुड़गांव से आते हैं तो सर रात्रि का समय होता है, और रात्रि 2:30 या 3 बजते होते हैं, तो मुरादाबाद में ही एंट्री होती है सर।
0: सब बहुत बढ़िया बढ़िया, किसी दिन दिन में भी एंट्री करवाएंगे आपकी मुरादाबाद में साहब, जरूर मिलेंगे आपसे।
1: आइए सर रामपुर आइए, रामपुर में ही अपना मकान है, यहाँ पर गुरुग्राम के अंदर भी है सर, तो रामपुर भी आइए, गुरुग्राम में भी आइए, हम आपको बुलाना चाहते हैं सर।
0: चलिए साहब, अभी आपके लिए गाना डेडिकेट करते हैं, प्ले करते हैं, और ज़रूर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी।
1: थैंक यू सर, गुड नाइट,
0: धन्यवाद।
1: अल्लाह।
0: तो ये थे हमारे साथ वसीम अकरम साहब। वसीम अकरम साहब जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं आज, वैसे ही उन्होंने एकदम धुआंधार 6 बाउंसर्स मारी हैं, बहुत ही बढ़िया शायरी की है। तो चलिए इनकी भी फरमाइश पूरी करते हैं, और आप भी कहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, 9837896896 पर मैसेज करें या फिर कॉल करें, और खूब अच्छे से अपने दिल की बात रखें। मुस्कुराहट को भी बिल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई बिल नहीं होता, दिल से बड़ा कोई हिल नहीं होता। जो अपने एक साथ वक्त बिता लें, जो अपने एक साथ वक्त बिता लें, उससे बड़ा फ्राइडे चिल नहीं होता साहब। तो फ्राइडे चिल करें, अपनों के साथ वक्त बताएं, गाने सुने अपनी फरमाइश के साथ। चलिए उस्मान साहब की भी बात सुनेंगे इस गाने के बाद।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस मैं यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। ये गाना डेडिकेट किया था रोहित ने अपनी वाइफ मोना। मुझे पूरी पूरी यकीन है कि आज पूरा पूरा यकीन यही है कि साहब रोहित साहब आपको जाके बढ़िया सा डिनर मिलने वाला है। इतना बढ़िया गाना डेडिकेट किया आपने अपने वाइफ के लिए। गाड़ी चलाते समय और ऐसा गाना डेडिकेट कर दें और बारिश हो रही हो तो साहब बढ़िया है साहब, फिर तो पूरी फिल्म बननी है। हमारे पास मैसेज आया एक लिसनर का, कहते हैं कि सर मेरी फिटनेस का सबसे बड़ा एनिमी है आलस। क्या आप बात कही साहब, आलस तो है ही सबसे बड़ा विलन और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बस ये है भाई साहब, शूज़ पहनो और फटाफट बाहर निकल जाओ, चाहे कैसी भी आवाज़ें आए पीछे से कि पापा मुझे स्कूल छोड़ दो जल्दी से। नहीं जी, पहले मैं तो जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने, उसके बाद छोड़ूंगा स्कूल। मगर ऐसा नहीं है साहब, ऐसा आलस मत ख़त्म करना। ये बातें सिर्फ कहने में अच्छी लगती हैं, करने में नहीं लगती हैं। चलिए बात करते हैं अपने लिसनर से, क्या कहते हैं वो। हेलो दिल से दिल तक, कैसे हैं आप उस्मान जी?
1: मोहम्मद उस्मान, आगे बढ़ना की भारत के पीछे नदी पे से मोहम्मद उस्मान शाह गुप्ता।
0: नदी पे उफान है या नहीं है?
1: ये बंधन तो प्यार के बंधन है।
0: अच्छा साहब, बहुत ही बढ़िया, ये गाना आपने बहुत अच्छा इस समय चुना है। ये किस किस के लिए है ये गाना, ये और बता दीजिए। इतना प्यार का जो बंधन है आपका, ये किस किस के लिए है गाना?
1: ये तो मोहब्बत करने वालों के लिए है।
0: सही है उस्मान जी, आप बात बहुत इधर से उधर घुमा देते हैं। ये बात आपकी बहुत ही अच्छी और बहुत ही पुरानी हो चुकी है कि आप कोई भी बात आती है एकदम घुमा देते हैं। कोई भी तीर होता है ना, आप इधर उधर घुमा देते हैं उसे, तीर का डायरेक्शन बदल देते हैं। तो कोई आज कोई शायरी नहीं सुनाएंगे उस्मान जी आप? हेलो उस्मान जी, आप इधर आ जाएं, नदी में बहुत उफान आ रहा है आपकी तरफ, थोड़ा सा इधर हो जाएं, नदी से बच के आ जाएं। बारिश हो रही है ना तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपकी, बहुत उफान आने वाला है नदी पे, तो आप थोड़ा सा इधर आ जाओ अपने जमीनी तरफ।
1: कुछ तो कहिए कि बात क्या है, सलाम, आप क्यों आज इस कदर चुप हैं? चाल थी कितनी तेज बदलते मौसम की, कितने ही लम्हों को चटकता छोड़ गया। जाने वाले हैं मौसम उन्हें तुम्हार में रख, जो दिन गुजर गए उसको गिना नहीं करते।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आपने रुक रुक के बोला मगर बोला बहुत सही। और सब सही चल रहा है उस्मान जी? बारिश हो रही है आपकी तरफ नहीं हो रही है?
1: बस आपकी मेहरबानी हो रही है सर।
0: बहुत
1: ठंडा हो गया सर।
0: बिल्कुल सही सर, भीग मत जाना, कहीं पता चला आप भीग गए तो फिर कल जब आप कॉल करें तो छींकते हुए कॉल करें हमें।
1: अच्छा सर, शुक्रिया साहब, मेहरबानी साहब,
0: धन्यवाद साहब, बहुत अच्छा लगा आपने कॉल कर। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे उस्मान जी, उस्मान जी की तो बात ही निराली है। जब भी कोई ना कोई बात करते हैं एक शायरी जरूर अपने साथ बड़ी रंगीली लेके आते हैं। और सबसे अच्छी बात तो इनकी है कि जो भी ये गाना लेके आते हैं ना, बिल्कुल एकदम कहते हैं टच टू टच, मतलब इतना बेहतरीन गाना फरमाइश में लेके आते हैं कि आप और हम सब बिना गुनगुनाए रह नहीं सकते हैं। तो एक घंटा हमारा कब निकल गया ना पता ही नहीं चला। हाँ साहब, आपसे ही बात कर रहे हैं, जो पेट्रोल पंप के पास गाड़ियाँ पेट्रोल डलवा लेते हैं, मगर हाँ हमेशा ध्यान रखें कि पेट्रोल जब डलवाएं तो मीटर पर आपका नज़र होना चाहिए, ना कि जो बोतल मिल रही हो कि भैया बोतल है, बोतल में पेट्रोल है, ये वाला डाल के काम चालू। नहीं साहब, अगर पेट्रोल डलवाना है तो मशीन से ही डलवाना है, भले ही उसके लिए आपको 10 मिनट वेट क्यों ना करना पड़ जाए। तो आज हमारी खूब बातें हुई, थोड़ी सी फिल्में हुई, थोड़ी सी फिटनेस की हुई, शायरी की हुई, हंसी मजाक की हुई, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपसे दिल की बात हुई। तो याद रखिए, लाइफ में हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, कभी कॉमेडी होगी तो कभी कोई ड्रामा होगा, कहीं कहीं तो एक्शन चल रहा होगा साहब, और कहीं इमोशनल सीन भी आ जाएगा। लेकिन पिक्चर को पॉज मत कीजिए, लाइफ की फिल्म चलती रहनी चाहिए। एक शायरी जो जाने से पहले सफर छोटा हो या लंबा, सफर छोटा हो या लंबा, मुस्कुराते रहना, अपनों को वक्त देते रहना, खुद का भी ख्याल रखना, और जब जिंदगी कहे पिक्चर अभी बाकी है तो दिल से कहना हाँ भाई पॉपकॉर्न लेकर बैठा हूँ, पूरी पिक्चर निपटाऊंगा, चिंता नहीं। तो मैं हूँ आपका दोस्त अखिल, और आपसे और सभी से ये भी रिक्वेस्ट होगी कि सब प्रेयर ज़रूर करें कि जल्दी से जल्दी आनंद जी अपने पिताजी को ढूंढ लें और फटाफट आपके साथ बिंदास मॉर्निंग में जुड़ जाएं। आपका फ्राइडे मस्त रहे, वीकेंड हेल्दी रहे, मूड जो है फिल्मी रहे और दिल हमेशा खुश रहे। तो दोस्तों गुड नाइट, मिलेंगे कल आपसे हेलो फरमाइश में 3 से 5, और खूब सारी होगी आपकी फरमाइश पूरी। तो गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय।

0: डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: रवा।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
4: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
3: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
4: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
3: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।